सुप्रभात श्रोताओं, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 बैसाख माह की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है, अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
3: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं आज का चिंतन।
4: मनुष्य का जीवन उसके स्वयं के चिंतन, मनन और विचारों से प्रभावित होता है। सकारात्मक सोच होने से व्यक्ति का चिंतन उत्कृष्ट होता है और उत्कृष्ट चिंतन का धनी व्यक्ति सहज रूप से उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है व्यक्ति का पूर्ण विकास। यदि शिक्षा प्राप्त करने से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास नहीं होता है तो इसका अर्थ ये होगा शिक्षा की पद्धति में या उस व्यक्ति की सोच में कोई कमी रह गई। प्रेम और सहानुभूति जैसे सद्गुणों के विकास के लिए ये आवश्यक है कि घृणा को हृदय में कोई स्थान न मिले। विचारों की शुभता जीवन में कैसे प्रवेश पाए, साथ ही विचार कैसे तेजस्वी हो, विचारों में सकारात्मक का प्रवेश कैसे हो, इसके लिए आवश्यक है नकारात्मक चिंतन पर विराम लगाना और सकारात्मक चिंतन को स्थान देना, उत्कृष्ट और अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना, नियमित दिनचर्या, घर में पवित्र वातावरण का सृजन, गुरु के चरणों में आपकी श्रद्धा और प्रतिदिन उस शक्ति से प्रार्थना कि हमारा हृदय शुभ विचारों से युक्त हो। विचारों की श्रेणी भी जीवन में विभिन्नताओं से युक्त होती है। आप स्वयं के विचारों का परीक्षण कर सकते हैं। मंद विचार, मध्यम विचार, उग्र, प्रचंड या तीव्र विचार। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी के प्रति जैसे चित्र की कल्पना करता है, जैसे विचार बनाता है, वो वैसे ही जिंदगी प्राप्त करता है। आप जिस सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप अपने मन मस्तिष्क में उन्हीं विचारों को प्रवेश दे और उसी पर चले। जीवन में चाहे विपरीत आंधियां चल रही हो, चाहे आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया हो, दुख के कारण आपकी आंखों के सामने घोर अंधेरा छा रहा हो और कोई मार्ग न सूझ रहा हो, तब भी अपने सपनों को और अपने विचारों को कभी न टूटने दीजिए और विचारों पर दुख की धूल भी कभी न जमने दीजिए। भारतीय परंपरा में अनादि काल से सत्य, अहिंसा और त्याग बलिदान का पाठ पढ़ाया जाता रहा है। भगवान बुद्ध और महावीर ने सत्य और अहिंसा का प्रयोग सिखाया, किंतु महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को ईश्वर का दर्जा प्रदान कर व्यवहारिक जीवन में उन सिद्धांतों को स्वयं जीकर दिखलाया। इस प्रकार परंपराओं से प्राप्त विद्या तथा आसपास के वातावरण और पुस्तकों से प्राप्त शिक्षा का प्रतिपल व्यवहारिक उपयोग करते हुए नकारात्मक तत्वों को छोड़कर सकारात्मक चिंतन करने से मनुष्य का जीवन सफल होता है और उसकी कीर्ति चिरकाल तक अमर रहती है।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मातृ वंदना के साथ।

विघ्नहर्ता मंगलकर्ता बुद्धि और ज्ञान के दाता भगवान श्री गणेश जी हर हृदय में विराजमान है। हम जब भी हम सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं वो हमारी हर बाधा को दूर कर देते हैं और जीवन को सुख शांति और सुकून से भरते हैं।

रघुवर नाम के सुमिरन से ही मन शांत हो जाता है, जैसे हर दुख कहीं दूर खो जाता है। रघुवर की भक्ति में जो सुकून मिलता है, उससे हर रास्ता आसान हो जाता है।

श्रोताओं, हरि नाम ही जीवन का सबसे सुंदर सहारा है। जब मन थक जाए या जब राहें कठिन लगने लगे, तब हरि का स्मरण एक नई उम्मीद बनकर दिल को सुकून दे जाता है। हरि केवल एक नाम नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और शांति का एहसास है। तो आइए, सुबह के इस पावन बेला पर हम सब मिलकर हरि का स्मरण करें और अपने मन को भक्ति के रंग में रंग लें।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। श्रोताओं, समय जीवन का सबसे अनमोल उपहार है। ये न कभी रुकता है, न किसी का इंतजार करता है। कभी समय हमें खुशियों की सौगात देता है तो कभी मुश्किलों से बहुत कुछ सिखा जाता है, और हर आने वाला पल हमेशा नई उम्मीद लेकर आता है।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति।

कागभूषुंडी से श्री राम अवतार की कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ के मन का संशय मिट गया। नागपाश में एक साधारण मनुष्य की भांति बंध जाने के कारण गरुड़ को यह संदेह हुआ कि जो परम ब्रह्म परमेश्वर है वो मायापाश में किस प्रकार बंध सकता है। लेकिन इस संदेह रूपी मोह के कारण ही गरुड़ को कागभूषुंडी का सत्संग प्राप्त हुआ। गरुड़ के उद्गार सुनकर कागभूषुंडी ने कहा, हे पक्षीराज, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं। प्रभु ने आपको यहां भेजकर मेरा मान बढ़ाया है, मुझे बढ़ाई दी है। आपने मोह होने की बात कही, सो हे नाथ, जब नारद स्वयं शंभू और ब्रह्मा भी इससे नहीं बच सके तो सामान्य प्राणी की क्या बिसात। त्रिभुवन में ऐसा कौन है जिसे काम क्रोध मोह ने नहीं नचाया? परम ज्ञानी योद्धा कवि विद्वान कोई भी तो इससे नहीं बच सका है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, गाये कलाकार थे हरिहरन। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

0: रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा कार्यक्रम स्पॉटलाइट। रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल दर्पण। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा। प्रातः 7:10 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रसधार। कार्यक्रम शैल संगीत में सुबह 7:30 पर आज आप सुनेंगे धनराज के गाए गढ़वाली लोकगीत। प्रातःकालीन सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा रोज की तरह ही सुबह 8:30 पर। क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति जिले की चिट्ठी आप सुन सकेंगे सवेरे 9 बजे। सदाबहार फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकेंगे सुबह 9:05 पर। प्रातः 10:02 पर आज आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की परिकल्पना होगी मंजुला नेगी की। सुबह 10:35 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम लोक संगीत में विविध कलाकारों के गाए हिमाचली लोकगीत। श्रोता सुनेंगे अपने फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। समय वही सुबह 11 बजे। कार्यक्रम सुगम संगीत में विविध कलाकारों के गाए गीत सुनिएगा दिन में 12:12 पर। दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम महिला जगत में आज आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों के अवसर पर भेंट वार्ताओं पर आधारित कार्यक्रम मनोरंजन के लिए रेडियो की भूमिका। कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में 4:02 पर आज आप सुनेंगे पंडित भीमसेन जोशी का ख्याल। आप प्रस्तुत करेंगे राग शंकरा। शाम 5:10 पर युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। कार्यक्रम ग्राम जगत में सुनिएगा आज लोक कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि होंगे श्री वीरेंद्र पवार, श्री कलम सिंह लिंगवाल, श्री धनेश कोठारी और श्रीमती आशा पेन्योली। कृषि जगत कार्यक्रम में श्री नरेश सिंह रावत से भेंटवार्ता का विषय रहेगा पर्यावरण संरक्षण साझे जिम्मेदारी। समय शाम के 7 बजे। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। यह आकाशवाणी देहरादून है। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओस्लो नगरे भारत नॉर्वे व्यापार अनुसंधान शिखर सम्मेलने भागम अगृह्णात्। शिखर सम्मेलने युवराजः हकोन, नॉर्वे देशस्य प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे इत्येतावपि भागम अगृह्णताम्। शिखर सम्मेलनं संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी TEPA इत्युक्ते टेपा व्यापार आर्थिक सहभागित्व समवाये प्रवेशम् इति विषये द्विपाक्षिक व्यापारस्य निवेशस्य च वृद्धेः प्रशंसाम् अकरोत्। TEPA इत्यस्य अन्तर्गतं 100 बिलियन यूएस डॉलर इत्यस्य निवेश लक्ष्यं साधयितुं उभयपक्षयोः हितधारकाः प्रयतन्ते इति सः अधोरेखितवान्। परिणामतः भारते 10 लक्षाः उद्योगाः कल्पिताः भवेयुः इत्यपि मन्यते। सः भारतस्य प्रबलं ऊर्ध्वगामी विकासपथं, जनसांख्यिकीय लाभांशं, प्रतिभाशालिनः महत्वाकांक्षायुक्ताश्च युवकाः, दृढव्यवसाय अभ्यासाः, निवेशक अनुकूल विनियामक संरचना, प्रतिस्पर्धात्मक संघवादस्य भावञ्च अधोरेखितवान्। सः भारते नील अर्थव्यवस्था, नौकायान निर्माणं, हरित परिवर्तनं, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य तंत्र ज्ञानं, महत्वपूर्णानि खनिजानि आदिभिः सह नवोद्योगादिषु प्रमुख क्षेत्रेषु नॉर्वे देशस्य अधिक निवेशं प्रोत्साहितवान्। शिखर सम्मेलने भारतीयानां नॉर्वे देशस्य च उद्योग विशेषाणां संस्थानां च मध्ये अनेकाः व्यापार संधयः हस्ताक्षरिताः। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः ऑपरेशन सिंदूर इतिदं भारतस्य सुदृढस्य आत्मविश्वासयुक्तस्य समर्थ राष्ट्ररूपेण च परिवर्तनस्य प्रमाणम् इति वर्णितवान्। ह्यः हानोय नगरे भारतीय प्रवासिनः संबोधयन् श्री सिंहवर्यः दृढरूपेण अवदत् यत् यद्यपि भारतं प्रथम उपयोग निषेध नीतिं प्रति प्रतिबद्धः अस्ति, तथापि सः परमाणुभीत्या वशीभूतः न भविष्यति, तथा च शत्रोः कस्यापि दुस्साहस्य दृढतया प्रतिकारं कर्तुं सज्जः अस्ति। सः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदीवर्यस्य नेतृत्वे प्राप्तायाः अभूतपूर्वस्य प्रगत्याः कारणात् अन्ताराष्ट्रियस्तरे भारतस्य वर्धमानम् औन्नत्यम् उद्घाटितवान्। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन, मॉरिशस देशानां प्रतिनिधिभिः समकक्षैश्च सह उच्चस्तरीय द्विपाक्षिक मेलनं कृतवान्। जिनेवा नगरे एषा सभा अभवत्। सामाजिक प्रसार माध्यमे श्री नड्डा अवदत् यत् चर्चासु डिजिटल स्वास्थ्यम्, औषध निर्माणं, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्थाः, सार्वत्रिक स्वास्थ्य व्याप्तिं च प्रवर्धयितुं सहकार्यं सुदृढं कर्तुं केन्द्रितम् आसीदिति। न्यायाधीशेन यशवंत वर्मणा सम्बद्धानां आरोपाणां अन्वेषणं कुर्वती न्यायाधीशान्वेषण समितिः ह्यः लोकसभायाः अध्यक्षम् ओम बिरलां प्रति संसदभवने स्वस्य प्रतिवेदनं समर्पितवती। स्वास्थ्य अधिकारिणः मन्यन्ते यत् कांगो लोकतांत्रिक गणराज्ये ईबोला प्रकोपः कतिपय सप्ताह पूर्वं आरब्धः इति। अधुना मृतानां संख्या 18.1% यावत् संभूय इतोपि वर्धते। सर्वकारः अन्तर्जालमाध्यमेन प्रचलितम् एतद् अभियोगं निष्काशयत् यत् मन्दिरस्य स्वर्णसञ्चयस्य विनिमयरूपेण सर्वकारः देवालयानां कृते स्वर्णबन्धपत्राणि निर्गमिष्यति इति। प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो इत्यस्य द फैक्ट चेक यूनिट इत्युक्ते PIB इत्यनेन उक्तं यत् एतत् प्रतिपादनं मिथ्या अस्ति इति। प्रियाः श्रोतारः, अन्ते क्रीडावार्तायाम्। IPL इति क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलं आतिथेय चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं गतरात्रौ 5 स्तोभैः पराजित्य प्ले ऑफ इति स्थानं प्राप्तवत्। चेन्नई सुपर किंग्स इत्यनेन निर्धारितस्य 81% लक्ष्यस्य अनुसरणं कुर्वता सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनेन 29 कन्दुक क्षेपण चक्रेषु एव लक्ष्यम् अतिक्रामितम् इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनस गहरस्तुर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज शाम इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण के अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बनेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। ये कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश और सीबीआई की जांच के बाद की गई है। संदीप घोष पर मेडिकल कॉलेज में खरीद से जुड़े मामलों में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी धन शोधन के पहलुओं की जांच कर रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम के लिए गंभीर वार्ता हो रही है, जिसके कारण सैन्य हमलों को स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जल्द ही ऐसा समझौता हो सकता है जो अमरीका और पश्चिम एशिया के देशों को स्वीकार्य होगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has appreciated the growth in bilateral trade and investment following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. Attending the India-Norway Business and Research Summit in Oslo, along with Norway Crown Prince Haakon and Prime Minister Jonas Gahr Støre, Mr. Modi underlined the stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under TEPA and the consequent creation of 1 million jobs in India.
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया. ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है. इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है.
2: Prime Minister Modi highlighted India's strong upward growth trajectory, demographic dividend, talented and aspirational youth, robust business practices, investor-friendly regulatory framework, and the spirit of competitive federalism. He encouraged greater Norwegian investments in India and key sectors such as the blue economy, shipbuilding, green transition, renewable energy, health tech, critical minerals, and startups. Defence Minister Rajnath Singh has described the Operation Sindoor as a testament to India's transformation into a strong, confident and capable nation. Addressing the Indian diaspora in Hanoi yesterday, Mr. Singh asserted that while India remains committed to the no-first-use policy, it will not succumb to nuclear blackmail and stands ready to respond firmly to any enemy misadventure. He highlighted India's growing stature on the international stage due to the unprecedented progress achieved under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Mr. Singh invited the international community to partner with India for global peace, shared growth and prosperity, while urging the Indian diaspora to contribute to nation building. Union Minister of Ports, Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal chaired a review meeting in New Delhi on the rollout of the much-anticipated water metro services in the country. He said the centre has advanced plans to roll out water metro services in 18 cities, with Guwahati among those identified for phase 1. Cities include

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में ये अंतिम गीत। इंग्लिश विंग्लिश फिल्म से सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजों में स्वानंद किरकिरे के बोल अमित त्रिवेदी का संगीत।

0: कार्यक्रम लोक रसधारा भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। केंद्र सरकार ने कहा, भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। अल्मोड़ा जिला योजना बैठक में 74,73,00,000 रुपए से अधिक को व्यय की मंजूरी। प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, मैदानी जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना। और देहरादून नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज, विभिन्न क्षेत्रों में अवैध कब्जे हटाए गए।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर हरित शिपिंग तथा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हैराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर कल नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
1: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिनों के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में अल्मोड़ा जिला योजना की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 74,73,70,000 का व्यय अनुमोदन किया गया। कैबिनेट मंत्री ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली और आगामी कार्ययोजना को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉ. रावत ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से जिले के समग्र विकास में सक्रिय सहभागिता निभाने और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करने का आह्वान किया। पत्रकारों से बातचीत में डॉ. रावत ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में जिला योजना की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा 22 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि रैंकिंग के आधार पर उत्तराखंड देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल हुआ है।
2: हमारे सरकार के द्वारा सभी जिलों में आजकल जिला योजना की बैठकें हो रही हैं और उनके जो है परिवे पास किए जा रहे हैं। हर विभाग ने जो अपने अपने प्रस्ताव दे रखे आज उन पर चर्चा भी हम लोग करके उनको पास कर। शिक्षा विभाग में हमने 22 बड़े निर्णय किए हैं और उसी के कारण आप देख रहे होंगे कि जो आज रैंकिंग में हम पूरे देश में टॉप 10 पे आ गए हैं। अब एकमात्र हमारा काम रह गया है प्रमोशन का। प्रमोशन इसलिए नहीं हो पा रहे कि हमारे कतिपय टीचर जो है कोर्ट गए हैं और कोर्ट में सरकार ने पूरी पैरवी कर दी है। मुझे लगता है कि जून के महीने में जैसे ही कोर्ट का कोई निर्णय आएगा तो हम एक हफ्ते में सभी टीचरों का प्रमोशन कर दें।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना है। विशेष रूप से हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और देहरादून जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
4: राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी जिलों को अत्यधिक गर्मी के प्रभाव को देखते हुए आमजन को आवश्यक सावधानियों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग को हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और गर्मी जनित बीमारियों से निपटने के लिए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके साथ ही पेयजल आपूर्ति, विद्युत व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यालयों, निर्माण स्थलों और बाहरी कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने तथा बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों के लिए विशेष सावधानी बरतने पर जोर दिया गया है। विभाग ने लोगों से धूप से बचने, अधिक मात्रा में पेय पदार्थों का सेवन करने, अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने तथा दोपहर के समय बाहर निकलने पर सिर को ढककर रखने की सलाह दी है। उधर देश के मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। राज्य के प्रमुख प्राकृतिक झरनों, तालाबों और गदेरों में भी सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वीकेंड पर देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और नैनीताल और अन्य पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार हैं। बड़ी संख्या में पर्यटकों के आगमन से स्थानीय व्यापारियों में उत्साह है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए वीकेंड पर विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है, जिससे पर्यटकों की आवाजाही सुगम बनी हुई है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से हिना आजमी।
0: देहरादून नगर निगम शहर को स्वच्छ, सुगम और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। इसी क्रम में नगर निगम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण और अवैध कब्जों के विरुद्ध व्यापक कार्यवाही की है। नगर आयुक्त के निर्देश पर वार्ड संख्या 100 में पार्षद स्वाति डोभाल की शिकायत के बाद गुजरोवाली स्थित कृष्ण विहार क्षेत्र में सड़क पर किए गए अवैध कब्जों को जेसीबी मशीन की सहायता से हटाया गया। इस दौरान संबंधित लोगों को भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न करने की कड़ी चेतावनी भी दी गई। इसी क्रम में बल्लूपुर पंडितवाड़ी क्षेत्र में सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अतिक्रमणों को हटाकर मार्ग को बाधा मुक्त कराया गया। वार्ड संख्या 3 में भी निगम की टीम लगातार कार्य अभियान चलाकर कार्य कर रही है और अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम ने शहर में लगाए गए अवैध होर्डिंग्स और विज्ञापन सामग्री को हटाने की कार्रवाई भी की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के सुवाखोली में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए अधिकारियों से सभी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने को कहा। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री ने क्षेत्रवासियों की समस्याएं भी सुनी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बीच श्री जोशी ने गढ़पुरासखंडा मोटरमार्ग के सर्वे कार्य का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों को मोटर मार्ग निर्माण कार्य को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। प्रदेश में पर्यटकों के आवागमन पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, वीकेंड पर उमड़ रहा वाहनों का रैला, 45,000 वाहन पहुंचे दून। दून अस्पताल में कैंसर की सस्ती जांच, इस शीर्षक के साथ हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, अस्पताल की रेडियोलॉजी विभाग अब शरीर की गांठों में कैंसर की सटीक और बेहद सस्ती जांच के लिए सीटी स्कैन गाइडेड बायोप्सी शुरू हो गई है। अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर राज्य सरकार में चयनित युवाओं की नियुक्ति को आज सभी समाचार पत्रों ने पहले पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। इस खबर पर अमर उजाला लिखता है, सीएम ने 4 साल में चयनित कर्मियों को डिजिटल माध्यम से लिखा पत्र। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। केंद्र सरकार ने कहा, भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। अल्मोड़ा जिला योजना बैठक में 74,73,00,000 रुपए से अधिक के व्यय को मंजूरी। प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, मैदानी जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना। और देहरादून नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज, विभिन्न क्षेत्रों में अवैध कब्जे हटाए गए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शैल संगीत में धनराज के गाए गढ़वाली लोकगीत।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027, आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: कार्यक्रम शैल संगीत के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं धनराज के गाए गढ़वाली लोकगीत।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम शैल संगीत में आज आप सुन रहे हैं धनराज के गाए गढ़वाली लोकगीत।

0: कार्यक्रम शैल संगीत में अभी आप सुन रहे थे धनराज के गाए गढ़वाली लोकगीत। आपके साथ ढोलक पर संगत कर रहे थे हर्ष मने जोशी, तबला पर सेकत मंडल, हुड़का पर ज्योत सिंह, बांसुरी पर कैलाश चंद्र ध्यानी और हारमोनियम पर राकेंद्र सिंह। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में RG कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
2: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का

0: आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
1: Recognizing the ambitious
2: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
1: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
3: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
4: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
7: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
8: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को 1 महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
9: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगा कर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत। सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें। जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था। स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत

0: दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत 100 अरब डॉलर अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी पांच नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर 100 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्टमेंट एंड 1 मिलियन जॉब्स अंडर इंडिया EFTA एग्रीमेंट एट बिजनेस एंड रिसर्च समिट इन ओस्लो, नॉर्वे। Prime Minister Modi to meet leaders of all five Nordic nations at third India-Nordic summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to prosecute former principal of RG Corps Medical College Sandeep Ghosh in financial irregularity case. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad secure playoff berth, beating Chennai Super Kings by 5 wickets. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of 100 billion US dollars under and the consequent creation of 1 million jobs in India.
3: एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है, और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, ये हमारी गारंटी है।
2: Mr. Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing the country's scale, growing energy demands, climate commitments and rapid expansion in renewable energy, grid infrastructure, green hydrogen and clean energy.
3: 2030 तक हमने 500 gigawatt clean energy और 5 million ton green hydrogen produce करने का target रखा है। Clean energy investment नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
2: The summit was also attended by CEOs of over 50 companies and more than 250 participants from the Norwegian and Indian business and research communities. Early in a gesture towards closer relations, Prime Minister Modi was awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by His Majesty King Harald V of Norway. On Prime Minister's visit to Norway, Secretary West in the Ministry of External Affairs C.B. George said that India welcomes the decision by Norway to join the Indo-Pacific Oceans Initiative, as both the countries are leading maritime nations.
4: Recognizing the ambitious maritime Amrit Kal Vision 2047 of India, both leaders have called for scaling up the blue economy partnership, including in shipbuilding, green shipping, ship recycling, developing port infrastructure, training of seafarers, fisheries, aquaculture and greening of ports.
2: Prime Minister Narendra Modi will attend the third India-North

सुप्रभात श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्कार देहरादून के आज के अंक में मैं सुषमा जोशी आप सभी प्यारे श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज 19 मई का दिन बेहद खास है क्योंकि आज मनाया जा रहा है विश्व पारिवारिक डॉक्टर दिवस। श्रोताओं, परिवार का डॉक्टर सिर्फ इलाज ही नहीं करता बल्कि वो हमारे सुख दुख का साथी भी बन जाता है। हमारी छोटी सी तकलीफ से लेकर बड़ी चिंता तक एक पारिवारिक डॉक्टर हमेशा भरोसे और अपनेपन के साथ हमारे साथ खड़े रहते हैं। उनकी मुस्कान, उनकी सलाह और उनकी सेवा कई बार दवा से भी ज़्यादा असर करती है। ये डॉक्टर से भगवान के भेजे गए सच्चे फरिश्ते होते हैं जो हमें हमेशा स्वस्थ रखने में हमारी हर पल मदद करते हैं। तो आइए इस खास दिन पर हम उन सभी डॉक्टर्स को तहे दिल से धन्यवाद कहें जो दिन रात हमारे लिए उपस्थित रहते हैं और पूरे समाज को स्वस्थ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जब भी हम परेशान होते हैं तो एक डॉक्टर अपने अनुभव, अपनत्व और सेवा भाव से हमें जीने की नई राह दिखाता है। सभी डॉक्टर्स की मेहनत, समर्पण और मानवता को हम नमन करते हैं। और आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में पहले गीत की ओर।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: आइए अब सुनते हैं स्थानीय महत्व की मुख्य खबरें अखबार के पन्नों से, और ये जुड़े होते हैं आपके राज्य और शहर से। रुद्रनाथ में विराजमान हुए बाबा चतुर्थ केदार, स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को मिले विशेष शिक्षक। प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, मैदानी जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से पार जाने की संभावना। जनगणना में सहयोग करना हुआ जरूरी, राज्य में पेट्रोल डीजल व गैस की पर्याप्त उपलब्धता। देहरादून नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज, विभिन्न क्षेत्रों में अवैध कब्जे हटाए गए। और अब हाल मौसम का, 40 डिग्री अधिकतम और 25 डिग्री न्यूनतम रहेगा आज का तापमान। और अब प्रोग्राम में श्रोताओं आगे बढ़ते हैं इस म्यूजिकल ट्रैक के साथ।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम में आइए अब जानते हैं आज की तारीख यानी 19 मई का दिन इतिहास में क्यों है खास। साल 1714 में आज ही के दिन ब्रिटेन की रानी ने अपने जीवन काल में हनोवर के सदन के सदस्यों को ब्रिटेन में रहने की इजाजत देने से इनकार किया। साल 1743 में फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी क्रिस्टिन ने सेंटीग्रेड थर्मामीटर के डिजाइन को प्रकाशित किया। वो दिन था आज ही का यानी 19 मई का। साल 1892 में आज ही के दिन अमेरिकी इंजीनियर चार्ल्स किंग ने न्यूमैटिक हैमर का आविष्कार किया था। साल 1936 में ब्रिटेन के आविष्कारक रॉबर्ट हेडसन वॉट ने रडार बनाया और ये प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन के हवाई अड्डे पर स्थापित की गई। साल 1961 में आज ही के दिन असम के बराक घाटी में लोगों ने अपनी मातृभाषा को सम्मान दिलाने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन किया। और साल 2006 में भारतीय मूल के मलेशियाई उद्योगपति टी रविचंद्रन ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। वो दिन था आज ही का यानी 19 मई का। तो ये थी आज की तारीख यानी 19 मई का दिन इतिहास के पन्नों से। और अब प्रोग्राम में वक्त हो चला है अगले गीत का।

श्रोताओं, आज 19 मई का दिन बॉलीवुड के एक ऐसे कलाकार के नाम है जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और दमदार अभिनय से लाखों दिलों में अपनी खास जगह बनाई। जी हां, वो शानदार अभिनेता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर बॉलीवुड तक का उनका सफर आसान नहीं था, लेकिन श्रोताओं, कहते हैं ना, अगर सपनों में जान होती है तो मंजिलें खुद रास्ता बना देती है। मुश्किल हालात, लंबा संघर्ष और सालों की मेहनत के बाद मिली पहचान ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि लाखों युवाओं की प्रेरणा बना दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर सपने सच्चे हों और मेहनत ईमानदार हो तो मंजिल एक दिन जरूर मिलती है। तो आकाशवाणी परिवार की ओर से नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। इसी के साथ आइए सुनते हैं इन्हीं पर फिल्माया प्रोग्राम में ये अंतिम गीत।

श्रोताओं, वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का, लेकिन वादा है आपसे कल फिर होंगे हाजिर नए साथी के साथ। आप सभी मेरे प्यारे श्रोता अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। इसी के साथ दीजिए सुषमा जोशी को अनुमति। नमस्कार, देहरादून।

0: अभी आप सुन रहे थे दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति जिले की चिट्ठी।
1: नमस्कार श्रोताओं, ये आकाशवाणी देहरादून है। जिले की चिट्ठी के क्रम में अब आप आशुतोष सुनियाल से अल्मोड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। आलेख है कंचना पांडे का। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम के सफल संचालन तथा त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने के लिए जिलाधिकारी अल्मोड़ा अंशुल सिंह ने कहा कि सभी राजनीतिक दल अपने बूथ लेवल एजेंट की तैनाती 100% करें। जिलाधिकारी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए अर्हता तिथि 1 जुलाई 2026 है। इस कार्यक्रम के तहत गणना प्रपत्रों की प्रिंटिंग एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण 29 मई से 7 जून 2026 तक किया जाएगा। BLO द्वारा घर घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण एवं संकलन का कार्य 8 जून से 7 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। यदि किसी विधानसभा में मतदान केंद्रों का पुनर्गठन होना है तो वह 7 जुलाई 2026 से किया जाएगा। ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन 14 जुलाई को किया जाएगा तथा दावे एवं आपत्तियां 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक किए जा सकेंगे। नोटिस जारी करने तथा दावों और आपत्तियों का निस्तारण माह जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक होना निश्चित हुआ है। जिलाधिकारी ने बताया कि अंतिम रूप से मतदाता सूची का प्रकाशन 15 सितंबर 2026 को किया जाएगा। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी अल्मोड़ा करुणा पंत द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद के समस्त राशन कार्ड धारकों की EKYC प्रक्रिया मेरा KYC ऐप के माध्यम से की जानी है। इस संबंध में सभी पात्र लाभार्थियों से शीघ्र EKYC पूर्ण कराने की अपील की गई है। उन्होंने बताया कि जिन राशन कार्डों में सदस्यों की EKYC नहीं होगी उन्हें भविष्य में खाद्यान्न वितरण संबंधी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। अल्मोड़ा जनपद के सल्ट तहसील के मोहान वन क्षेत्र के अंतर्गत तड़म ग्राम सभा में विगत दिनों बाघ के सफल रेस्क्यू के उपरांत वन विभाग द्वारा क्षेत्र में लगातार निगरानी एवं गश्त की जा रही है। उपसंभागीय वनाधिकारी सल्ट काकुल पुंडीर ने कहा कि क्षेत्र में ट्रैप कैमरे एवं ड्रोन की सहायता से लगातार निगरानी की जा रही है। गठित गश्ती दलों द्वारा बाघ के पदचिन्हों एवं अन्य गतिविधियों के संकेतों की लगातार खोजबीन की जा रही है। गांव एवं आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा पर वनाग्नि रेखा फायरवॉल तैयार करने का कार्य भी किया जा रहा है। इसके साथ ही क्षेत्र में कुल 9 पिंजरे लगाए जा चुके हैं जिनकी निरंतर निगरानी की जा रही है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र हवालबाग में संस्थान के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के निर्देशन में चल रहे संतुलित उर्वरक उपयोग जागरूकता अभियान के अंतर्गत जैव उर्वरकों द्वारा पोषक तत्व प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य सुधार विषय पर प्रशिक्षण एवं प्रायोगिक प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रा ने जैव उर्वरकों की महत्वपूर्ण भूमिका, प्रभावी पोषक तत्व प्रबंधन तथा मृदा

0: स्वास्थ्य सुधार पर प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विस्तृत तकनीकी जानकारी साझा की। उन्होंने अपने संबोधन में इस बात पर विशेष बल दिया कि जैव उर्वरकों के निरंतर उपयोग से मृदा में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि बढ़ती है, जिससे पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार होता है और दीर्घकालीन मृदा उर्वरता को बनाए रखने में भारी सहायता मिलती है। डॉक्टर मिश्रा ने संतुलित एवं समेकित पोषक तत्व प्रबंधन को टिकाऊ कृषि की आधारशिला बताते हुए प्रतिभागियों को रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के साथ साथ जैव आधारित प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित किया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मचारियों के मध्य मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। साथ ही यह निष्कर्ष भी निकाला गया कि संस्थान के वैज्ञानिकों को किसानों के बीच जाकर उन्हें जैव उर्वरकों की खरीद और उनके उपयोग के दौरान बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों के प्रति निरंतर जागरूक करना चाहिए। अंत में यह कार्यक्रम एक जीवंत खुली चर्चा और औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। श्रोताओं, बाबा श्री विश्वनाथ माँ जगदीशिला डोली रथ यात्रा उत्तराखंड के प्रमुख देवालयों का भ्रमण करने के बाद 16 मई को अल्मोड़ा पहुंची। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विगत 27 वर्षों से यात्रा के संयोजक तथा पूर्व कैबिनेट मंत्री मंत्री प्रसाद नेथानी द्वारा विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा निकाली जा रही है। 27वीं विश्वनाथ जगदीशिला यात्रा 28 अप्रैल को हरिद्वार से प्रारंभ हुई थी, जो 25 मई गंगा दशहरा तक चलेगी। श्रोताओं, इसी के साथ अल्मोड़ा जिले की चिट्ठी का यह अंक यहीं पर समाप्त हुआ। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी जिले की चिट्ठी के एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुषमा जोशी का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज की इस प्यारी सुबह में श्रोताओं आपके लिए लेकर आए हैं पुराने दौर के वो सुनहरे नगमे जो मन को सुकून देते हैं। श्रोताओं, सुबह की शुरुआत अगर मीठे संगीत के साथ करें तो पूरा दिन मानो जैसे मुस्कुराने लगता है। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत के साथ।

रविंद्र जैन के खूबसूरत बोल और संगीत अभी आप सुन रहे थे सौदागर फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में। श्रोताओं, सदाबहार गीतों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। कुछ ऐसा ही अगला तराना हम आपके लिए लेकर आए हैं हमराज फिल्म से महेंद्र कपूर की आवाज़ में। साहिर के लिखे इस गीत की धुन बनाई है रवि ने।

कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, फूलों की तरह होते हैं ये सदाबहार गीत, क्योंकि हर फूल की अपनी एक महक होती है और हर सदाबहार गीत की अपनी एक खूबसूरत याद, बिल्कुल इस गीत की तरह।

इंदिवर का लिखा गीत और कल्याण जी आनंद जी का संगीत अभी आप सुन रहे थे सरस्वती चंद्र फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। श्रोताओं, आंखें बेशकीमती होती हैं। आंखें आमतौर पर व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में बताती हैं। आंखों का रंग, आंखों की हरकत, आंखों के आंसू और आंखों की ये खामोशी बिन कहे भी बहुत कुछ कह जाती है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे तीन देवियां फिल्म से। इस गीत को लिखा था मजरूह ने और धुन बनाई थी एसडी बर्मन ने। आराधना फिल्म से अगला गीत सुनवाते हैं आपको किशोर कुमार और लता मंगेशकर के आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल, एसडी बर्मन का मधुर संगीत।

0: श्रोताओं, बीते हुए लम्हे कभी लौट कर नहीं आते, लेकिन उनकी यादें हर बार मुस्कुराती हैं। कुछ लम्हे वक्त के साथ गुजर तो जाते हैं, लेकिन दिल में हमेशा महकते रहते हैं। बीते हुए पल किताबों की तरह होते हैं, जितने पेज पलटो उतनी ही यादें मुस्कुरा उठती है। वक्त चला जाता है, पर कुछ लम्हे हमेशा दिल के करीब रह जाते हैं।
1: अभी अलविदा।

निकाह फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में। हसन कमाल की बोल रवि का संगीत था। श्रोताओं, घर से बाहर जब भी जाएं, दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहने और चार पहिया वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। यातायात नियमों का पालन करें और हमेशा सुरक्षित रहें।

गाइड फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। शैलेंद्र की शब्द रचना और संगीतकार थे एसडी बर्मन। अगला तराना खट्टा मीठा फिल्म से आप सभी तक पहुंच रहा है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में।

श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आपको आखिरी गीत सुनवाने का। आप सभी प्यारे श्रोता खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। इसी के साथ आइए सुनते हैं मेरे जीवन साथी फिल्म से ये अंतिम गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, आर डी बर्मन का संगीत, मजरूह के बेहतरीन बोल।

0: सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप नीता कांडपाल से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में पेयजल आपूर्ति, सिंचाई, विद्युत, पर्यटन, पार्किंग निर्माण और जिला योजना समेत कई योजनाओं के लिए 1344 करोड़ की वित्तीय मंजूरी दी है। तेल विपणन कंपनियों ने कहा, प्रदेश में पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस सहित सभी आवश्यक पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता है। कंपनियों ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की। राज्य सरकार ने श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि लागू कर ओवरटाइम बोनस और अन्य सुविधाएं समय पर देने के निर्देश दिए। आईपीएल मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई है। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट कल वैदिक रीति रिवाजों, मंत्रोच्चारण और धार्मिक परंपराओं के साथ आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की सुख समृद्धि और विश्व शांति की कामना की। साइकिल से जिला कार्यालय पहुंचे हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र, ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने एकत्रित व्यापार समुदाय को नॉर्वे की विशेषज्ञता और भारत के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में मौजूद अवसरों का लाभ उठाते हुए साझेदारी बनाने की बात की। अमेरिका ने समुद्र में फंसे रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ाते हुए 17 जून कर दिया है और राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्रों ने अत्यधिक गर्मी के मद्देनजर आमजन को आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम। कार्यक्रम में सुनिए मनोज पंजानी से संकल्प मिश्रा की भेंटवार्ता। इस कार्यक्रम की परिकल्पना है मंजुला नेगी की।
2: श्रोताओं, ये वर्ष है आकाशवाणी के 90 साल का। 90 साल की ये यात्रा स्वर्णिम यात्रा कही जा सकती है, जहाँ पर आकाशवाणी ने समाज को बहुत सा मनोरंजन दिया है, बहुत सी जानकारियाँ दी हैं और बहुत सा ज्ञान दिया है। इसी के साथ आकाशवाणी ने प्रेरणा भी दी है कुछ नया कर गुजरने की। और ये जो लेगेसी है आकाशवाणी की, ये बहुत बड़ी है। इस क्रम में हम बहुत से अपने मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं, बहुत से विशेषज्ञों से बातचीत कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हमारे साथ श्री मनोज पंजानी जी आकाशवाणी के स्टूडियोज़ में हैं हमारे साथ। और श्री मनोज जी एक इतिहासविद हैं और इसी के साथ लेखक भी हैं और कला के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। चाहे हम फिल्मों की बात कर लें, फिल्मी गीतों की बात कर लें, बहुत अथाह ज्ञान है, बहुत ही बड़ा अनुभव भी है इनके पास। मनोज जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, हम आपके बचपन की बात करें, जब आप छोटे थे, पहला इंटरेक्शन रेडियो से आपका कैसा रहा है, थोड़ा उसके बारे में बताइए।
3: ऐसा था कि जैसे मेरे पिताजी को शास्त्रीय संगीत में विशेष रुचि थी और उनको मालूम था कि रेडियो पे कभी फैयाज खां का गायन होता था, फैयाज खां का गायन, उस्ताद फैयाज खां का गायन होता था, वो उनके पसंदीदा शास्त्रीय गायक थे। तो बजता था रेडियो, छोटा था तो कुछ कुछ समझ में तो सुनने को मिलता था और शास्त्रीय गायन का समय होता था कि इस समय जो है शास्त्रीय गायन प्रसारित होगा। इसके अलावा जैसे सरोद वादक उस्ताद अली अकबर खां को भी सुनने का मौका मिलता था, क्योंकि घर में रेडियो बज रहा है, अब पिताजी सुन रहे हैं तो चलते फिरते वो चीज़ें कानों में कर जाती थी।
2: हमने बात की रेडियो से आपके पहले पहले एक्सपोजर की जो आपको अभी याद आ पा रहा है, लेकिन उस समय में उस दौर में रेडियो जिंदगी का हिस्सा भी बन जाया करता था।
3: सही कहा आपने, क्योंकि ऐसा है कि घर में मतलब रेडियो जो बाहर की दुनिया से संपर्क रखने का एकमात्र साधन रेडियो था, चाहे कला के मैदान में हो या साहित्य के मैदान में हो, क्योंकि नाटकों का प्रसारण रेडियो पर होता था। और फिर सबसे महत्वपूर्ण जैसे खेल का सजीव प्रसारण तो रेडियो पे ही मिलता था, क्रिकेट हो, हॉकी हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, तो वो रेडियो के ही ज़रिए हमको सजीव प्रसारण देखने को मिलता था। क्योंकि अभी टेलीविज़न तो 1959 में आया है और उसका क्षेत्र बहुत सीमित था, तो मतलब समझिए कि 84 लग गया जब टेलीविज़न पूरे देश में फैला, तो उससे पहले तो रेडियो ही होता था। तो
2: अपन फिल्मी गीतों की बात करें, फिल्मों की बात करें, उस पर आपका लंबा शोध कार्य रहा है, लंबा अनुभव रहा है। भारत में, भारत जिस तरह से क्रिकेट का देश कहा जाता है, वैसे हाँ। बॉलीवुड संगीत का भी देश कहा जाता है। हर व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण अंग है फिल्मी गीत। रेडियो के इसके प्रचार प्रसार में क्या भूमिका रही है, और प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, आपने क्या महसूस किया व्यक्तिगत?
3: ऐसा था कि हमारा जब मैं बड़ा हुआ, मतलब समझिए कि 10 साल की उम्र से जो है, तो मैं मतलब कह सकता हूँ कि रेडियो का एक नशा सा हो गया। जितना भी मतलब स्कूल से आते ही रेडियो खुल जाता था, एक बजे से 3 बजे तक, मतलब वो अलग अलग फिल्मी गाने आया करते थे, और उसके बाद रात में 9 बजे से भी मतलब वो फिल्मों के ऊपर कार्यक्रम होते थे, और उसी बीच में हवा महल भी आता था, तो किसी कहानी का नाट्य रूपांतरण सुनने को मिलता था, किसी कहानी का नाट्य रूपांतरण सुनने को मिलता था। तो ऐसा था कि कुछ अच्छे नाटककारों के नाम सुनने को मिलते थे, तो नाम सुनने को मिलते थे, फिर बड़े हुए तो फिर उन नाटकों, क्योंकि कुछ तो हमारा नाटक जो तक थे वो पाठ्यक्रम के का हिस्सा थे, तो राम कुमार वर्मा का कोई नाटक है, उपेन्द्र नाथ का कोई नाटक है, सत्येन्द्र शरत का कोई नाटक है, तो कहीं ना कहीं ये जब हम 9वीं 10वीं कक्षा में पहुँचे, तो जब अपनी किताब खोल करके देखते थे तो ध्यान आता था कि अरे तौलिए ना, उपेन्द्र नाथ जी का तौलिए नामक नाटक, ये तो हवा महल में सुना था। तो इस तरीके से, और मैं बाद में जैसे इस क्षेत्र में जब जैसे फिल्मी जो साहित्यकार जो फिल्म लेखन से जुड़े, तो सबके बारे में मतलब पता चला कि कभी ना कभी इनका भी संबंध रेडियो से रहा। अब जैसे ये था कि 36 में ऑल इन आकाशवाणी शुरू हुई, और समझिए कि थोड़े ही दिन के बाद एक अहमद शाह बुखारी पितरिस, तो वो इसके महानिदेशक बने आकाशवाणी के, और बहुत सारे साहित्यकारों की सेवाएं उन्होंने ली। तो उस समय सादत हसन मंटो, कृष्ण चंदर, विश्वामित्र आदिल, अख्तर उल ईमान, सबका वास्ता, और फिर एक सिलसिला कायम हो गया। तो अमृतलाल भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, पंडित नरेंद्र शर्मा, सबका संबंध जो है वो रेडियो से रहा।
2: सभी का संबंध रेडियो से रहा है, और भारत के जितने भी बड़े लेखक रहे हैं, नाटककार रहे हैं, उन्होंने शुरुआत रेडियो से की है, बल्कि आज भी बहुत से लेखक हैं जिनकी शुरुआत रेडियो से है, शुरुआती मंच या आप उसे नर्सरी भी कह सकते हैं, कलाकारों की रेडियो और दूरदर्शन दे ही रहा है। एक और रेडियो की खास बात है, आवाज का उच्चतम मापदंड और उस आवाज के माध्यम से श्रोताओं को अपनी ओर तीव्रता से आकर्षित करने की जो कला है वो रेडियो देता है। अक्सर ही हम हमारे मन में ये ख्याल आता है कि ये आवाज किसकी होगी, काश हम कभी क्या उससे मिल पाएंगे। आपके मन में इस तरह के ख्याल आते थे?
3: आते थे, क्या था कि विनोद कुमार एक की आवाज कैसे है कि हमारे कानों में रच बस गई थी, तो कई रेडियो के कार्यक्रमों का वो संचालन किया करते थे। अमीन साइनी तो खैर थे ही, लेकिन उसके अलावा विनोद कुमार थे, और एक 15 मिनट का नाटक जिसको विश्वामित्र आदिल, मतलब एक शायर, देश के मतलब अच्छे शायरों में से हैं, कई फिल्में भी लिखी, तो वो लिखा करते थे। और मतलब नाटक था इंस्पेक्टर ईगल, एक जासूसी नाटक होता था। और यूनुस परवेज जो फिल्मों में एक चरित्र अभिनेता के रूप में आए, हास्य अभिनेता के रूप में आए, तो उसमें इंस्पेक्टर ईगल होते थे जो विनोद कुमार की आवाज़ आती थी। और उसके अलावा जो है ये अपना एक उनका हवलदार नायक होता था, तो वो कुछ एक अजीब तरीके से हंसते थे और उससे उनको बहुत लोकप्रियता मिली। तो वो कार्यक्रम हमें याद है जब हम लोग छोटे थे, 6वीं 7वीं में, तो इंस्पेक्टर ईगल ही सुन करके, और बाकी हवा महल तो था ही, तो उसमें कुछ हास्य। और हवा महल के भी नाटकों में विनोद कुमार जी अभिनय किया करते थे।
2: नाटकों में, नाटकों को सुनने में आपकी खास रुचि समझ में आती है हमें। उस समय बहुत से ऐसे दौर भी आए जब देश में आपातकाल भी लगा, कई भारत में युद्ध भी लड़े गए, उस समय रेडियो की क्या भूमिका थी जब आप थे, सुनने को मिलता था, मन में कैसा रोमांच आ जाता था, कैसे उत्सुकता रहती थी?
3: 71 की लड़ाई अच्छी तरीके से याद है, तो रेडियो की ही के ही जरिए हमको युद्ध के समाचार मिलते थे कि एक पनडुब्बी गिरा दी गई, दुश्मन के इतने लड़ाकू विमान गिरा दिए गए, वहाँ पे भारतीय सेना जो है वो सियालकोट की तरफ कूच कर रही है, सिंध में 40 किलोमीटर अंदर चली गई, तो ये सब रेडियो के ही हवाले से मिलता था।
2: आपके दोस्त उस दौर में जो रहे होंगे, जो दोस्तों के बीच में आम गपशप के जो मुद्दे होते थे, क्या रेडियो की उनमें भूमिका होती थी कि आज एक खबर सुन के आए हैं, आज बात इस पे हो?
3: नहीं नहीं, ऐसा था कि ज़रूर उनकी भूमिका होती थी, क्योंकि मुझे याद है कि खेल साल भर चलते हैं, मतलब ये है कि क्रिकेट का सत्र शुरू हो जाता था, तो ये था कि दलीप ट्रॉफी से जो है सत्र की शुरुआत होती थी, तो उसका सजीव प्रसारण आता था, और उससे पहले हॉकी का कहीं मैच हो रहा है। और तो अब ये है कि हमारा मैदान में क्या हुआ उसका जानकारी का स्रोत तो सिर्फ रेडियो था, तो पता चलता था कि कौन कैसा खेला। और अभी भी मुझे मालूम है कि 1975 में मार्च के महीने में भारत ने हॉकी का विश्व कप जीता था, और जसदेव सिंह कमेंट्री कर रहे थे, आंखों देखा हाल सुना रहे थे, और वो उन्होंने बोला कि अब लंबी सीटी बजने में 2 ही मिनट रह गए हैं, और हम अपनी घड़ी भी देख रहे थे, और कैसे एक

0: और ये हमें अभी भी याद है, 51 साल हो गए उस बात को।
1: जी
0: और उसके बाद फिर जोर से उन्होंने बोला, भारत विश्व चैंपियन।
1: वाह,
0: तो वो जसदेव सिंह की आवाज़ अभी तक कानों में गूंज रही है, तो रेडियो के ही जरिए सुना था।
1: निश्चित ही ये रेडियो का कमाल है कि लगभग आधी सदी से पहले की बात आपको आज भी याद है।
0: और आधी सदी से पहले ही जैसे क्रिकेट की कमेंट्री करते थे सुशील दोषी हिंदी में, तो हमें याद है कि मतलब खड़े हो करके वो बोलते थे कि गेंद को देखा, परखा, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया 4 रन के लिए। तो ये बातें भी, आवाज़ें जो हैं वो कानों में गूंज रही है कि, और
1: निश्चित,
0: उस समय क्या होता था कि तालियां बजती थीं, मैदान खचाखच भरा रहता था, तो तालियां बजा करती थीं, तो तालियों से ही हमको पता चल जाता था कि विरोधी टीम का कोई विकेट गिरा है या भारतीय बल्लेबाज ने कोई चौका या छक्का मारा है।
1: निश्चित ही
0: तो
1: मनोज जी, जितना रोमांच आप अपनी बातों से महसूस करवा पा रहे हैं, निश्चित ही मुझे लगता है कि उससे कई सौ गुना रोमांच उस समय आपने महसूस किया
0: नहीं
1: होगा जब
0: बिल्कुल,
1: आप
0: अभी
1: इसको
0: भी जब उन दिनों को याद करता हूँ तो वो अभी भी महसूस करता हूँ। और ख़ास तौर पे हॉकी में तो जसदेव सिंह थे
1: जी
0: और क्रिकेट में सुशील दोषी। तो भारतीय टीम जब विदेश, सुशील दोषी थे एक रवि चतुर्वेदी थे जो वनस्पति छात्र के अध्यापक थे, दिल्ली कॉलेज था, बाद में जाकिर हुसैन कॉलेज हो गया। तो उनकी आवाज़ें जो हैं वो अभी भी कानों में, कि जैसे उन्होंने कहा कि गेंदबाज ने बल्लेबाज को यॉर्क करने की कोशिश की, बल्लेबाज ने उस गेंद पर ड्राइव लगाने की कोशिश की और दोनों ही अपने अपने प्रयास में असफल।
1: मनोज जी, कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक गीत को लेने का, जो कि हम आपकी पसंद से लेंगे और हमारे श्रोता भी उसको आपके साथ सुनेंगे।
0: ऐसा है कि नरेंद्र शर्मा जी का एक लिखा गीत है और ज्योति कलश छलके, और नरेंद्र शर्मा जी की बात चली है तो बता दूं कि जो व्यवसायिक सेवा है भारत की, रेडियो की व्यवसायिक सेवा विविध भारती, वो उन्होंने ही शुरू की थी और उनके शागिर्द थे सत्येंद्र शरत, बहुत तो मशहूर लेखक थे वो, ये अपना स्वयंवर और ये इंद्रधनुष का पारा, कोजा अपा, इस तरीके के उनके उपन्यास हैं। तो वो उनके विविध भारती की स्थापना करने में वो इनके मुख्य सहायक थे, और नरेंद्र शर्मा जी का गीत है ज्योति कलश छलके, लता मंगेशकर ने गाया था और लता मंगेशकर पंडित नरेंद्र शर्मा को अपने पिता के रूप में देखती थी।
1: निश्चित ही इस गीत के पीछे जो बड़ी हस्ती है जिन्होंने इस गीत को लिखा है, नरेंद्र शर्मा जी के इस गीत के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस गीत के को श्रोताओं, आप भी उतना ही इसका आनंद उठाए जितना आज मनोज पंजानी जी उठा रहे हैं इस मौके पर जब आकाशवाणी के 90 वर्ष हैं। इस गीत के बाद श्रोताओं, आपका कार्यक्रम में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं श्री मनोज पंजानी जी, जो कि एक लेखक हैं, इतिहासकार रहे हैं और फिल्मों और फिल्मी गीतों पर इनका बहुत बड़ा अनुभव है, बहुत लंबा शोध भी रहा है और आज हमारे साथ कार्यक्रम में इस आकाशवाणी के 90 वर्ष जो है इस साल में कार्यक्रमों की फहरिस्त में आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में। मनोज जी, हमने उस बारे में बात की जब रेडियो का ऐसा दौर था जब सिर्फ रेडियो ही रेडियो था। अब हम आज की बात करते हैं, आज
0: एक
1: भी
0: मिनट आगे बढ़ने से पहले
1: जी
0: मैं एक

0: कहना चाहूँगा कि मोहम्मद रफ़ी देश की आवाज़ रहे हैं, तो उनको ख्याति मिली थी एक गीत से जो महात्मा गांधी जी की मृत्यु के बाद उन्होंने गाया था और आकाशवाणी पर प्रसारित हुआ था, सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी। तो मोहम्मद रफ़ी को उसी गाने से पहचान मिली थी और राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना था और हुसन लाल भगत राम संगीतकार थे
1: जी,
0: उन्होंने स्वरबद्ध किया था। तो
1: मोहम्मद जी, मोहम्मद रफ़ी देश के सबसे बड़े गायकों में से एक हैं, बल्कि अगर इस बात पर लंबी बहस की जाए तो बहुत देश का एक बड़ा तबका मानेगा कि वो देश के सबसे बड़े गायक हैं।
0: हाँ, इसमें कोई शक नहीं।
1: और ऐसे लोगों को मंच देने में आकाशवाणी का बहुत बड़ा हाथ है। आज की हम बात करें, बहुत से नए कलाकार, नए बच्चे जो लेखक बन रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, जिनका लेखन में बड़ा नाम अभी बनता जा रहा है, उनकी भी शुरुआत आकाशवाणी से हुई है। आज के दौर में आकाशवाणी को आप किस तरीके से देखते हैं? जब कोई एक लेखक सपना देखता है कि आज मैं कॉलेज में हूँ लेकिन आज से 10 साल बाद मैं इस देश का सबसे बड़ा लेखक बनूंगा, विश्व स्तर पर कुछ काम करूँगा, तब आकाशवाणी अपनी भूमिका कैसे निभा सकता
0: है? ऐसा है कि जो इतिहास रहा है, राजेंद्र सिंह बेदी ये अपने, सादत हसन मंटो, कृष्ण चंद्र, तो सबकी शुरुआत रेडियो से हुई। तो कहने का ये मतलब है कि कोई जब आकाशवाणी का प्रांगण देखता है तो, और मतलब मैंने देखा कि आकाशवाणी के जितने भी केंद्र हैं और बहुत सारे केंद्र हैं, कोई छोटे शहरों में भी केंद्र हैं, तो वहाँ पे जाइए और जानकारी प्राप्त कीजिए कि मुझे लिखना है तो बता देंगे। जैसे कहानियों का प्रसारण होता है, आज भी होता है, तो आपके पास कहानी है, अच्छी कहानी होगी तो आकाशवाणी पर प्रसारित होगी। और फिर इसी, तो आज भी अपने लेखन को आगे बढ़ाने में आकाशवाणी आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
1: मनोज जी, आज हम उस दौर में खड़े हैं जहाँ पर
0: एक और बात, जैसे मतलब युवाओं पर केंद्रित कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं, तो कोई अंदर जाने का कोई बहुत मुश्किल रास्ता नहीं है। आप जाइए, ऑडिशन दीजिए और
1: जी,
0: तो अगर सबसे बड़ी बात पहले तो यही है कि आपको खुद देखना पड़ेगा कि मेरी आवाज में मतलब वो स्तर है, मतलब मेरी आवाज उस स्तर की है कि रेडियो पर प्रसारित हो सके। लेकिन जाइए और ऑडिशन दीजिए और फिर
1: आज हम उस दौर में खड़े हैं जहाँ एंटरटेनमेंट का जो स्पेस है, एंटरटेनमेंट की जो विधा है, उसके लिए बहुत से और मंच भी उपलब्ध हो चुके हैं। ये स्पेस अब बहुत डेमोक्रेटाइज हो चुका है। उस दौर में आकाशवाणी को अभी भी ये कहा जाता है, जो छोटे कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं, उनके लिए अभी भी ये नर्सरी के तौर पे काम करता है। उनको जो शुरुआत में जो मंच चाहिए होता है, शुरुआती मंच जो चाहिए होता है, उसके लिए आज भी सबसे बड़ा मंच माना जाता है। आप इसे कैसे देखते हैं, आपके विचार क्या हैं?
0: बिल्कुल सही है, क्योंकि आकाशवाणी, क्योंकि ये है कि बहुत छोटे शहरों में भी आकाशवाणी के केंद्र हैं, तो ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप जाते हैं, अपना ऑडिशन देते हैं और आप की का गीत, आपकी कविता, आपका, आपकी कहानी, आपका नाटक अगर प्रसारित होता है तो उससे

0: एक आत्मविश्वास मिलता है, और आत्मविश्वास मिलता है और इसी आत्मविश्वास के जरिए आप आगे बढ़ सकते हैं। कहीं और जाना हो तो बता सकते हैं कि मैंने आकाशवाणी में काम किया है, और फिर ऐसा है कि मौका मिलता है, आकाशवाणी आपको लगातार काम देती है, तो जब आपको लगातार काम मिलता है तो जो आपकी कला है वो दूर दूर तक पहुंचती है, और वहाँ से जो है लोग आपके पास आएंगे कि भाई हमारे लिए भी काम कीजिए। अब जैसे मैं मतलब बता रहा हूँ कि एक फिल्मकार हुए नासिर हुसैन, मनोरंजक फिल्में बनाते थे, तुमसा नहीं देखा, दिल दे के देखो, जब प्यार किसी से होता है, मतलब वो करीब 20 साल तक उनकी कोई फिल्म जो है वो नाकामयाब नहीं हुई। तो उन्होंने भी शुरुआत जो है वो आकाशवाणी लखनऊ से की थी, एकांकी लिखा करते थे। तो देखिए फिर मतलब वहाँ, और दूसरी बात यह है कि जब आप काम करेंगे तो जो आपकी कला है वो इसी तरीके से उसको निखार मिलेगा। तो
1: आपका लंबा अनुभव रहा है फिल्मों और फिल्मी गीतों का। एक दौर था जब आकाशवाणी ही एक मंच था फिल्मी गीतों के लिए।
0: हाँ
1: आज के समय में जहाँ YouTube म्यूज़िक है और दूसरे मंच हैं, बहुत से मंच हैं आज के समय में जो फिल्मी गीतों को ऑन डिमांड इंटरनेट के माध्यम से देते हैं। ऐसे समय में रेडियो को अपना महत्व बनाए रखने के लिए, किसी भी तरह के रेडियो को आकाशवाणी के साथ, आप कैसे देखते हैं फिल्मी गीतों को रेडियो पर क्यों सुना जाना चाहिए?
0: नहीं, ऐसा है ना कि कई सारे ऐसे गीत हैं जो अभी कुछ साल पहले तक बताया गया कि फिल्मों में 84,000 गीत रिकॉर्ड हुए और 68,000 गीत अभी भी उपलब्ध हैं। तो कई गीत ऐसे हैं जो टीवी पर नहीं देख सकते लेकिन रेडियो पर सुने जा रहे हैं, और रेडियो पर आप, तो यही है कि रेडियो की एक भूमिका है कि जो भी उनके पास है, जो भी सामग्री उनके पास है, उसको प्रिजर्व करें, क्योंकि ये एक सांस्कृतिक धरोहर है। और अब उस तरीके की टेक्नोलॉजी आ गई है तो जो कुछ भी है उसके पास, उसको देखिए कि किस तरीके से प्रिजर्व हो सकता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। और ये है कि मौके मौके पर, अब जैसे यही मैंने बोला कि मोहम्मद रफ़ी का गीत है सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, तो जितना उसको प्रसारित, जितना उसका प्रसार कर सकते हैं कीजिए।
1: मनोज जी, आज हम जब इस मंच पर बातचीत कर रहे हैं, एक नया फॉर्मेट बातचीत का और निकल के आया है जिसे हम पॉडकास्ट बोलते हैं। लंबे दौर की बातचीत होती है, लोग सुनना भी पसंद करते हैं, बड़ी अनौपचारिक तरीके से बातचीत होती है। रेडियो बहुत बदलावों के दौर से गुजर रहा है, आकाशवाणी भी उन बदलावों को अपने में समायोजित कर रहा है। भविष्य में हम रेडियो की बात करें, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, आपको क्या लगता है भविष्य का रेडियो कैसा होगा?
0: ऐसा है कि जैसे वही है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब आप चलते फिरते कुछ देख तो नहीं सकते, सुन सकते हैं। अब ये है कि आपको अभी दफ्तर जाना है, 1 घंटा दफ्तर पहुंचने में, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट भी लग सकते हैं, तो 15 मिनट में जो है आप कुछ सुन सकते हैं कोई। और अब जिसको बोला है कि ऑन डिमांड आता है, तो आप ऑन डिमांड कोई गीत सुनिए, कोई नाटक सुनिए,

0: 15 मिनट भी बहुत होते हैं, और जैसे ये है कि जब आप अपने काम की जगह पर पहुंचते हैं तो जिसको कहते हैं ना कि पूरी ऊर्जा के साथ वो आपको रेडियो वो ऊर्जा देता है।
1: निश्चित ही बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। ऑन डिमांड की बात करें तो प्रसार भारती ने अपना एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जहां पर आकाशवाणी के सभी नाटक, सभी महत्वपूर्ण आवाज़ें, गीत, जो आकाशवाणी का सबसे अच्छा काम है, वो आपको एक ही जगह पर वेव OTT प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। इस तरह के बदलाव के साथ आकाशवाणी आप सभी श्रोताओं की सेवा में तत्पर है। और मनोज पंजानी जी, आपने आकाशवाणी के 90 वर्ष होने पर आज स्टूडियो में आकर के बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत की।
0: मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ
1: जी
0: कि उपेंद्र नाथ अश्क जब अपना साहित्य लिख रहे थे, रेडियो पे नाटकों का निर्देशन भी कर रहे थे, तो उनके साक्षात्कार आपको आकाशवाणी में मिल जाएंगे।
1: जी,
0: सत्येंद्र शरत का 1 घंटे 2 घंटे का एक साक्षात्कार है जो आकाशवाणी के पास है, और ये लोग ऐसे हैं जो अपने व्यक्तित्व में देश का इतिहास समेटे
1: जी
0: समेटे हुए हैं, तो वो सारा काम उसको बरकरार रखने का, प्रिजर्व रखने का काम जो है वो आकाशवाणी
1: जी
0: कर रहा है,
1: जी
0: और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो
1: निश्चित ही बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत आपने हमारे श्रोताओं के लिए की। आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम। कार्यक्रम के अंतर्गत आपने सुना मनोज पंजानी से संकल्प मिश्रा की भेंटवार्ता, और इस कार्यक्रम की परिकल्पना थी मंजुला नेगी की। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
3: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए।

तेल विपणन कंपनियों ने लोगों से अपील कर कहा, प्रदेश में पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस सहित सभी पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता सामान्य बनी हुई है। कंपनियों ने लोगों से अपील करते हुए कहा, अफवाहों के आधार पर पेट्रोलियम पदार्थों की खरीद न करें। कंपनियों ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि टर्मिनलों एवं डिपो से लेकर रिटेल आउटलेट तक संपूर्ण ईंधन आपूर्ति श्रृंखला सुचारू एवं प्रभावी रूप से संचालित हो रही है और कहीं भी किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। राज्य के सभी स्थानों पर ईंधन स्टॉक की निरंतर निगरानी की जा रही है, सभी कार्य सुचारू रूप से जारी हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है और राज्य भर में इसकी उपलब्धता सामान्य बनी हुई है। सभी उपभोक्ताओं तक निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। चारधाम यात्रा और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सुरक्षित हवाई सफर के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जल्द शुरू करेगा। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार आधुनिक तकनीक और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत कर रही है। श्री चौहान ने कहा कि एटीसी प्रणाली शुरू होने के बाद उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हेली सेवाएं और अधिक सुरक्षित, भरोसेमंद और सुव्यवस्थित होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि इस आधुनिक नियंत्रण केंद्र में डीजीसीए मौसम विभाग और यूकाडा की विशेषज्ञ टीम तैनात है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ समन्वय स्थापित कर हेली सेवाओं की निगरानी कर रही है। केंद्र से प्रत्येक हेली रूट, हेलीकॉप्टर ट्रिप और शटल सेवाओं की रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग की जा रही है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बेहतर यातायात और पार्किंग व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। आवास विभाग ने विभागीय व्यय समिति की बैठक में चमोली के गैरसैंण और जनपद बागेश्वर के कांडा में मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण परियोजनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आवास एवं राज्य संपत्ति सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में गैरसैंण और बागेश्वर जनपद के कांडा में मल्टीलेवल पार्किंग बनाने की परियोजनाओं पर चर्चा की गई। श्रमिकों को बेहतर सुविधाएं और सम्मानजनक मानदेय देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये बात श्रम आयुक्त उत्तराखंड प्रकाश चंद दुमका ने की। श्रमिकों के धरने प्रदर्शन की घटनाओं के बाद श्रम विभाग ने कहा कि श्रमिकों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि लागू की है और उद्योगों को ओवरटाइम बोनस और अन्य सुविधाएं समय पर देने के भी निर्देश दिए हैं। चमोली में जिलाधिकारी गौरव कुमार ने धरती आवा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान 2026 का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत चमोली के मलारी, गमशाली एवं माड़ा ग्राम पंचायतों में 20 से 22 मई 2026 को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां विभिन्न विभागों द्वारा आमजन को योजनाओं की जानकारी एवं लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि ये अभियान दूरस्थ तथा सीमांत जनजातीय क्षेत्रों तक सभी सरकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी धनंजय लिंगवाल ने कहा कि शिविरों में समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य, बैंकिंग, आधार, पेंशन, आयुष्मान, स्वरोजगार एवं अन्य विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे जनजातीय समुदाय को योजनाओं से लाभान्वित हो सके। चंपावत जिले में एग्रीस्टेक योजना के तहत किसानों की फार्मर रजिस्ट्री अभियान को रफ्तार देने के लिए गांव में पंजीकरण कर्मी तैनात किए जाएंगे। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि इस नई व्यवस्था के तहत ग्राम रोजगार सेवक पंचायतों में तैनात डाटा एंट्री ऑपरेटर किसानों का पंजीकरण कराने में मदद करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत में विविध कलाकारों के गाए हिमाचली लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उमा शर्मा के गाए हिमाचली लोकगीत के साथ।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम लोक संगीत में सुनवाते हैं आपको अगला हिमाचली लोकगीत ज्वाला प्रसाद शर्मा और सोमदत्त बट्टू की आवाज में।

0: कार्यक्रम लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे विविध कलाकारों के गाए हिमाचली लोकगीत।
1: हाँ, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ,
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: FM 100.5 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। श्रोताओं 11 बजे ही पेश है कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को हमारी ओर से नमस्कार। श्रोताओं, गर्मी के इस मौसम में तापमान तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए इस मौसम में अपना और अपनों का ध्यान रखें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ आरंभ करते हैं आज का व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम। और लेते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये पहला गीत। मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, आप हैं करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से, कानुगुला गोपाल, महेश्वरी, प्रवालिका, विष्णुवर्धन और विग्नेश। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है, दादरी गेट भिवानी से ही कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल और कुणाल मेहरा। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश लिखते हैं, सिहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात अदीब और कादिर चौधरी। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है, आपने फरमाइश हमें लिख भेजी है, आप हैं परिमल कासगंज से आबाद खान, नवील खान, आरफा इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली और बदायूं से हैं आफरीन खान और जमीर खान। साथ ही ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है, आप हैं श्रोता जिन्होंने मैसेज लिख भेजा है, लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से, हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर मीनाक्षी काना, मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश में लिखते हैं, झालावाड़ राजस्थान से नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा और फुंदी भाई बागरी। और ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य, लाडू कोयल मल्होत्रा, इनके पापा जी हैं नानक चंद मल्होत्रा, रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल और डुग्गू भाविक सिक्का। आई श्रोताओं सुनते आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का पहला गीत, मोहम्मद रफी की आवाज़, फिल्म का नाम है धरती।

0: कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी की पसंद पर। गांव शिरडे जिला सांगली से हनुमंत शिंदे, संगीता ऋषिकेश और वसुंधरा। साथ ये फरमाइश हमें लिखते हैं आप हैं मुजफ्फरनगर से साहिना परवीन, फातिमा खुशबू, आयजा मोहम्मद अदीब और मसरूर अली। और इसी गीत को सुनना चाहे आप हैं हैदराबाद बी एन रेड्डी नगर से मोनिका बालू और विनय कुमार। साथ ये फरमाइश हमें लिख भेजी है आप हैं जिला कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, गीता निहारिका, सुशांत और सुरेश चौरसिया। साथ ये फरमाइश हमें लिखते हैं आप हैं गांधी चौक पाड़ में राजस्थान से बबलेश पंवार, डेनी मनीष पंवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफा की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। साथ ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है जिला मुरादाबाद गांव दोलापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवी, लक्ष्य सोनी, मोहरी रीति कुर। साथ में है बलवीर सिंह। साथ ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं आप हैं साधो शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़, नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद और नदीम पटेल। और इसी गीत को सुनना चाहा है जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी से रूपेश, संगई महेश, प्रगेश, प्रीतेश और साथ में इनका पूरा संगई परिवार। मुंदीचक पागलपुर से दिलीप कुमार सोनी और कमल किशोर शाह। साथ ये फरमाइश हमें लिखते हैं आप हैं हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल मोहम्मद और कमल नफीसा परवीन और साथ भी इनके परिवारजन। मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिखते हैं गाँव करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अब्रार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई नेशा परवीन तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है रामपुर का लक्ष्मण।
1: क्या कहा?

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोता सुन रहे कार्यक्रम वर्ष फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी की फरमाइश पर। व्हाइटफील्ड बंगलुरु से भारत भूषण जो श्रीवास्तव द्विवेदी भूषण संस्कृति और पौरुष, साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीमुन्ना दानिश आसिफ शेख, साथ ही ये फरमाइश हमें लिखते हैं। आप ऊपरकोट मोहला चौकुटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीर शाहनवाज, फरतीन सुहान अरजान अब्बा नब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण, मित्रनगर बीरे शहर से विकास बंसोड़ी रेखा अदिति और वैभव, साथ ही ये फरमाइश हमें लिखते हैं। आप हैं गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला विशाल और निशा। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में गीत, फिल्म का नाम है मिलन।
2: मुबारक हो सबको समाये सुहाना,

0: रहा।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी की फरमाइश पर। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वदन आदेश कुमार काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन और इसी गीत को सुनना चाहा है आप हैं करूला मुरादाबाद से अयुब खान, इरमगुड़ी अयुब खान, सिंदौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी और इनके परिवारजन। साथ ही ये फरमाइश में लिखते हैं छोटे बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूल वाले, दुखना जूही इकबाल, इमरान अहमद कपासहेड़ा बार्डर नई दिल्ली से, आमना नसरीन बागवान, आसमा परी राबिया, आशु अहमद और साथ में इनके परिवारजन। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश मेलिक भेजी है महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से ही रमेश नाचानी, भारती विनीत, मिथिल नाचानी, बाबू भाई और भारती देवी। और इसी गीत को सुनना चाहे आप है मन मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा कुमारी सुजाता पोहरकर। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है आप हैं जिला खरगोन सनावत से मास्टर अशोक और मार्जना अनुजायुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान और साथ में इनके बहुत सारे मित्र। ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है आप हैं असम से आप हितेंद्र दास, सोनाबिल और इनके परिवारजन। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं मरहरा दरवाज़ा ईटा से नबी हसन अब्बासी, शहनवाज, नवेद, सुहेल, रसीद और इनके परिवारजन। और इसी गीत को सुनना चाहा है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से आप हैं तुलसी मस्किन, वीना आशीष, राजा चैतन्य, मेगा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशु और रिधान खुराना। साथ ही ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं आप हैं बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कालपी वाले कमरू निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना।

कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश प्रसारित किया जा रहा है 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम का यह गीत आप सभी की फरमाइश पर। भोपाल का राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान और पूजा परिहार, और इसी गीत को सुनना चाहा है आपने फातिमा कोलोरी, श्री रामपुर से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सभी है मिखाइल और साथ में जैन मुजावर, और इसी गीत को सुनना चाहा है आपने फरमाइश हमें लिख भेजी है। निज़ामाबाद तेलंगाना से नागनाथ गुप्ता, गोदावरी गुप्ता, रवि, राजू और कल्याणी, और साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी है आप हैं। फरमाइश हमें लिखते हैं तेलंगाना छोटूपासी कस्तूरी नेमायडू, उमा देवी, पेराइडू नारायण और इनके परिवारजन। साथ ही ये फरमाइश हमें लिखते हैं बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल हर्ष, मनीष, अंशिका, यूनुस खान और साथ में सोफिया खान।

दौलत बाग मुरादाबासी अंसार हुसैन और समीर मलिक, और उसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिखते हैं। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। साथ ही ये फरमाइश हमें लिखते हैं शांति कॉलोनी जगाधरी से सूरज मंडल और अनिल शर्मा। ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। आपने फरमाइश हमें लिख भेजी है, ये मैसेज हमें लिखते हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। साथ ही फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं डुमरा बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीब और दानिश अंसारी। बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद और परमानंद आर्य। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिखते हैं सहारनपुर चंद्रनगर से सुरेश नारंग, आशु और सोनाली। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाज़ें हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर की, फिल्म का नाम है गुमराह।

11:30 और 4 सेकंड हुए हैं। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम वर्षा फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी की पसंद पर, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल दीपिका, गव्या भाई, सुच्चा सिंह पाठक। साथ ही ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं, आपने मैसेज हमें लिख भेजा है, आप हैं मायादेवी ऋतिक आदित्य कसाना अजीत कसाना लादावली जिला मुरादाबाद से और इसी गीत को सुनना चाहा है। आप हैं एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता गणेश, कार्तिक परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और ये फरमाइश

हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक मल्होत्रा, नीलेश शर्मा, जय वीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश लिखते हैं गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं गाँव कलाना तहसील भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और उद्धव कड़वासरा। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है गोरा और काला।

कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने आपने मैसेज हमें लिख भेजा है। वार्ड नंबर 18 कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से संजय कुमार नेगी, अंजना नेगी, डॉक्टर आकांक्षा, सुधांशु नेगी और साथ में इनके परिवार

कार्यक्रम बर्ड सफरमाइश आप सुन रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी की फरमाइश पर। शेरवानी स्कूल गंजे डिंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर लुबना और आलिया अंसारी। जिला बरेली गांव करेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, नसरीन समानस शमीम और साथ में माहिनूर अंसारी। ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। आप हैं धांडी नांदूरा से श्री कृष्ण बाटे, संदीप और अमूल्य बाटे। इसी गीत को सुनना चाहा है। आप हैं डुमरा बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं। आप हैं रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एली जैनैब। ये साथ ही फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं बागपत से हैं ममता ढींगिया और कुणाल ढींगिया। और इसी गीत को सुनना चाहा है। आप हैं कलानूर हरियाणा से नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन शर्मा, मऊनाथ भंजन से आप हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक और आर्यन वर्मा। और इसी गीत को सुनना चाहा है हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन कृष्ण और साथ में पीहू स्वर्णकार। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी है मोहल्ला बारादरी महमूद खारामपुर से भाई रफत साहिब, सईद भाई, राशिद भाई, असद भाई, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और साथ में नगमा नाज मंसूरी। दंतरंगी के हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और साथ में हैं रुद्र वर्मा। और ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं नांदेड़ से हैं। मैसेज श्रोता लिखते हैं आप हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिखते हैं। आपने मैसेज लिख भेजा है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरी नौरी नासनर, मोहम्मद कैफ अंसारी। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल, मनहर उदास और सुखविंदर सिंह को। फिल्म का नाम है कर्मा।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश के लिए अगला मैसेज श्रोता लिखते हैं, कस्बा गुनोर UPC, फारूक अली खान, फेजी फरहाज, फरहीन, फारिया और ताहिरा। साथ ही मैसेज श्रोता लिखते हैं, नई दिल्ली से गुरमीत सिंह मेहता। साथ ही नजीबाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं मनोज वर्मा। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रजित कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरु शब्द सिंह राहुल। और इसी गीत को सुनना चाहे आप हैं धनूरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद बेबी आलिया और साथ में आयन बाबू, जिला मुरादाबाद गाँव दुलापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसराइल, साथ में नरकीस खातून। ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सावी राई और महराज जहां। और इसी गीत को सुनना चाहा है उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश। ये फरमाया श्रोता हमें लिखते हैं, संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, अब्दुल अकजियाउलक, मोहम्मद उमर डावर और साथ में इनकी बहुत सारे मित्र। ये फरमाया श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं श्री गणेश अविकार्ट श्रीरामपुर से, डी अशोक कुंभार, अविका जीविका, सानू कुंभार और साथ में अर्चना। मॉडल टाउन करनाल से हैं सुदी नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति और साथ में इनके मित्र। ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है, आपने ये मैसेज लिख भेजा है, जमशेदपुर झारखंड सुपाईसाई गांव से देवेंद्र ताती, राकेश, प्रकाश कुमारी, रेशमा, दीपाली कुमारी और साथ में देवेंद्र जी। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से पूनम कुकरेती, सुनील विवेक, वंदिता और इनके परिवारजन। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा और इंद्रजीत कौर। और साथ में ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, निज़ामाबाद तेलंगाना से अब्दुल रहमान, मुजीबुर रहमान, अजीज़ रहमान, हबीब रहमान और साथ में इनके बहुत सारे मित्र। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है जंजीर।

आइए श्रोता बढ़ते हैं आप सभी की फरमाइश के अगले गीत की ओर। मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजे हैं जालंधर से ही संदीप मकर, ज्योति मन्नत भरत और साथ में कमल साहनी। ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है। मैसेज कस्बा चिलकाना से मोहम्मद जरीफ अंसारी नईम, डॉक्टर आमिर अंसारी, दानिश राजा, मुन्ना नजीम। साथ ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। आप हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, सरिता, पुष्पा, अंजू, योगिता, अर्जुन साहू और साथ में इनके बहुत सारे मित्र। गांव हीरा वाली फाजिल का पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा और इसी गीत को सुनना चाहा है। आप हैं गांव चौहलदा बागपुर से संजय ढींगिया, नमोनोरा पा ढींगिया और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिखते हैं। आप हैं निकट बिजलीगढ़ मीरगंज बरेली से कल्लू भाई मिस्त्री, अजीम साइकिल वाले और साथ में इनके बहुत सारे मित्र। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सभियाना, सुरेहान। साथ ये फरमाइश लिखते हैं रानीगंज बंगाल से रवि और इंद्र। फरमाइश होता उन्हें लिख भेजी है शांति निवास लहेगांव रेलवे से कुमारी कल्पना कुराड़ी, वंदना आशीष और दीपक कुराड़े। सहारनपुर आईटीआई से मैसेज लिखते हैं ब्रजेश कुमार सैनी और इनके परिवारजन। साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोता लिखते हैं। आप हैं अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुल्ला सलमा सदर हम और साथ में मोहम्मद आलम हाशमी। ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं। आप हैं गांव गोली करनाल हरियाणा से हैं नरेंद्र अहलावत, जितेंद्र अहलावत और साथ में इनके परिवारजन। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी निमी पमेश, याशी तो निशांत ध्रुव और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोता लिखते हैं पुरानी भिलाई चरोदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी और इनके परिवारजन, बोरावकी नगर श्रीरामपुर से मनोज जेठवा और हर्षा जेठवा। साथ ही ये मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है निज़ामाबाद तेलंगाना से शेख अब्दुल अली, निगाद परवीन और साथ में इनके परिवारजन। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी।

0: इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें भेजी है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हीना हर्षित और खुशी गोस्वामी ने। साथ ही मैसेज श्रोता लिखते हैं चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदेल संगीता रानी पप्पू मैक सुनीता आरजू हंसमुख लाल बुलबुल शक्ति और साथ में इनका पूरा जिंदल परिवार। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं आपने मैसेज लिख भेजा है हैदराबाद से आप हैं संजय वाजपेयी और इनके परिवारजन। साथ ही ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं गंज डिंडवारा से शमशुल कमर आयुशान फातिमा अदनान खान फैजान खान और इनके परिवारजन। जनकपुरी सहारनपुर से आप हैं जोन डिकेस्टो रोजी पलो विली से डिकेस्टो और इसी गीत को सुनना चाहा है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गग्नेजा पूर्ण विशाल प्रिया दिशानी और साथ में ही निमित आहूजा। गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा सुनीता शमी रजनी आकाशदीप और साथ में इनके परिवारजन। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी है गाँव जाखोद राजस्थान से शंभो दयाल खटक विमला देवी अमरजी सुंदरलाल योगेश दीपक कुमारी पूजा। साथ ही ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं आप हैं जलालाबाद शामली यूपी से हैं राशिद मंसूरी आयन जीशान मंसूरी और इसी गीत को सुनना चाहा है आप हैं ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी राम कारी मीना कारी पूज राज आरती आकर्षण और जयश्री। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी थी आप हैं गाँव उगाला अम्बाला से राजेंद्र कुमार मलकित कौर आरती रानी राघव हरमन और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश श्रोताओं ने लिख भेजी है आप हैं जिला काठुकुदम तेलंगाना से राजेश खन्ना अनिता राज सुनीता भानुराज अमित खन्ना मी और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं आप हैं सब्जी मंडी झज्जर से बिट्टू भाटिया रीटा रजत और मैंग भाटिया और इसी गीत को सुनना चाहा था कुंभार कले श्रीरामपुर से अशोक दले सविता निकी त्रिवेणी ऋषिकेश जीविका और सानिका दले पुनावले पुणे से अजय सोनबने का करिश्मा विकार विशाखा। साथ ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी थी आप हैं मैसेज लिखने वाले श्रोता बघेरा दुर्ग से हैं संतोष नामदेव सार्थक समर्थ और शौर्य नामदेव और इसी गीत को सुनना चाहा था आप हैं श्रोता तेलंगाना करीमनगर से लक्ष्मी नारायण और इनके परिवारजन। श्रोतम इसी के साथ आज का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 12 बजने को है। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे।
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले आकाशवाणी न्यूज ओस्लो नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
3: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा कृषि डेयरी फार्मिंग रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: भारत और स्वीडन ने फैसला किया है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग साझा समृद्धि और सतत भविष्य का रास्ता तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया के सामने एक निर्णायक विकल्प है, या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाना या फिर अपनी साझेदारियों को मजबूत बनाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है।
4: दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi will attend the third India-Nordic summit in Oslo today, aimed at strengthening India's strategic partnership with Nordic nations in areas such as technology, renewable energy, defence, sustainability and trade. We have more from our correspondent.
6: This summit will build upon the increased sectoral cooperation between India and the Nordic countries since the previous summit held in Copenhagen in 2022. The areas in focus are tech and innovation, sustainability, renewable energy and digitization. With TEPA in force, the summit will try to forge deeper trade and investment linkages. India's bilateral trade with this bloc currently stands at $19 billion. This summit will help in expanding our multifaceted cooperation with the region. It will also provide an opportunity to exchange views on global and regional issues of mutual interest. Prime Minister Modi will also hold bilateral meetings with the Prime Ministers of Denmark, Iceland and Finland on the margins of the summit. Sangeeta Godbole, Akashwani News, Oslo.
5: Earlier, Prime Minister Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement. The summit was also attended by CEOs of over 50 companies and more than 250 participants from the Norwegian and Indian business and research communities. Prime Minister Modi will travel to Italy today on the fifth and final leg of his five-nation tour. India and Sweden have emphasized that cooperation will define the pathway to shared prosperity and a sustainable future at this moment of global uncertainty. In an article written by Prime Minister Narendra Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, it was highlighted that at a time of global uncertainty, energy insecurity and economic divisions, the world must choose between working alone or strengthening international partnerships. In the article, both the Prime Ministers noted that as the United Nations marks its 80th anniversary, the value of international cooperation and multilateralism has become even more evident. They emphasized that at the same time, the need to reform global governance institutions to reflect contemporary realities has become impossible to ignore. The Supreme Court today refused to recall its earlier directions that stray dogs picked up from public places must not be released back after vaccination or sterilization. A bench headed by Justice Vikram Nath dismissed pleas seeking modification of the November 2025 order and directed authorities to confine such dogs to shelters. The court cited deeply disturbing incidents of dog attacks on children, elderly persons and travellers and said the menace had reached critical public areas. Petrol and diesel prices have been hiked by around 90 paise per litre today, marking the second increase in less than a week. In Delhi, petrol now costs 98.64 rupees per litre, while diesel is priced at 91.58 rupees. The latest hike comes days after a 3 rupee per litre increase. On May the 15th, the first fuel price revision in over 4 years. The rise follows a sharp surge in global crude oil prices amid the Iran conflict and disruptions in the Strait of Hormuz. Defence Minister Rajnath Singh has called on President of Vietnam Tho Lam in Hanoi and reaffirmed India's commitment to further deepen defence cooperation between the two countries. The Defence Minister said in a social media post that cooperation is a key pillar of the enhanced comprehensive strategic partnership between the two countries. He said India and Vietnam share a strong bond rooted in mutual trust, shared values and close cooperation in defence, security and regional stability. Mr. Singh also held a bilateral meeting with his Vietnamese counterpart General Phan Van Chiang. In IPL cricket today, Rajasthan Royals will take on Lucknow Super Giants in Jaipur at 7:30 p.m. Last night, Sunrisers Hyderabad confirmed its place in the playoff, defeating Chennai Super Kings by 5 wickets at M.A. Chidambaram Stadium. And with that, we end this news bulletin.
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 12:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए FM न्यूज हेडलाइंस।
7: ये आकाशवाणी है, अब आप नीता कांडपाल से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी का निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार। केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने और चार्जिंग ढांचे को मजबूत करने के लिए 500 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण हेलीकॉप्टर हादसे के नियंत्रण के लिए ATC प्रणाली जल्द शुरू करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओस्लो में होने वाले तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में प्रतिभाग करेंगे। टेक्नोलॉजी इनोवेशन और ग्रीन ट्रांजिशन जैसे कई क्षेत्रों में देशों के आपसी सहयोग पर चर्चा की जाएगी। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड फेरी का उपयोग कर केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग देश में वाटर मेट्रो सेवाओं को शुरू करेगा। पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में इसकी शुरुआत होगी। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब मरीजों को मिलेगा सस्ती कैंसर जांच का लाभ, शुरू हुई सीटी स्कैन गाइडेड बायोप्सी। अमेरिका ने समुद्र में फंसे रूस के तेल पर प्रतिबंध की छूट की अवधि को 1 माह बढ़ाते हुए 17 जून तक कर दिया है। सिख समुदाय की हेमकुंड साहिब यात्रा 20 मई से होगी शुरू, प्रशासन की तैयारियां तेज। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनसुनवाई कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित 72 समस्याओं के निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बागेश्वर में उद्यान विभाग शुरू करेगा प्रशिक्षण अभियान, 100 से अधिक काश्तकारों को सिंचाई तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। और चमोली के गैरसैंण और बागेश्वर के कांडा में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जाएगा, आवास विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 12:12 हुए हैं। लीजिए सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिए विविध कलाकारों के गाए गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे अंशु थपलियाल का गाया ये गीत। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 12:30 हुए हैं। अब बहने सुनेंगी कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार बहनों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम महिला जगत में। और आज मैं हूं आपके साथ आपकी सखी सुमन बगासी। बहनों, गर्मी का मौसम है। गर्मी इतनी है कि घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, मगर अपने ज़रूरी कामों के लिए तो हमें बिल्कुल घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। और अगर काम हमारी पसंद के हों तो फिर निकलना बनता ही है। बहनों, हर किसी की आदतें, हर किसी के शौक अलग अलग होते हैं। किसी को जो काम करना अच्छा लगता है तो वही काम दूसरे को बोरिंग लगने लगता है। बचपन में तो हम अपनी पसंद के सारे काम करते हैं और अपने हर शौक पर ध्यान भी देते हैं, मगर बड़े होते होते हम सिर्फ अपने ज़रूरी कामों को ही महत्व देने लगते हैं। देखिए, सबकी अलग अलग परेशानी होती है और कई लोग अपनी परिस्थितियों के चलते, अपनी जिम्मेदारियों के चलते अपने शौक पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अपने शौक को कहीं ना कहीं छुपा लेते हैं और मार देते हैं। मगर बहनों, आपने भी महसूस किया होगा ना कि जब हम अपने शौक का कोई काम करते हैं तो उसे पूरी लगन और पूरे उत्साह के साथ करते हैं, है ना? बहनों, हमें पता ही नहीं चलता कि समय कब निकल जाता है और खुशी भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। बहनों, ज़िंदगी में काम, चिंता और व्यस्तता तो लगी ही रहेगी, मगर इनके चलते हमें थोड़ा सा ध्यान खुद की खुशी और खुद के शौक को भी देना चाहिए, ताकि आगे चलकर हमें ये पछतावा ना रह जाए कि क्यों हमने अपने बारे में नहीं सोचा, क्यों हमने अपने शौक को मार दिया। हमें जो काम अच्छा लगता है, जैसे किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, कोई पढ़ने का शौकीन होता है, किसी को क्राफ्टिंग और किसी को डांस का बहुत शौक होता है, तो बहनों अपने इन ज़रूरी पसंद के कामों के लिए समय ज़रूर निकालें और धीरे धीरे हमें समय का प्रबंधन करना भी आ जाता है। अपनी पसंद का काम करने से हमारा तनाव भी कम होता है। बहनों, शौक हमारे जीवन में खुशियाँ और मनोरंजन के साथ साथ हमारे जीवन में सकारात्मकता और हमारे जीवन को बैलेंस यानी कि संतुलित करने में बेहद मददगार होते हैं। बहनों, आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में तो ज़्यादातर लोगों ने अपने शौक को, अपने हुनर को और भी सुधार करके इसे अपनी आय का एक जरिया भी बना लिया है। तो बहनों, अगर आपका भी कोई ऐसा शौक है जिस पर आप ध्यान नहीं दे पाए हैं, तो सोचिए मत, बस शुरू हो जाइए। अपने शौक को पूरा करने के लिए बस एक कदम बढ़ाइए, रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, अभी लेते हैं ये म्यूजिकल ब्रेक।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: खुश है।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: बहनों, आकाशवाणी भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े जनसंचार माध्यमों में से एक है। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का आधिकारिक नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था। 8 जून 1936 से 2026 तक अपने आकाशवाणी जो है 8 जून 2026 को 90 गौरवशाली वर्ष पूरे करने जा रहा है। तो बहनों, इसी से संबंधित करते हैं कुछ बहनों से बातचीत और जानते हैं रेडियो की उनके जीवन में क्या महत्ता है।
4: आज हमारे साथ हैं एक महिला, चलिए जानते हैं उनका नाम। मैम, आपका नाम क्या है?
5: मेरा नाम शकुंतला इस्तवार
4: जी। आप करती क्या है?
5: मैं पहले टीचर थी, अब रिटायरमेंट होकर घर में हूँ।
4: अच्छा, पहले शिक्षिका थी, अब रिटायरमेंट हो चुका है आपका। आप रेडियो सुनना पसंद करती हैं?
5: हाँ, बचपन से ही। मैं छोटी थी तभी रेडियो था हमारे घर में।
4: अच्छा, रेडियो था तभी से सुनती हैं आप? रेडियो सुनने का शौक है आपको?
5: हाँ जी।
4: तो जैसा कि आपने बताया कि आप वर्किंग थी, तो जब ऐसी लाइफस्टाइल थी आपकी, आपको बच्चों को भी ध्यान रखना पड़ता होगा और अपनी जॉब का भी, तो ऐसे में आप रेडियो सुनने का समय कैसे निकालती थी?
5: सुबह खाना भी बनाते रहो, रेडियो सुनते रहो।
4: अच्छा, ये ये तो है जी। कौन कौन से प्रोग्राम सुनती थी आप?
5: सुबह सैल संगीत और ग्राम जगत, ये सुनती।
4: अच्छा अच्छा, पहले के जमाने में तो रेडियो हुआ करते थे तो, और अब के जमाने में तो मनोरंजन के इतने साधन है, टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है। आप किस डिवाइस पे रेडियो सुनना पसंद करती हैं?
5: हम पहले जमाने में तो रेडियो था ना, खाली सब साथ बैठ के रेडियो सुनते थे सुबह और शाम बैठ
4: के। हाँ, ये तो है कि रेडियो की बात अलग ही है। चाहे कितना ही चलन आगे बढ़ता रहे, मगर एक रेडियो की अपनी ही पहचान है, है ना? आपका कोई किस्सा, कोई अनुभव आप शेयर करना चाहेंगे हमसे?
5: हाँ, छोटी टीम है, आप रेडियो सुनते थे, हम बहुत सारे लोग हैं। सब एक बंदर आया, वो उठा के ले गया
4: रेडियो, उठा के ले गया
5: रेडियो, उठा के ले गया, सबके पीछे भाग रहे थे और भाग रहे। रेडियो
4: रेडियो बड़ी मुश्किल से छुड़ाया कि हमारा प्रोग्राम का साधन निकलता जा रहे हैं। आप आकाशवाणी देहरादून के कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
5: मैं सर संगीत और कभी कविता वार्ता सब सुनती रहती हूँ।
4: जी जी, आपको कौन सा प्रोग्राम अच्छा लगता है?
5: मेरे को सब अच्छे लगते हैं।
4: जी जी। अच्छा, तो आप अभी भी रेडियो सुनती हैं? अब तो रिटायरमेंट के बाद तो आपके पास टाइम ही टाइम है, आराम से रेडियो सुनती हैं या टीवी देखना ज्यादा पसंद करती हैं?
5: मुझे देखना ज्यादा पसंद है।
4: अच्छा, रेडियो का शौक पुराना है और यही आपको ज्यादा पसंद है, तो अच्छी बात है मैम। अपने रेडियो सुनने के शौक को ऐसे ही बरकरार रखिए। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: धन्यवाद।
3: हमारे साथ एक और महिला जुड़ी है, जानते हैं उनका नाम और पूछते हैं उनसे उनके अनुभव, उनके विचार। आपका नाम क्या है?
6: सबसे पहले तो आपको प्रणाम, और मेरा नाम है सावित्री चौधरी।
3: सावित्री जी, क्या करती हैं आप?
6: मैं HM कह सकते हो, हाउस होल्ड, होम मिनिस्टर।
3: अच्छा,
6: हाउस होल्ड करती हूँ मैं, एक गृहिणी।
3: बिल्कुल बिल्कुल, गृहिणी है। हम जानना चाहेंगे कि आप रेडियो सुनती हैं क्या?
6: रेडियो से तो बहुत ही पुराना संबंध रहा है, सुनते थे कभी जब बहुत ज्यादा था, लेकिन अब जैसे जैसे तरक्की होती गई, तकनीक बदलती गई, तो लोग थोड़ा सा दूर हटते गए उससे। एंटरटेन का साधन भी वही था, मैगजीन है, बहुत तो खैर बाद में आई, रेडियो पहले था, तो उसमें ऑडियो में ही स्टोरियां चलती थी, बच्चों की कहानियां, संगीत वगैरह, समाचार, खेल जगत का, भारत पाकिस्तान का या दूसरे देशों से जो भी क्रिकेट वगैरह होते थे उसकी भी जानकारी रेडियो के माध्यम से ही मिलती थी।
3: बिल्कुल,
6: तो
3: बिल्कुल।
6: जो जिस क्षेत्र में रुचि रखता था वो उसी पे अपना कान लगा के सुनता था।
3: बिल्कुल बिल्कुल सही आपने।
6: हम तो बच्चे थे तो हमें तो बस किताबी कहानियां ही पसंद आती थी, उसपे तो बस वही सुनते थे, और कभी कभी ऐसी आती थी कि पहेली नुमा कहानियां आती थी
3: जी,
6: तो वो भागों में सुनाते थे उन चीजों को, आज एक भाग अभी सुना दिया, अगला भाग अगले दिन देंगे, तो हमें बेसब्री
3: बिल्कुल बेसब्री से इंतजार अगले प्रसारण का, है ना?
6: हाँ, कि आगे क्या होने वाला है, वो सस्पेंस वाली चीज रहती थी ना कि आगे क्या होगा इसमें, तो उस समय पे ऐसा लगता था कि समय भी बहुत ज्यादा लंबा सा दिखता था जब किसी चीज का इंतजार करते थे तो।
0: बिल्कुल बिल्कुल
6: हाँ, वो बच्चे थे तो बच्चे वाली चीजें ही पसंद आती थी, कहानी नाटक कार्टून वाले सीन तो नहीं दिखते थे लेकिन ऑडियो में ही मतलब इस तरीके से आते थे ना।
0: सावित्री जी, रेडियो आपके जीवन में कितना जरूरी है?
6: उम्र के हिसाब से जो चीजें एंटरटेन के लिए अवेलेबल होती है तो उस समय पर उससे ज्यादा लगाव हो जाता है। बचपन में ज्यादा लगाव था, जब तक रेडियो चरम पर था तब तक तो खूब था, लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने तरक्की करी, रेडियो में टीवी आ गया, टीवी में वीडियो के जरिए दिखने लगे। हाँ, लेकिन अभी क्या हुआ था कि बीच में मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने क्या मन की बात रेडियो के माध्यम से ही मतलब लोगों तक दोबारा से उस चीज को जिंदा किया था, रेडियो को जो विलुप्त हो चुका था। मोबाइल और टीवी इन चीजों पे ही मतलब लोग निर्भर हो गए थे ना, तो रेडियो में क्या है बहुत कम लोग थे जो मतलब उससे जुड़े हुए थे। लेकिन उभार जब आया, जब मोदी जी मन की बात के जरिए लोगों तक पहुंचाने लगे,
0: बिल्कुल
6: जी, रेडियो के माध्यम से, तो सभी लोग मतलब उस समय पे चर्चा का विषय हुआ करता था कि ये बहुत अच्छा हुआ है। एक बार क्या हुआ था, हमारी दादी बताती हैं किस्सों को, तो हमारे ताऊ जी के जब शादी में उपहार में मिला था उनको,
0: उपहार में, वाह,
6: हाँ जी, तो आसपास के सभी गांव में मतलब सबसे पहली बार हमारे ही घर आया था।
0: अच्छा,
6: तो उसको मतलब ऐसा कौतूहल की तरह लेते थे सभी लोग, देखते थे ये क्या यंत्र है, इसमें आवाज आती है, गाने आते हैं। दादी बताती थी हमारे
0: समय क्रेज था ना।
6: हाँ हाँ हाँ, तो दादी बताती थी हमारी कि पापा तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते थे, खाना खाते समय, सोते समय, तो हर समय खेत पे जाते हैं तो रेडियो साथ में कंधे पर रख के कान के बाद धीमी आवाज में, अगर किसी को पता नहीं है रेडियो सुन रहा हूँ।
0: रेडियो के लिए इसे बोलते हैं सच्चा प्यार।
6: सच्चा प्यार वो इसलिए था ना, जैसे कहते ना कि छोटे बच्चे को उसका पसंदीदा खिलौना या कुछ ऐसा खिलौना कि उसे लगे कि भाई सब कुछ मिल गया हमें, बस और कुछ नहीं चाहिए, तो वो चीज थी उनके लिए उस समय पे हमारे पापा।
0: अच्छा,
6: के लिए।
0: हाँ हाँ जी बिल्कुल। सावित्री जी, आप आकाशवाणी देहरादून के कोई प्रोग्राम सुनती है?
6: आकाशवाणी देहरादून के तो मतलब एक दो प्रोग्राम लगे थे अचानक से, तो उसमें बाल मंडल का है, कृषि का है,
0: जी जी,
6: और गृहिणी महिलाओं के हिसाब से है, तो सुन लेते हैं कभी कभार रेडियो के माध्यम से ही, पहले समाचारों का, संगीतों का, कहानियों का, ये मतलब इसी के जरिए थोड़ा सा अटैचमेंट रहता था कि कुछ नया सुनने को मिलेगा। अभी भी है वो चीजें, और समय के हिसाब से उसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है, जैसे कि व्हाट्सएप फरमाइश भी उसमें ऐड हो गया, एक व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी फरमाइश बता सकते हैं और उसमें सुन सकते हैं अपनी पसंद के गाने हैं, रेडियो सखी पे भी अपनी पसंद के गाने सुनते हैं, और गृहणियों के लिए भी काफी अच्छा है, काफी जानकारियां मिलती हैं उससे। हाँ, इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, कुछ नया
0: मनोरंजन
6: मिलता है। हाँ, और सबसे बड़ी चीज है कभी कभी तो मोटिवेशनल चीजें भी मिल जाती है उसमें।
0: जी जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। सावित्री, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने अपने अनुभव हमसे साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
7: हमारे साथ एक मैम है, मैम पहले तो आप अपना नाम बताइए।
8: मेरा नाम शकुंतला है।
7: मैम आपकी एज क्या है, जान सकते हैं?
8: मेरी एज 72 वर्ष है।
7: 72 वर्ष है। आप रेडियो सुनती हैं?
8: हाँ जी, सुनती हूँ मैं रेडियो, मुझे अच्छा लगता है रेडियो सुनना।
7: अच्छा, तो यानी कि आपके घर में रेडियो जरूर होगा?
8: हाँ जी, बहुत पहले से सुनती हूँ, मेरे माँ पिताजी ये भी सुनते थे गाँव में, रेडियो का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है हमें। मेरी माँ को रेडियो सुनना बहुत पसंद था, और मेरी माँ सोते समय अपने सीने में रख लेती थी रेडियो को, और नींद की झपक आने पे माँ का रेडियो नीचे गिर जाता था, और रेडियो का प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह सुनती थी।
7: अच्छा, तो मतलब कि आपकी माता जी को भी शौक था? हाँ, आपको भी रेडियो सुनने का बहुत शौक है?
8: बहुत पहले से सुनते हैं।
7: अच्छा, तो मैम रेडियो पे आप कौन सा प्रोग्राम सुनती हैं?
8: मैं नमस्कार देहरादून सुनती हूँ, विविध भारती सुनती हूँ, और महिला जगत। अच्छा। कृषि जगत।
7: ओहो, सारी प्रोग्राम सुनती हैं तो।
8: और बाल मंडल में बच्चों के प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, बहुत सुंदर, बच्चों की तोतली सी आवाज बहुत अच्छी लगती है,
7: बच्चे अपनी प्रस्तुतियां देते हैं और वाकई में बहुत ही अच्छा लगता है उनका प्रोग्राम सुनना। अच्छा मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
9: एक और महिला हमारे साथ जुड़ी है, आइए जानते हैं उनका परिचय। अपना नाम बताइए।
10: मेरा नाम पूनम है।
9: अच्छा पूनम जी, आप क्या करती हैं?
10: जी मैम, मैं एक हाउसवाइफ हूँ।
9: हाउसवाइफ हैं, तो मैम घर के काम करने के बाद जो आपको समय मिलता है, तो खाली समय में आप क्या करती हैं?
10: मैम मैं खाली समय में जब सारे घर के सारे काम हो जाते हैं, उसके बाद में टीवी देखती हूँ।
9: टीवी, अच्छा।
10: और म्यूजिक सुनना पसंद करती हूँ।
9: जी जी।
10: और म्यूजिक सुनने के साथ कभी कभी मैं रेडियो भी सुनती हूँ।
9: जी, रेडियो सुनने का शौक है आपको?
10: जी, रेडियो सुनने का मुझे बहुत शौक है, क्योंकि बचपन से हमारे घर में रेडियो सुनाई देता था, पापा लगा के रखते थे।
9: जी, आपने कहा कि आप बचपन से रेडियो सुनती आ रही हैं, तो मैम आपके जीवन में रेडियो कितना इम्पोर्टेंट है?
10: रेडियो मेरे जीवन में इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि सुबह होते ही हमारे घर में रेडियो ऑन हो जाता था।
9: जी,
10: और जब हमारी आँख खुलती थी तो उसके म्यूजिक चलता रहता था और उसके साथ ही हमारा पूरा काम शुरू होता था स्टार्टिंग से।
9: जी जी।
10: और मेरी जो सिस्टर है
9: जी,
10: उसे तो रेडियो का इतना शौक था, अगर वो किचन में खाना भी बनाती थी तो रेडियो अपने पास रख लेती थी।
9: बिल्कुल, मतलब रेडियो के शौकीन ऐसे ही होते हैं, वो एक पल भी रेडियो को छोड़ नहीं सकते हैं, है ना?
10: जी मैम, वो तो बस जहाँ जाएंगी वो अपने साथ अपना रेडियो लेके चलती थी और वहीं रख देती थी और तब काम स्टार्ट करते थे।
9: जी जी। आप रेडियो में कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
10: रेडियो में मैं बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, जैसे कि रेडियो में एक प्रोग्राम आता है बच्चों का।
9: जी
10: जी। वो प्रोग्राम मेरा बेटा भी सुनना बहुत पसंद करता है।
9: जी।
10: उसमें बच्चे जो कविताएं सुनाते हैं तो मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है वो सुनना।
9: जी।
10: और उसमें एक समाचार, हमें तो पूरा खबर मिल जाती है आसपास क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, नहीं तो हमें वो मिल। और कुछ उसमें कृषि जगत से जुड़ी हुई भी, हमारी छोटा बहुत खेती करते हैं हम अपने घर में।
9: अच्छा, आप
10: तो खेती काफी जानकारी देते हैं। जी मैम, हमारे घर में अपना जैसे अपना गार्डनिंग होती है तो उस कृषि जगह से हमें भी बहुत नॉलेज मिल जाता है कब क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है।
9: और एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको जानकारियां भी मिलती है ना?
10: जी मैम, एंटरटेन भी, मूड जैसा भी हो म्यूजिक सुन के अच्छा हो जाता है।
9: बिल्कुल।
10: और महिलाओं से जुड़ा हुआ भी कार्यक्रम आता है उसमें, जो जो सुनना मुझे अच्छा लगता है, महिला जगत कार्यक्रम।
9: जी मैम, महिला जगत,
10: उसमें महिलाओं से जुड़ी हुई बातें
9: जी
10: ये सब प्रोग्राम में बताया जाता है तो मुझे वो सुनना बहुत अच्छा लगता है। और हम किस दिन कौन सा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस दिन क्या है
9: जी,
10: देश में क्या हो रहा है, वो सब की जानकारी भी हमें घर बैठे बैठे ही मिल जाती है।
9: बिल्कुल, आपने सही कहा कि रेडियो के जरिए हम घर बैठे बैठे ही पूरी जानकारी ले सकते हैं और अपना मनोरंजन भी कर सकते। तो पूनम जी, इसी तरह आप रेडियो सुनती रहिए, अपने शौक को बरकरार रखिए। आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद।
3: बहनों, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहनों, अभी आपने आकाशवाणी के 90 वर्ष के अवसर पर भेंट वार्ताओं पर आधारित कार्यक्रम मनोरंजन के लिए रेडियो की भूमिका सुनी। बहनों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, करते हैं स्वास्थ्य की बात। बहनों, स्वस्थ रहने के लिए सही खान पान और व्यायाम ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी खेलकूद भी है। मगर आजकल मोबाइल के ज़माने में बड़े हों या बच्चे, सभी मोबाइल पर ही गेम खेलना पसंद करते हैं। खेल कोई भी हो, उसमें हार और जीत तो चलती ही रहती है, मगर ज़रूरी होता है कि हर खेल को पूरी ईमानदारी के साथ खेला जाए। हमारे अंदर खेल भावना का होना ज़रूरी होता है, मतलब हर खेल के अलग अलग नियम होते हैं। हमें अपनी जीत का जश्न मनाना चाहिए, मगर उसी तरह अपनी हार को भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर हार में हमें एक नई जीत के लिए तैयार करने की शक्ति मिलती है। बहनों, खेल में हर कोई जीतने के लिए पूरा प्रयास करता है, मगर हमेशा जीत ही मिले ये ज़रूरी नहीं। अपनी जीत की खुशी मनाएं, मगर हारने वाली टीम के प्रयास की भी सराहना करनी चाहिए। दूसरी टीम के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए। बहनों, जीवन में जीतने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्रयास करना, खेल में प्रतिभाग करना। किसी भी खेल को जब मिलकर खेला जाता है तो इससे आपसी भाईचारे की भावना बढ़ती है, जो हमारे चरित्र के निर्माण में भी बेहद सहायक होती है। बहनों, खेल भावना हमें केवल खेलों में ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में हमें धैर्य और अनुशासन सिखाती है और हमें सहनशील बनाती है। तो बहनों, चलिए कार्यक्रम में लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक।

बहनों, अब वक्त है रसोई घर से। आज हम बनाना बताएंगे चीज़ी सॉफ्ट पार्सल। नोट कीजिए इसके लिए सामग्री। इसके लिए चाहिए 2 कप गेहूं का आटा, 1 गाजर, 1 शिमला मिर्च, 1 प्याज, लहसुन की 4-5 कलियां, 2-3 हरी मिर्च, स्वीट कॉर्न 1/4 कप, चीज़, काली मिर्च पाउडर, पिज़्ज़ा सीजनिंग, सफ़ेद तिल, चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी चीनी, धनिया पत्ती और नमक स्वाद अनुसार। बहनों, अब नोट कीजिए इसे बनाने की विधि। सबसे पहले गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, स्वीट कॉर्न या फिर आप अपनी मनपसंद की कोई भी सब्जी इसमें मिला सकती हैं। आप सभी सब्जियों को बारीक काट लें या इन्हें चॉप कर लीजिए। अब इसमें चीज़, काली मिर्च पाउडर, पिज़्ज़ा सीजनिंग डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अभी इस मिक्सचर में आपको नमक नहीं मिलाना है, क्योंकि नमक मिलाने से सब्जियां पानी छोड़ने लगती हैं। इससे सब्जियों का कुरकुरापन ख़त्म हो जाता है, तो इसे अलग रख दें। अब आटा गूंथ देते हैं। लीजिए 2 कप गेहूं का आटा, इसमें थोड़े सफ़ेद तिल मिलाएं, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक और थोड़ी चीनी और धनिया पत्ती डालकर रोटी के आटे जैसा नरम आटा गूंथ लें। अब आटे में थोड़ा सा तेल का हाथ लगाकर 10 मिनट तक इसे ढककर रख दें। अब एक आटे की लोई लीजिए और एक रोटी बेल लीजिए। रोटी ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। अब इस रोटी को आप चारों तरफ से काट लें, इसे चौकोर बना लें। अब इस चौकोर रोटी को बीच में से 2 हिस्सों में बराबर बांट लें, कट कर लें। अब एक हिस्से में आप सब्जियों की जो आपने स्टफिंग तैयार की है वो डालें और साइड में थोड़ा सा पानी के हाथ से इसे फोल्ड करके दबा लीजिए। आप इसे कांटे की मदद से भी दबा सकती हैं। अब इन पार्सल्स को आप अच्छे से तेल में फ्राई कर लें और तैयार है आपकी चीज़ी सॉफ्ट पार्सल। तो बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप हमें पत्रों के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया भेज सकती हैं। हमारा पता है कार्यक्रम महिला जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र देहरादून। हमारा पिन कोड है 248001। अब मुझे यानी सुमन वगासी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी बहने सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 1 बजने को है अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों के उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
3: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना इस मार्ग पर लोगों की भीड़भाड़ कम करने और समय की पाबंदी तथा परिचालन दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 1:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का निधन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया, कहा उनका निधन उत्तराखंड ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। प्रदेश सरकार बड़े स्तर पर नई पार्किंग योजनाओं पर कर रही काम, यातायात और जाम की समस्याओं से लोगों को राहत मिलेगी। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने नंदा देवी ईस्ट ट्रैकिंग अभियान के लिए 26 सदस्यीय छात्र छात्राओं के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए बाल संस्कार शिविर का आयोजन। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का आज निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे और देहरादून के एक निजी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। वे केंद्र सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री रहे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 2 कार्यकालों में सेवा दी। उनका राजनीतिक जीवन सादगी, पारदर्शिता और सुशासन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय खंडूड़ी ने भारतीय सेना में रहते हुए राष्ट्र सेवा, अनुशासन और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। सार्वजनिक जीवन में भी उन्होंने उत्तराखंड के विकास, सुशासन, पारदर्शिता और ईमानदार कार्यशैली की मजबूत पहचान बनाई। उन्होंने प्रदेश हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर विकास को नई दिशा प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय खंडूड़ी की सादगी, स्पष्टवादिता और कार्यकुशलता सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका निधन उत्तराखंड ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अन्य शहरों में बढ़ते यातायात और जाम की समस्या से लोगों को जल्द राहत मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार बड़े स्तर पर नई पार्किंग योजनाओं पर काम कर रही है ताकि शहरों की यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। आवास व राज्य संपत्ति विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि ऐसे कई स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां आधुनिक पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। इससे ज्यादा संख्या में वाहन व्यवस्थित तरीके से पार्क हो सकेंगे और सड़कों पर यातायात का दबाव कम होगा।
5: अर्बन एरियाज पे काफी तनाव भी बढ़ रहा है, उसी के दृष्टिगत जो है जो आवास विभाग हम लोगों ने 2021 में पार्किंग नीति विकसित की और पार्किंग नीति के तहत लगभग 200 से भी ज्यादा जगहों का चयन किया गया जहां पे पार्किंग व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकती है और इसमें से लगभग 55 जगहों पे पार्किंग की व्यवस्थाएं बनाई गई है। बहुत ही बड़ी प्रगति है।
4: राजधानी देहरादून में नगम निगम की ओर से नदी नालों को साफ और स्वच्छ बनाए रखने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही नदी नालों के किनारे कूड़ा कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि पिछले एक महीने में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें लोगों द्वारा नदी नालों में कूड़ा फेंका गया। नगर निगम की टीम ने ऐसे लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए नोटिस भी जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि कुछ शराब विक्रेताओं और कैंटीन संचालकों पर भी गंदगी फैलाने को लेकर कार्रवाई की गई है।
6: कतिपय लोगों के द्वारा जो है नालों में कूड़ा जो है फेंका जा रहा है, तो उन पर चालानी कार्रवाई क्षेत्र अनुसार की गई है। सुपरवाइजर्स और इंस्पेक्टर के माध्यम से भी चालानी कार्रवाई की गई है और हमारे द्वारा भी निरीक्षण में पाया गया जहां जहां, तो हम लोगों के द्वारा भी कार्रवाई की गई है और चालानी कार्रवाई करके नोटिस भी दिए गए। ऐसे में जो है कई जो वहां पे शराब विक्रेता थे, शराब की दुकानों की जो कैंटीने थी उन पे भी कार्रवाई की गई है और 50,000 का चालान तो हमारे लोगों के द्वारा किए गए।
7: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
4: ब्लॉक प्रमुख संगठन उत्तराखंड के प्रतिनिधियों ने देहरादून में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी को एक ज्ञापन सौंपते हुए अपनी विभिन्न मांगों और क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत कराया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों के त्वरित और प्रभावी समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार जन प्रतिनिधियों तथा क्षेत्रीय संगठनों के सुझावों को गंभीरता से लेकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास का मार्ग गांव और विकासखंडों से होकर गुजरता है तथा इस प्रक्रिया में ब्लॉक प्रमुखों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए स्वरोजगार को बढ़ावा देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने नंदा देवी ईस्ट ट्रैकिंग मिलम ग्लेशियर अभियान के लिए चयनित 26 सदस्य छात्र छात्राओं के दल को आज सुबह हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह विशेष ट्रैकिंग अभियान जिला योजना के अंतर्गत वित्त पोषित है, जिसका संचालन पर्यटन विभाग कर रहा है। अभियान के दौरान अनुभवी गाइड और प्रशिक्षकों की टीम भी दल के साथ रहेगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि इस प्रकार के अभियान युवाओं में साहस, अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना का विकास करते हैं। उन्होंने कहा कि

0: को पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से जोड़ने के उद्देश्य से इस प्रकार के ट्रैकिंग अभियानों का आयोजन किया जा रहा है।
1: इसमें हमारे जनपद के जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया है और स्टूडेंट्स काफी उत्साहित हैं। नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप तक जाएंगे, इसके साथ ही साथ मिलम ग्लेशियर का भी ट्रैक करेंगे और इनके साथ एक्सपर्ट भी जा रहे हैं, इनको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और इस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं हमारे इस डायरेक्शन में भी, इस दिशा में भी अपनी आजीविका के संबंध में सोच सकते हैं, तो उसी का एक प्रयास किया गया है जो कि एक अच्छा प्रयास है और इसको जिला योजना से भी घोषित किया गया है।
0: उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए महिला कल्याण विभाग और समाज सेवी संस्थाओं की ओर से बाल संस्कार शिविर आयोजित किया गया। जगपुरा आवास विकास स्थित बालिका विद्या मंदिर जूनियर हाईस्कूल में आयोजित शिविर में बच्चों को बाल अधिकार, पोक्सो एक्ट, गुड टच बैड टच, बाल विवाह, बाल श्रम और साइबर अपराध से जुड़ी अहम जानकारियां दी गई। इस अवसर पर जिला प्रोबेशन अधिकारी ब्योमा जैन ने छात्र छात्राओं को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 और पुलिस हेल्पलाइन 112 के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।
2: जैसे कि आजकल बच्चों के साथ बहुत क्राइम्स भी हो जाते हैं, तो गुड टच बैड टच के बारे में, पॉक्सो एक्ट के बारे में और भारत सरकार द्वारा उनके लिए एक निःशुल्क हेल्पलाइन चलाई गई है 1098, उसके बारे में अवगत कराया गया है। साथ ही उन्हें सेफ अडल्ट के बारे में बताया गया है कि यदि किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाता है दुर्भाग्यवश तो वो किसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारे हेल्पलाइन नंबर उन्हें बताए गए हैं, 1098, 112, साइबर हेल्पलाइन 1930, ताकि बच्चे जो हैं सेफ रहें। और ऑनलाइन फ्रॉड से भी किसी तरह मॉर्फिंग है और AI की तरह की यूज से जैसे बच्चों को कोई और क्राइम वो शिकार हो सकते हैं, तो कैसे उससे वो अपने आप को बचा सकते हैं, इसके संबंध में जो आज महिला कल्याण विभाग द्वारा जानकारी दी गई।
0: छात्रा सुनैना ने बताया कि उन्हें शिविर के माध्यम से बच्चों के अधिकार को लेकर काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली।
3: आज के कार्यक्रम से हमें ये सीख मिली कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ हमें नहीं जाना है, चाहे फिर वो हमें कितना भी लालच दे। और हमें गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया और ये भी बताया कि हमारे कोई ऐसा होना चाहिए जिसे हम अपनी सारी बात शेयर कर सके। और हमें एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया, अगर हमें कोई भी दिक्कत है तो हम उस पर कॉल कर सकते हैं, अगर हमारे पास फोन नहीं है तो हम शोर करके लोगों को बुला सकते हैं। तो हमें ऐसी बहुत सारी जानकारियां मिली जिसकी हमें जरूरत थी और ये हमें बताया और हम अपने घर में बताएंगे। धीरे धीरे सभी को पता चलना ये अच्छी चीज सीख है जो हमें मिली।
0: प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना है। विशेष रूप से हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का निधन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया, कहा उनका निधन उत्तराखंड ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। प्रदेश सरकार बड़े स्तर पर नई पार्किंग योजनाओं पर कर रही है काम। यातायात और जाम की समस्याओं से लोगों को राहत मिलेगी। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने नंदा देवी ईस्ट ट्रैकिंग अभियान के लिए 26 सदस्यीय छात्र छात्राओं के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए बाल संस्कार शिविर का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: .5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 1:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, फिल्म का नाम था कश्मीर की गली, गीत था एस एच बिहारी का, संगीत ओपी नैयर का था। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम है घर, गीतकार गुलजार और संगीतकार आर डी बर्मन।

ये स्वर था लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम था कटी पतंग, गीत था आनंद बख्शी का और संगीत आर डी बर्मन का था। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म 100.5 MHz पर। 1:30 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
3: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं, ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
3: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया, परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए मैं। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
3: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि यह कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
2: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
3: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहाँ वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
3: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहां साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
2: जी,
3: और जहां हर समय नमी पाई जाती है और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है
2: जी। एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहां वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षा वन तो ऐसे भी हैं जहां साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
3: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
2: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
3: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
2: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं
3: जी,
2: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
3: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है, जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
2: जी।
3: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
2: लेकिन श्रोताओं, जरूरी नहीं है कि सभी वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास ही हों, इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
3: तो श्रोताओं एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है
2: जी।
3: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं, वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए।
2: जी, यही कारण है अजीत जी कि चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है। उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है।
3: जी।
2: और इससे पूर्व भी आदि मानव जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
3: जी विमलेश जी, श्रोताओं, एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं।

0: यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते।
1: जी,
0: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं बिमलेश जी से।
1: जी श्रोताओ, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओ, वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो।
1: जी,
0: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
1: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन ले।
1: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
0: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
3: बादल, बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
2: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
3: सूरज, सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो पीला हूं।
3: कौवे, कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, नहीं, मैं तो काला हूं।
4: गुब्बारे, गुब्बारे,
3: क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो लाल हूं।
3: घास, घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
5: नहीं, मैं तो हरी हूं।
2: बेचारा जोजो।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
0: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोताओं, और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेतीबाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
4: नहीं लगी।
5: अरे नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको, रुको, रुको, रुको, रुको, रुको, रुको, रुको।
4: अरे तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
5: हा?
4: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
5: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो
4: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
6: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
4: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
5: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
1: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
2: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
1: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
2: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
7: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
8: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
7: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
9: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
7: आप तो काम करती है ना?
9: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
7: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
1: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
2: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगों के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
1: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
10: नहीं करने देंगे।
11: बिल्कुल नहीं करने देंगे।
2: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
1: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
2: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
4: गौरमा, गौरमा,
12: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
4: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
12: कौन लोग आ रहे हैं?

0: अरे कहाँ आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
1: गौरमा,
0: हाँ?
1: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
0: क्या?
1: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके, उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
0: अच्छा, तो ये बात है। बहनों, चलो हम सब तैयार हो जाएं।
2: बिल्कुल,
0: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
3: हाँ, हम सब तैयार हैं।
4: किसी भी हाल में जंगल कटने
2: नहीं कटने देंगे।
1: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
5: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
0: ये है जंगल के उपकार,
6: मिट्टी पानी और बयान,
0: मिट्टी पानी और बयान।
7: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
2: अरे
8: क्या
2: कर रहे
8: हो? भूख के ताक रहे हो? बजाओ शुरू।
2: अरे भाई कौन है? रुको, इस तरफ चल जाएंगे पेड़ से।
0: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
8: आगे बढ़ो।
2: अरे कहां से?
8: मिनट की बातों में बताओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए।
0: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
1: नहीं लगाने देंगे।
0: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
6: हाँ,
2: चिपक जाएंगे।
8: ठीक है, तो वहां चलो। अरे उन पेड़ों को काटो, चलो।
5: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
7: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
8: ठीक है, तो वहां चलो। अरे उन पेड़ों को काटो, चलो।
5: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
7: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
5: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
7: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
0: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
5: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
9: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार। उमंग।

0: तकरीबन साझा किया है।
1: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
2: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद है। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
4: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा।

0: सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
2: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इंफॉर्मेशन कंट्रोल।
3: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
2: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
1: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91 रुपए 58 पैसे है। मुंबई में पेट्रोल 107 रुपए 59 पैसे और डीजल 94 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109 रुपए 70 पैसे और डीजल की 96 रुपए 7 पैसे दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 49 पैसे और डीजल की 96 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @SIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
4: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
5: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक के वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 2:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों, जय हिंद। मातृभूमि के वीर सपूत देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कैसी भी हो परिस्थितियां, पीछे नहीं हटते बल्कि आगे बढ़कर डटकर मुकाबला करते हैं और मातृभूमि के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं सेवा के लिए। ऐसे ही हमारे सैनिक थे मेजर विक्रांत शास्त्री। इनके बारे में और भी चर्चा करेंगे, सुनवाते हैं पहले ये गीत।

मेजर विक्रांत शास्त्री का जन्म आज ही के दिन 19 मई 1963 को एक सैन्य परिवार में हुआ था। ये सेना चिकित्सा कोर के अधिकारी कैप्टन सुदर्शन शास्त्री के पुत्र रहे हैं। इन्होंने देश के विभिन्न स्थानों से शिक्षा प्राप्त की और साथ में इन्होंने दिल्ली के आर्मी पब्लिक स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और साथ में संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की और अपने देश सेवा का सपना पूरा किया। और दिसंबर 1985 में ये 11 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट में इन्हें कमीशन मिला और एक सेना के अधिकारी बनी।

0: जरूर है, नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है माँ, मुझे नाचना जरूर है माँ, मेरी देखेगी नाचना जरूर है, जरूर है, जरूर है।
1: रंग केसर शूर

सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। सैनिक साथियों, विभिन्न ऑपरेशनल क्षेत्रों में कुछ वर्षों तक अपनी मूल इकाई में सेवा कार्य करने के बाद मेजर विक्रांत शास्त्री को बाद में आतंकवाद विरोधी अभियानों में लगी 32 RR बटालियन में सेवा देने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया और वर्ष 1995 की मेजर विक्रांत शास्त्री को यूनिट पूर्वोत्तर में तैनात थी और वहां पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त नाना विद्रोहियों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अभियानों में कार्य रही थी और वहां इनको इसके नेतृत्व का कार्य सौंपा गया। चर्चा जारी, आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत।

0: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: सैनिक साथियों, काचर हिल ऑपरेशन के दौरान 3 मई 1995 को मेजर विक्रांत अपने सैनिकों के साथ विद्रोह के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व कर रही थी। तभी विद्रोहियों ने उन पर हमला कर दिया। विद्रोहियों की संख्या कम थी और यही कारण रहा कि इन्होंने पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई की और ऐसे में मेजर विक्रांत गोलियों की बौछार से घायल हो गए और बाद में इन्होंने दम तोड़ दिया और ये देश के लिए शहीद हो गए। मेजर विक्रांत शास्त्री सेना के एक जांबाज वीर सैनिक और उत्कृष्ट अधिकारी थे जिन्होंने राष्ट्र की सेवा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। मातृभूमि के ऐसे वीर सपूत को हम सलाम करते हैं।

सैनिक साथियों, ऐसे वीर सपूतों को हम कभी नहीं भूल सकते जिन्होंने देश के लिए अपनी प्राण न्यौछावर कर दिए। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का यहीं पर संपन्न करने की हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आपको याद दिला दें, शाम 4:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा। एक कलाकार, आज के कलाकार होंगे अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी। शाम 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा पंडित भीमसेन जोशी का ख्याल गायन। दोपहर 3:02 पर आप सुन सकते हैं गाने नए तराने। ये थी कार्यक्रम संबंधी संक्षिप्त जानकारी। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 3 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप आशुतोष नियाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे और देहरादून के एक निजी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। श्री खंडूड़ी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री थे और उत्तराखंड में 2 बार मुख्यमंत्री रहे। उनका राजनीतिक जीवन सादगी, पारदर्शिता और सुशासन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई नेताओं ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री खंडूड़ी का निधन उत्तराखंड ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के निर्देशों के बाद देहरादून के आपदा प्रभावित कालीगढ़ क्षेत्र में मलबे के चैनलाइजेशन का कार्य शुरू हो गया है। जिला खान विभाग द्वारा मशीनों के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने नंदा देवी ईज ट्रैकिंग अभियान के लिए 26 सदस्यीय छात्र छात्राओं के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि युवाओं को पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से जोड़ने के उद्देश्य से इस प्रकार के ट्रैकिंग अभियानों का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी देहरादून में नगर निगम की ओर से नदी नालों को साफ और स्वच्छ बनाए रखने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही नदी नालों के किनारे कूड़ा कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त चालानी कार्रवाई भी की जा रही है और प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना है। विशेष रूप से हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहने का अनुमान है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 3:02 हुए, आइए सुनते हैं गाने नए तराने।

अंकित तिवारी की आवाज़ में गीत था, फिल्म का नाम था आशिकी टू। गीत लिखा था सुदीप नाथ ने और संगीत अंकित तिवारी का था। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, अरिजीत सिंह की आवाज़ में, फिल्म का नाम है छपाक।

उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

ग्लेन जोन की आवाज़ में गीत था, फिल्म का नाम था वो लम्हे। बोल थे सईद कादरी की और संगीत प्रीतम का था। श्रोता सुन रहे गाने नए तराने आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं अमाल मलिक और केके की आवाज़ में गीत फिल्म का नाम एयरलिफ्ट।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में गीत था, फिल्म का नाम था विलेन। गीत को संगीतबद्ध किया था अंकित तिवारी ने। समय 3:31 और 8 सेकंड हुए हैं। श्रोताओं, गाने नए तराने प्रसारित किए जा रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम तुमसे अच्छा कौन है।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

आप सुन रहे थे हरिहरन और साथियों की आवाज में गीत, फिल्म का नाम था यादें। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और राघव की, फिल्म का नाम है तेरे नाम। शब्द हैं जलेस शेरवानी की और संगीत साजिद वाजिद का है।

एम एम करीम के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे निदा फासले का लिखा गीत। आवाज़ें थी लकी अली और सुनीति चौहान की, फिल्म का नाम था सुर। आइए अब आपको सुनवाते हैं गाने नए तराने का ये अंतिम गीत, रेखा राव की आवाज़ में। फिल्म का नाम है चितकबरी, शब्द हैं राजेश कुमार के और संगीत अक्षय

0: अभी आप सुन रही थी कहानी नए तराने, इसका प्रसारण आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से किया गया। शाम के 4 बजे हैं, आइए सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप आशुतोष उनियाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का निधन। वे लंबे समय से बीमार थे और देहरादून के एक निजी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री रहते हुए उन्होंने देश में सड़क विकास की नई दिशा तय की। उनका राजनीतिक जीवन सादगी, पारदर्शिता और सुशासन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित भीमसेन जोशी का गाया राग शंकरा। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। शाम के 4:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम एक कलाकार।

कार्यक्रम एक कलाकार में आप सभी का स्वागत है। श्रोतो, हमारे आज के कलाकार हैं हिंदी फिल्मों की सुप्रसिद्ध अभिनेता जिन्होंने बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड की फिल्मों में भी अभिनय किया है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, हमारे आज के कलाकार हैं अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इनका जन्म आज ही के दिन 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के गांव बोधाना में हुआ था। जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं देते हुए सुनवाते हैं इनकी फिल्म से कार्यक्रम का ये पहला गीत।

श्रोता सुन रहे कार्यक्रम में एक कलाकार, आज के कलाकार हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। श्रोता, इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से रसायन विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और इसके बाद इन्होंने रसायन विज्ञान के रूप में डिग्री प्राप्त करने के बाद, लेकिन इन्हें हमेशा नाटक में हमेशा से रुचि रही है और एक बार ये रहा कि नाटक देखने के बाद अभिनय की इनके मन में इतनी रुचि जागी कि इन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रवेश ले लिया और इसी के चलते ये देहरादून में भी नाटक में भाग लिया करते थे। वर्ष 1999 में राष्ट्रीय नाट्य अकादमी विद्यालय में नई दिल्ली से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद वे मुंबई चले गए। इसके बाद की चर्चा होगी इस गीत के बाद।

श्रोता सुन रहे कार्यक्रम में कलाकार, आज के कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जी हाँ श्रोताओं, नाट्य विद्यालय नई दिल्ली से शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये मुंबई चले गए और जल्द ही फिल्म सरफरोश में एक छोटी सी भूमिका में नजर आए और इसके बाद ये रामगोपाल वर्मा की फिल्म जो 1999 में आई थी फिल्म शूल, 2000 की फिल्म जंगल और 2003 की फिल्म मुन्ना भाई MBBS में दिखाई दिए। साथ ही इन्होंने कई टेलीविज़न धारावाहिकों में भी कार्य किया है। वर्ष 2004 और 2007 के बीच इन्होंने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं निभाई। वर्ष 2007 में फिल्म ब्लैक फ्राइडे में गोल्डन लेपर्ड के लिए नामांकित किया था। साथ ही इसी वर्ष फिल्म न्यूयॉर्क में ये दिखाई दिए और वर्ष 2010 में इन्होंने पीपली लाइव फिल्म में अपनी भूमिका निभाई। आइए आपको सुनवाते हैं पीपली लाइव का ये कार्यक्रम का अगला गीत।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: श्रोताओं, इसके बाद वर्ष 2012 में फिल्म कहानी में इन्होंने खुफिया अधिकारी की भूमिका निभाई और इसके बाद अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वाजीपुर में ये दिखाई दी और इनकी भूमिका को खूब सराहना मिली। साथ ही वर्ष 2013 में हॉरर फिल्म आत्मा में इन्होंने अभिनय किया और इसके बाद वर्ष 2012 में फिल्म तलाश में नजर आई। वर्ष 2013 में फिल्म लंच बॉक्स के लिए इन्होंने जो अभिनय किया था उसके लिए इन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर का पुरस्कार भी प्राप्त किया था। तो वर्ष 2014 में फिल्म किक में ये शिव गजारा की भूमिका में नजर आई थी। वर्ष 2015 में फिल्म बजरंगी भाईजान और मांझी फिल्म जैसी फिल्मों में इन्होंने जो अभिनय किया था उसको खूब सराहना मिली। आइए आपको सुनवाते हैं इनकी फिल्म से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: अब हमारे श्रोता जहाँ, हम भी वहाँ। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: श्रोता अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वर्ष 2016 में फिल्म रमन राघव में अभिनय किया और इस अभिनय के लिए इन्हें स्पेन में फेंसिंग बलंगा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया। वर्ष 2018 में उर्दू लेखक सादत हसन मिंटो की फिल्म में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त किया। साथ ही वर्ष 2022 में इन्होंने हीरोपंती, 2025 में अफवाह जैसी फिल्मों में ये नजर आए और लगातार ये फिल्मों में सक्रिय हैं। और वर्ष 2026 में कई ऐसी फिल्में हैं जो इनके रिलीज होने को तैयार हैं। आज जन्मदिन के अवसर पर इन्हें बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं, साथ ही उम्मीद करते हैं कि और ये सभी हमारे श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए बहुत ही बेहतरीन फिल्में लेकर आएंगे। एक बार फिर से बधाइयां देते हुए जन्म की सुनवाते हैं इनकी फिल्म से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम एक कलाकार। आज के कलाकार थे अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी। FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजने को हैं। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टरन फ्रॉस्टडॉटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री श्री पेटरी ओरपो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वैश्विक स्थिति और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं को भारत के लिए व्यापारिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने, तेजी से सुधार करने, अधिक लचीलापन विकसित करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज 6 लेन वाले एक्सिस नियंत्रित DND सोहना राजमार्ग संख्या 148NA का निरीक्षण किया। श्री गडकरी ने कहा कि दिल्ली NCR क्षेत्र में 87,000 करोड़ रुपए की लागत वाली लगभग 1,850 किलोमीटर की सड़क परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि 225 किलोमीटर लंबी 13,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन है। श्री गडकरी ने कहा कि एक्सप्रेसवे, रिंग रोड, सुरंगों और एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से सरकार दिल्ली NCR के पूरे परिवहन नेटवर्क का आधुनिकीकरण कर रही है और इसे भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार कर रही है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन योजना के लिए 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये परियोजना हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर की क्षमता को बढ़ाएगा। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए भी 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया गया है। साथ ही जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित बुरी तरह बीमार या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा की गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और ऋषभ पंत की जगह KL राहुल को उप कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उप कप्तान होंगे। विराट कोहली, केएल राहुल और ईशान किशन भी टीम में शामिल है। जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 100.5 MHz पर आप हमें आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में साय के 5:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के खास कार्यक्रमों से संबंधित सूचनाएं कार्यक्रम विवरण में।

श्रोताओ, अब से बस कुछ ही मिनटों बाद यानी सायं के 5:10 पर हमारे युवा साथी होंगे हमारे साथ इंफोटेनमेंट पर आधारित अपने मनपसंद दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। सायं के 5:45 का समय रहेगा पर्वतीय अंचलों के कार्यक्रम ग्राम जगत के लिए।

श्रोता हमारे किसान साथी सुनेंगे भेंट वार्ता श्री नरेश सिंह रावत से। वार्ताकार होंगे विकास चमोली और वार्ता का विषय होगा पर्यावरण संरक्षण साझी जिम्मेदारी। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत होगा साय के 7:30 पर और रात्रि को 8:30 पर।

श्रोताओं, साय के 7:50 पर होगा विशेष कार्यक्रम आरएनयू देहरादून की प्रस्तुति सप्ताह सार। रात्रि 8 बजे होगी संस्कृत वार्ता। वार्ताकार हैं डॉक्टर राम विनय सिंह। विषय है महाकवि सुमित्रानंदन पंतस्य व्यक्तित्वम कृतित्व चा।

विविध कलाकारों से आप सुनेंगे श्रोताओं गजल कार्यक्रम सुगम संगीत में। समय रात्रि के 8:15। रात्रि के 9:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनना ना भूलिएगा श्रोताओं कार्यक्रम स्पॉटलाइट। रात्रि के 9:30 पर साहित्यिकी में काव्य पाठ करेंगी नगमा इरफान। डॉक्टर अम्बरीश चमोली प्रस्तुत करेंगे वार्ता, विषय है हजारी प्रसाद के साहित्य में मानवता का संगम, और श्रीमती अर्चना त्यागी सुनाएंगी कहानी। श्रोताओ रात्रि के 10:00 आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जाएगा खेल दर्पण, और अपने मनपसंद फरमाइशी फिल्मी गीत आप सुनेंगे रात्रि के 10:30 पर कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। इसी के साथ आज के कार्यक्रमों से संबंधित सूचनाएं खत्म हुई। एक नजर डालते हैं कल के खास कार्यक्रमों पर।

मोहन सिंह बोरा और साथी प्रस्तुत करेंगे कुमाऊनी लोकगीत कार्यक्रम शैल संगीत में प्रातः 7:30 पर। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा श्रोताओं कल सवेरे 8:30 पर और सवेरे 10:35 पर लोक संगीत में आप सुनेंगे गढ़वाली लोकगीत रक्षा बौड़ाई से। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त होता है। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं हमारे स्टूडियो की घड़ी में साय के 5:10 हुए हैं और ये समय होता है हमारे युवा साथियों के मनपसंद दैनिक कार्यक्रम का, तो सुनते हैं युववाणी।

मंगलवार की इस सुहानी शाम में उम्मीदों की हल्की सी रोशनी है, नई सोच, नए सपनों और कुछ बेहतर करने की एक खूबसूरत कोशिश है। दिन चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना रहा हो, ये शाम खुद से मिलने, मुस्कुराने और आगे बढ़ने का एक छोटा सा मौका लेकर आई है। हेलो, हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त और आज के कार्यक्रम की होस्ट शिवानी कंडवाल। आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी ये जो शाम है वो अच्छे से बीत रही होगी। और इसी शाम को आइए और खूबसूरत बनाते हैं इस प्यारे से ट्रैक के साथ, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई से।

दोस्तों, आज के दौर में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों के हाथ में दिखाई देती है तो वो है स्मार्टफोन। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक स्मार्टफोन किसी की लाइफ बदल सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो एक छोटा सा फ़ोन आपकी सोच, आपकी स्किल और आपका करियर तक बदल सकता है। पहले दोस्तों, मोबाइल सिर्फ कॉल्स या मैसेजेस तक सीमित था, लेकिन आज यही फ़ोन एक छोटा सा स्कूल, ऑफिस और बिजनेस तक बन चुका है। गांव हो या शहर, आज युवा अपने स्मार्टफोन से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, नई भाषाएं सीख रहे हैं, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कोडिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसी स्किल्स भी सीख रहे हैं। सोचिए, जिस फ़ोन से हम घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, उसी फ़ोन से कई सोशल मीडिया पर अपना चैनल शुरू कर रहे हैं। कोई अपना छोटा बिजनेस चला रहा है, तो कोई फ्रीलांसिंग करके घर बैठे कमाई कर रहा है। और आज तो स्मार्टफोन से इतने सारे करियर ऑप्शंस भी खुल रहे हैं हम युवाओं के लिए, जैसे कि कंटेंट क्रिएटर, वीडियो एडिटर, सोशल मीडिया मैनेजर, या दोस्तों ग्राफिक डिज़ाइनर, ऐप डेवलपर, डिजिटल मार्केटर और फ्रीलांसर राइटर जैसे काम अब सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रहे। लेकिन हाँ दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात है बैलेंस और सही दिशा की। अगर स्मार्टफोन का यूज़ हम सिर्फ टाइम पास के लिए करेंगे तो समय बर्बाद ही होगा ऑब्वियसली। अगर आप उसी फ़ोन को सीखने और ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यही फ़ोन दोस्तों हम सबकी, आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो दोस्तों, स्मार्टफोन खुद लाइफ नहीं बदलता, लाइफ बदलती है हमारी सोच, हमारा इस्तेमाल और सीखने की इच्छा। क्योंकि आज की दुनिया में स्मार्टफोन से ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट यूज़र बनना, है ना? तो आइए इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा ट्रैक, सलीम मर्चेंट और नीति मोहन की आवाज़ में, फ्रॉम द मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, जब बात भविष्य की आती है तो सिर्फ सपने देखना काफी नहीं होता, उन्हें सुरक्षित रखना भी बहुत जरूरी होता है। आज दुनिया क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और नेचुरल रिसोर्सेज की कमी जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, और ऐसे समय में भारत ने दुनिया को एक पॉजिटिव सोच दी, मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की। दोस्तों, ये एक ऐसा जन आंदोलन है जो हमें सिखाता है कि छोटी छोटी जिम्मेदार आदतें भी पर्यावरण को बचाने में बड़ा बदलाव ला सकती हैं, और इसका मकसद है लोगों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे इन्वायरमेंट फ्रेंडली बदलाव अपनाने के लिए प्रेरित करना, ताकि क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी चुनौतियों का मिलकर हम सब सामना कर सकें। और दोस्तों, इस आइडिया को सबसे पहले प्रधानमंत्री ने साल 2021 में ग्लासगो में हुए COP26 सम्मेलन में रखा था, और इसके बाद अक्टूबर 2022 में यूनाइटेड नेशंस के महासचिव की मौजूदगी में इसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया। दोस्तों, मिशन लाइफ का जो मेन पर्पस है वो है माइंडलेस कंजप्शन, यानी जो हम बिना सोचे समझे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, उस आदत को चेंज करके माइंडफुल यूटिलाइजेशन यानी ज़रूरत के हिसाब से समझदार

से रिसोर्सेज का हमें यूज़ करना, और साथ ही 2022 से 2027 के बीच कम से कम 1 अरब भारतीयों और दुनिया भर के लोगों को इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से जोड़ना इसका मेन मोटिव है। और इसके तहत 75 आसान और प्रैक्टिकल उपाय बताए गए हैं, जिसमें 7 कैटेगरीज में जिन्हें बांटा गया है। और इसमें दोस्तों सबसे पहला तो है ऊर्जा बचाना, यानी एनर्जी सेव करनी है। जितनी ज़रूरत हो हमें उतनी ही लाइट, फ़ैन और एसी इस्तेमाल करना है, और बिजली बचाने के लिए एलईडी बल्ब्स हमें अपनाने चाहिए। साथ ही दोस्तों पानी वेस्ट ना करें, नल अच्छे से बंद करें और रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाएं, क्योंकि पानी बचाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जब हम मार्केट जाते हैं तो हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जगह क्लॉथ या जूट बैग इस्तेमाल करने चाहिए। और इसी के साथ हेल्दी और नेचर फ्रेंडली फूड हमें चूज़ करना चाहिए। कभी कभी हम फ्रेंड्स के साथ बैठ जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्यों फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे हैं। बस हमें टाइम पास करना होता है, इसलिए कभी कभार हम फास्ट फूड कंज्यूम कर लेते हैं। इसीलिए हमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लोकल, सीजनल या फिर ऑर्गेनिक फूड को हमें अपनी डाइट में शामिल करना होता है, ठीक है। इससे हेल्थ भी अच्छी रहती है दोस्तों, और इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा होता है। इसके अलावा रिड्यूज़, रीयूज़ और रिसाइकिल की हैबिट हम सभी को डालनी चाहिए। गीला और सूखा कचरा अलग करना चाहिए, और जितना हो सके चीज़ों को आप रीयूज़ या रिसाइकिल करें। इसी के साथ दोस्तों कई बार मोबाइल, लैपटॉप या हमारे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो हम बदलने की बजाय हम उनको रिपेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ई वेस्ट का सही डिस्पोजल भी होगा, और ज़्यादा समय तक हम रिपेयर करके चीज़ों को इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो कम से कम होगा। इसके अलावा दोस्तों फिट रहना और इन्वायरमेंट भी बचाना बेहद ज़रूरी है। छोटी दूरी अगर हम तय कर रहे हैं तो हम पैदल चल सकते हैं या साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि पॉल्यूशन भी कम होगा और हेल्थ भी हमारी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों जो छोटी छोटी आदतें हैं इनमें बदलाव लाकर हम सभी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में अपना एक बहुत ही बड़ा योगदान दे सकते हैं। लेकिन अगर हम आज से ये छोटी छोटी आदत जो है उसको अपनाएंगे नहीं, तो आने वाले समय में जल संकट, प्रदूषण और इकोनॉमी को भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अनुसार दोस्तों अगर 100 करोड़ लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव जैसे बिजली बचाना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना और प्लास्टिक कम शुरू करना ये सब करेंगे, तो ग्लोबल कार्बन एमिशंस में बड़ी कमी आ जाएगी। और इसके अलावा ये सब ज़रूरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और हमें प्रो प्लैनेट पीपल बनना चाहिए, और आज से ही पर्यावरण के लिए ज़िम्मेदार आदतें दोस्तों हमें अपनानी चाहिए। तो दोस्तों मिशन लाइफ हमें यही मैसेज देता है कि इन्वायरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सरकार या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की नहीं है, बल्कि हम सब की है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबल हैबिट्स अपनाएंगे तो आने वाली जनरेशन को एक साफ, सुरक्षित और बेहतर हम फ्यूचर दे पाएंगे। तो याद रखिए, जब लाइफस्टाइल बदलती है तभी इन्वायरमेंट बदलता है। तो आइए आज से ही नेचर के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का हम संकल्प लें और मिशन लाइफ का हिस्सा बने। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं ये खूबसूरत ट्रैक आयुष्मान खुराना की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी विकी डोनर।

दोस्तों, कभी एग्ज़ाम से पहले हाथ कांपने लगते हैं, कभी इंटरव्यू से पहले तेज़ दिल की जो धड़कन होती है वो बढ़ने लगती है, या स्टेज पर जाने से पहले दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तो इसे ही परफॉर्मेंस एनजाइटी कहते हैं। परफॉर्मेंस एनजाइटी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे कॉन्फिडेंस, परफॉर्मेंस और मेंटल पीस पर असर डालती है। जब हम ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं तो सिंपल काम भी मुश्किल लगने लगता है, दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है और हम अपनी असली कैपेबिलिटी नहीं दिखा पाते। और आज के यूथ में ये बहुत ही कॉमन हो गया है, क्योंकि हर जगह इतना कंपटीशन और ख़ुद को प्रूव करने का प्रेशर है, स्टडीज़, करियर, सोशल मीडिया, जॉब्स, हर जगह। लेकिन गुड थिंग ये है कि इसे कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ना होगा। हर बार परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर बार ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी प्रेपरेशन होगी उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चाहे प्रेजेंटेशन हो, ऑडिशन हो या इंटरव्यू। प्रैक्टिस एंजाइटी को कम करती है। और आज यूथ के लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी हैं, जैसे कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, रेडियो, पॉडकास्टिंग, कोडिंग, फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, बहुत कुछ। ज़रूरी ये नहीं कि लोग क्या चूज़ कर रहे हैं, बल्कि दोस्तों ज़रूरी ये है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। और दोस्तों, एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो प्रिपरेशन पर भरोसा रखें। खुद की तुलना दूसरों से कम करें, छोटी शुरुआत करें। अगर स्टेज फियर या प्रेजेंटेशन का डर है तो पहले दोस्तों या फैमिली के सामने प्रैक्टिस करें, शीशे के आगे प्रैक्टिस करें, उससे बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और इसके अलावा दोस्तों, नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें, काम रहना सीखें। परफॉर्मेंस से पहले 4-5 गहरी सांस लें, इससे बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स होते हैं। परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस ज़रूरी है। हर बार दोस्तों परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि गलतियाँ भी लर्निंग प्रोसेस का ही हिस्सा है। और दोस्तों, सोशल मीडिया प्रेशर से तो बहुत ज़्यादा दूरी बनाना ही अच्छा है। हर किसी की हाईलाइट लाइव देखकर खुद को हमें जज नहीं करना चाहिए, इससे एंजाइटी बढ़ती है। इसीलिए अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें, साथ ही साथ हेल्दी रूटीन बनाए रखें।

अच्छी नींद लें, हल्की एक्सरसाइज करें और बैलेंस्ड रूटीन मेंटल कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करती है। और दोस्तों इसी से मुझे ना एक कहानी भी याद आती है, लेकिन कहानी हम सुनेंगे इस म्यूजिकल ट्रैक के बाद। आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म तमाशा से, जिसे आवाज़ दी अरिजीत सिंह और अलका याग्निक ने।

तो दोस्तों, म्यूज़िकल ट्रैक से पहले मैं बात कर रही थी एक कहानी की। तो एक छोटा सा शहर था जहाँ आरव नाम का लड़का रहता था। उसे गाना बहुत पसंद था, लेकिन जैसे ही स्टेज पर जाने का मौका आता, उसके हाथ कांपने लगते, आवाज़ रुक जाती और मन में बस एक ही डर रहता कि अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो। और फिर एक दिन उसके म्यूज़िक टीचर ने उससे कहा कि परफॉर्मेंस में सबसे बड़ी गलती परफेक्ट बनने की कोशिश।

है दोस्तों, लोग अपनी आपकी जो परफेक्शन है वो नहीं देखते, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस और सच्चाई देखते हैं। और फिर क्या था, अगले ही दिन जब कार्यक्रम था आरफ का, तो उसने खुद से कहा कि मैं यहाँ लोगों को इम्प्रेस करने नहीं, खुद को एक्सप्रेस करने आया हूँ। और फिर उसने गाना शुरू किया। शुरुआत थोड़ी धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे उसका डर कम होता गया और कार्यक्रम खत्म होने पर सबसे ज्यादा तालियां भी उसी के लिए बजी। और उस दिन आरव ने समझा कि परफॉर्मेंस एंजाइटी को खत्म नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस से कंट्रोल किया जाता है। डर होना गलत नहीं, और डर के बावजूद आगे बढ़ना ही असली हिम्मत है। और इसी के साथ दोस्तों, हम भी आगे बढ़ते हैं, फिल्म धुरंधर से सुनते हैं हमारे इस कार्यक्रम का अंतिम ट्रैक अरिजीत सिंह और अरमान खान की आवाज़ में।

तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें खत द्वारा ज़रूर बताइएगा। हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी द्वारा, निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल। और दोस्तों, हमारा पिन कोड है 248001। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है youthddn@gmail.com। और साथ ही आप हमें अपने विचार व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088-000-731। अपना ख्याल रखें दोस्तों, और आज के लिए मुझे यानी शिवानी कंडवाल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में साय के 5:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगत कार्यक्रम का सभी सुणदारों ते मी बीरेंद्र दत्त गेरुला की छोर बेटी नमस्कार सेवा संली पेलाग। उम्मीद छे हमारा सभी श्रोता स्वस्थ होला, राजी खुशी होला और अपनी बोली भाषा का एक कार्यक्रम ग्राम जगत ते सुनना होला। भैबंदो, भीषण गर्मी पड़नी छ, ये गर्मी से निजात पाउन की खातिर देश का विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्रों को रुख करना छन। कुछ लोग चार धाम यात्रा पर जाना छन तो कुछ यख का पर्यटन स्थलों को भ्रमण करने ते पहुँचना छन। मसूरी, नैनीताल, ऋषिकेश, रानीखेत, औली, कौसानी, भीमताल आदि प्रमुख पर्यटन स्थलों में बड़ी संख्या में पर्यटक उमड़ना छन, जैसे कि यो स्थलों पर कई बार घंटों जाम भी लग जांदो। हमारो पर्यटकों से अनुरोध छ कि यख और भी कई खूबसूरत पर्यटन स्थल छन, यो स्थलों को भी भ्रमण कर सकदन, जैसे कि कुछ सीमित स्थलों पर ही दबाव न बनो। जनु की यदि हम देहरादून जिला की ही बात करूं तो यख डाक पत्थर, कटा पत्थर, चक्राता, टाइगर फॉल, कालसी, आसन बैराज, सहस्रधारा, मालदेवता, लच्छीवाला आदि कई सुंदर पर्यटन स्थल छन। यों का अलावा उत्तरकाशी जिला में हरसिल, हरकी, दून, दयारा बुग्याल, टिहरी जिला में काणाताल, धनोल्टी, बूढ़ा केदार, घुत्तू, पौड़ी जिला में खिरसु, कणवाश्रम, दूधातोली, ताराकुंड, लैंसडाउन, चमोली जिला में वसुधारा जलप्रपात, रूपकुंड, माणा और रुद्रप्रयाग जिला में चोपता जना कई खूबसूरत और दर्शनीय स्थल छन। तो हमारे पर्यटकों से यही अनुरोध छ कि यो स्थलों पर भी वो भ्रमण पर जा सकदन और प्रकृति को आनंद ले सकदन। भाई बहनों, अब आपते आज का कार्यक्रम की रूपरेखा मैं बता देनो। आज हम आपते सुनोला लोक कवि गोष्ठी जयमा प्रतिभा करना छन श्री बीरेंद्र पंवार, श्री कलम सिंह लिंगवाल, श्री धनेश कोठारी और श्रीमती आशा पैनुली। ये का अलावा आप सुनला गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी गीत संगीत और कुछ रैबार। तो कार्यक्रम की शुरुआत करदा सरिता भट्ट व पार्टी का स्वर मा ये गढ़वाली गीत सीख।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: भाई बंधुओं, अभी आपन सुनी नी रैबार, और रैबार से पहली आपन सुनी सरिता भट्ट व पार्टी का स्वरमा एक सुंदर सी गढ़वाली गीत। दगड़ियों, अब आप सुना लोक कवि गोष्ठी, जयमा की प्रतिभा करना छन श्री वीरेंद्र पंवार, श्री कलम सिंह लिंगवाल, श्री धनेश कोठारी और श्रीमती आशा पेनुली।
6: नमस्कार, आप सभी सुनदरों ते आज की ई कवि गोष्ठी में जो कवि आया छन उनका नौ ई तरह से छन, श्रीमती आशा पेनुली जी जो देहरादून बटी छन, श्री कलम सिंह लिंगवाल जी जो भी देहरादून बटी छन, श्री धनेश कोठारी जी जो यहाँ छन ऋषिकेश बटी, और मैं वीरेंद्र पंवार पौड़ी बटी। तो आज ई कवि गोष्ठी की शुरुआत कर दा, और हमारा बीच महिला शक्ति मौजूद छन, मातृशक्ति, वखी बटी शुरू करनु छौ आज ए कवि गोष्ठी ते। तो मैं कविता पाठ का वास्ता न्यूतनु छौ श्रीमती आशा पैनुली जी ते कि आप आवन और अपनी कविता से शुरू करो, नहीं कवि गोष्ठी को शुरुआत करो। आशा जी,
7: मेरी कविता जो छन वो ते आप अगर बोला तो छणिकाएं भी कदन, लेकिन मैं उते छिड़क बोल दूं।
6: स्वागत।
7: मोर पर खटखट अलगई दे कंदुरु को ते छन, मन ते समझणो को एक चुप भी भारी छे। पोंख काटे की डालू नी सुगदु, पोंख काटे की डालू नी सुगदु च जोड़ी काटी की, मन की नी हरदु कर्म से, हरदु च अपने सोच व्यवहार से।
6: बहुत बढ़िया।
7: भलू होलो और नी भी होलो, भलू होलो और नी भी होलो, कुछ तो तुम्हारा भला को होनो होलो। यहाँ पर आशावादिता है ये। और सूरज न डूबू और रात भेजाओ, सूरज न डूबू और रात भेजाओ, चांद से इन होन तुझे कभी भला।
6: बिल्कुल सुंदर।
7: जोग वकी कर दू खड़ो हमते, जोग वकी खड़ो कर दू हमते, बटिन जखन भागने चाहना, बटिन जखन भागन चाहना। यह हम सब की तरफ से जो हम ये लाइन पढ़नु छदी में, रह की बासा शहर मा, रह की बासा शहर मा, जिगुड़ी पूछनी च बताओ भाई घर गांव मा क्या होनो च।
6: शहर मा रह की पूछना।
7: हर क्षण का बाद नी होंदु हर चूं को एहसास, हर क्षण का बाद नी होंदु हर चूं को एहसास, होंदु तब जब तुम सोच लेना कि हर चीज दोबारा नहीं आती। तीर पर बैठा मन की, ये मैं बहुत बहुत विरोधाभास और वे मैं जिंदगी को सच।
6: बिल्कुल।
7: तीर पर बैठा मन की, तीर पर बैठा मन की, भीतर अपनी सोच ख्यालों में डूबिया चल। आस की जोत जलावा तब तक, आस की जोत जलावा तब तक, हवा को रूख बदल लू तब जब तक। नई कोपल ऐ जनन टुकलियों पर, नई कोपल ऐ जनन टुकलियों पर, डाला सदन निरेंद्र सुखिया पतझड़ का बाद।
6: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
7: उड़न छोड़ी पंछी बैठी रहेगी पिंजरा मा, उड़न छोड़ी पंछी
6: बैठी रहेगी पिंजरा,
7: बैठी रहेगी पिंजरा।

0: આપણી કેસે આપણું હિ નાતા જોડી કી ઓ જરા ભેટી કરલા ઓ જરા ભેટી કરલા આલિંગન પતા તે ચલાલો હમ કતના દૂર છા
1: બઢિયા
0: આપુ તે છાણ કી દેખી છન્ની માં આપુ તે છાણ કી દેખી છન્ની માં ખારા કા સિવા કુછ નહીં મિલી
1: બઢિયા
0: મુડી દેખી જાણી તપ મેરા ચલના સે હી નાતા રિશ્તા ચલના છા मुड़ी की देखी जब
1: मेरा चलने से नाता
0: मेरे चलने
1: चलना
0: से ही
1: नाता रिश्ता चलना चाह
0: गांव आवाते सही एक बार गांव आना की सोचाते सही लेनो को हम ही है जोला पानी बोल दो कुछ नहीं पानी बोल दो कुछ नहीं जरा बैठ हत तीर पर सब समझ आ जाल उड़न दिया जो तुम्हारुच उड़न दिया जो तुम्हारुच ऐ जालो लौटेगी अंधेरा से पहले एक कविता चे या अभागी
1: स्वागत
0: अभागी चे वो मन की जैमा सांस्कारिक गुण हो छन
1: अभागी
0: पर अभागी चे वो मन की जैमा सांस्कारिक गुण छन प्रेम करना को सगोरनी प्यार प्रेम करना को सगोरनी संजोणु रही सहरी उमर संजोणु रही सहरी उमर आखरों आखरों को बक्सा संजोणु रही सहरी उमर आखरों को बक्सा अजाननी साकी वे मौन ते जो आत्मा ते मिलांदो हिसाब रखियो हर पल को हिसाब रखियो हर पल को पर हाय रिज जुगड़ी कह की आंखों को पानी पड़ नहीं सके सगोर आज झुकुड़ नीच सगोर यहाँ को कि आज झुकुड़ नीच दूसरा को अस्तित्व पड़न मात वो जिंदगी भर अजान रही कन अभागी रही
1: बहुत बढ़िया
0: एक अजान च समझनों को एक पल बहुत समझनों को एक पल बहुत न समझात जिंदगी भी कम आत्म जिंदात एक पानी गिलास भी याद रख दो आदमी
1: बिल्कुल
0: आत्म जिंदत एक पानी गिलास भी याद रख दो आदमी अनिथर अनिथर सागर समुद्र पै की भी मन की अनजान ही रह दो
2: बहुत अच्छा
0: सागर पै की भी मन की अजान ही रह दो जब कभी तुम ते लगलो दुनिया मा दुखी दुख छ
1: जब कभी तुम ते लगलो दुनिया मा दुखी दुख छ
0: सुमिरा
1: सुमिरा
0: सुमिरा ऊं छड़ते सुमिरा ऊं छड़ते चहते अपनी मन की गहराई मा से चाही डूब कर लाख दुनिया भूली एक पल भी तुम्हारो उछो वो ता उम्र याद रहन वो एक पल कुदगली लगा लो ओठियो मा मुलमुल हंसी ला लो और जो तुम्हारो दुख छ तुम सिमर जाला भूल जाला विस्मृत हो जाला
1: बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया रचना ये छे आशा पैनुली जी और जो कि कविताओं को निचोड़ी सौ कि समझण हो तो एक पल भी बहुत सर नहीं समझण हो तो उम्र भी कम छे तो मैं ई कड़ी में अगले कविता आप सामने बुलाणो छो श्री कलम सिंह लिंगवाल जी जो देहरादून बैठे आए छन आवा लिंगवाल जी अपनी कविता सुनावा
2: धन्यवाद सभी सुंदरता मेरे प्रणाम शिवसों दी मैं आज की कवि गोष्ठी में अपनी पहली कविता बजनू छू जो शीर्षक यनु हमारो देश हो यनु हमारो देश हो
1: स्वागत
2: लिया प्रस्तुत छ मेरी पहली कविता जक मन की माँ मनख्यात हो और मन की आपस माँ निबटी हो जक मन की मेहनत की पूजा हो और मन की माँ नई चेतना और नयो विचार जागृत
1: बढ़िया
2: जक मन की तय जीवन जीवनों को संवैधानिक अधिकार हो और अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था हो जक भ्रष्टाचार से मुक्त शासन हो और रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो जक मनहूस सामाजिक ढांचो और जुर्म न हो और मनखियों के अनवार मा भटकदा भेड़िया न हो जक मासूम बचपन गली गली मा भीख नि मंगदू हो और गरीबी की मार न हो
1: बढ़िया
2: जक मातृशक्ति मा ममत्ता हो और मातृशक्ति की इज्जत हो जक परलोक की बात न हो और परलोक की ही बात हो जक एक हवा मा सांस हो सबकी और एक सूरज को प्रकाश हो जब जुल्म की दिशा गिरते हैं सेया सुपनों जगत हैं यानी धरती माँ हमारो देश हो जब जीवन की नई सुबह हो और जीवन प्रकाशमय हो यन हमारो देश हो यन हमारो देश हो अब मैं ये कड़ी माँ एक छोटो सी गीत प्रस्तुत करना चाहूँ
1: स्वागत
2: तो गीत को शीर्षक मेरु मुलुक गढ़ कुमाऊँ की रौतली डांडियों प्रस्तुत मेरु मुल

0: उमा।
1: बहुत ही
0: धन्यवाद।
1: अच्छा,
0: बहुत
1: सुंदर।
0: बहुत सुंदर कथ, बहुत बढ़िया कविता और गीत आपका। कलम सिंह लिंगवाल जी ते अभी अपन सोनी की जौन देश कैंतरों से होण चंद माँ की बात करी, और बन बनी का फूल खिलन मेरी डांडी कंठी माँ, इतना की बात उन अपना कविताओं का जरिया करनी। अब ई कवि गोष्ठी की अगली कड़ी माँ में आमंत्रित करना चाहूँ, न्योतना चाहूँ श्री धनेश कोठारी जी ते जो ऋषिकेश बुटाया चंद। आवा कोठारी जी अपनी कविता सुन।
1: धन्यवाद भैजी। मेरी कविता को सेठ सच घुमत फिरत
0: घुमत फिरत बढ़िया।
1: थौल देखी जिंदगी को घूमी घामी चल गयो। थौल देखी जिंदगी को घूमी घामी चल गयो। खै क्या पै क्या सो सैती सोरी बूती उकरी चल गयो।
0: बढ़िया
1: बहुत बढ़िया। थौल देखी जिंदगी को घूमी घामी चल गयो। खै क्या पै क्या सैती सोरी बूती उकरी चल गयो। लाट धैरी कांद मां बल्दों को
0: लाट।
1: पुछड़ू उलै। लाट धैरी कांद मां बल्दों को पुछड़ू उलै उलै। बिजाड़ चै पली मी मोल सी पसरी गयों। थौल
0: बहुत
1: देखी
0: बढ़िया,
1: जिंदगी को घूम घामी चल गयों।
0: बहुत
1: बहुत
0: बहुत
1: अच्छा।
0: बढ़िया।
1: उकलियों उकलियों में फलांग मैल सह चुकानों को कुणाट। उकलियों में फलांग मैल सह चुकानों को कुणाट। फांगो मां भी पंद्र फाल तभी देखियो भी अलस गयों। थौल देखी जिंदगी को घूम घामी चल गयों।
0: बहुत बढ़िया।
1: फंजी बांधी गाणियों की
0: पंची
1: खाजा
0: बांधी गाड़ी।
1: बुखणा फोली फाली। फंची बांधी गाणियों की खाजा बुखणा फोली फाली। सियाणियों का सांगा हिटन चै पैली। थौ बिछै बिछै पट से गयों। थौल देखी जिंदगी को घूमी घामी चल गयों। खै के पै क्या सैती सोरी बूती उकरी चल गयों।
0: बहुत बहुत बढ़िया।
1: और आखिरी माँ की थाला पर बन्या छा सांप। थौला पर बन्या छा सांप मंत्रु का कर्या छा जाप। दांत निखोली विष बुझाई फुंकार मारी डस गयों। थौल देखी जिंदगी को घूमी घामी
0: घूमे
1: चल
0: चल
1: गयों।
0: गया।
1: खै के
0: बहुत
1: पै
0: बढ़िया,
1: क्या सैती सोरी बूती उकरी चल गयों।
0: बहुत
1: बहुत
0: बहुत
1: धन्यवाद।
0: बढ़िया, बहुत सुंदर तुम बोल रहे।
1: और अब मैं न्यूतलू छो ई कवि गोष्ठी को जो संचालन करना चाहन बड़ा भैजी वीरेंद्र पंवार जी। आवा भैजी एक रचना अपनी प्रस्तुत सुन।
0: हाँ धन्यवाद दिनेश भाई। और मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ, तो मैं सीधा कविता पढ़ाना चाहूँ
1: स्वागत।
0: कि जरा जरा उम्र से भी मैं सीखण लग्यो छूँ,
1: बहुत बढ़िया।
0: कि जरा जरा उम्र से भी मैं सीखण लग्यो छूँ, और जरा जरा दुनिया की नज़र में बिगड़ लग्यो छूँ।
1: वाह बहुत बढ़िया सुंदर।
0: कि जरा जरा उम्र से भी मैं सीखण लग्यो छूँ, और जरा जरा दुनिया की नज़र में बिगड़ लग्यो
1: बिगड़
0: छूँ।
1: लगे जो बहुत अच्छा।
0: कि यूंद रूड़ी बरख हो पैथर कभी हिरणो नी, यूंद रूड़ी बरख हो पैथर कभी हिरणो नी, ठंडो मठो हिटे रखनी उतेड़ा लगू दनकुणो नी। यूंद रूड़ी बरख हो पैथर कभी हिरणो नी, ठंडो मठो हिटे रखनी उतेड़ा लगू इन दनकुणो नी। दगड़ो मिलू न मिलू ये खुली में हिटन लग्यू छो, और जरा जरा मी उम्र से भी सीखण लग्यो छो,
1: बहुत अच्छा
0: जरा जरा दुनिया की नज़र से मी बिगड़ लग्यो
1: बिंगड़ बहुत
0: छो।
1: बढ़िया सुंदर।
0: कि बादलों से भुन सीखी उच्ची उच्ची उड़ान मिन, कि बादलों से भुन सीखी उच्ची उच्ची उड़ान मिन, सुपनों की बनाई तब भर भरी मचान मिन, सुपनों की बनाई तब भर भरी मचान मिन, अर स्वीणों तक पहुँचे जौलो हिटण लग्यो छो, अर
1: वाह
0: जरा
1: जबरदस्त।
0: जरा उम्र से भी मैं सीखण लग्यो
1: सीखने लगे
0: छो,
1: छो वाह
0: अर जरा जरा दुनिया की नज़र में बिगण
1: बहुत
0: लग्यो
1: बढ़िया
0: छो।
1: बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
0: कुछ और पंक्ति छ ना, कि घाम बरखा बतवाणी सोनो डाली बूटियों से सीखे मिन,
1: वाह
0: कि घाम बरखा बतवाणी सोनो डाली बूटियों से सीखे मिन, हर हाल मा खुश रोनो छोटा बालों से सीखे मिन। कि घाम बरखा बतवाणी सोनो डाली बूटियों से सीखे मिन, हर हाल मा खुश रोनो छोटा बालों से सीख मिन, बालों सी निझर करेणो सीखण लग्यो छो,
1: आहा
0: जरा
1: बहुत
0: जरा
1: सुंदर बहुत
0: सी
1: सुंदर।
0: उम्र से भी मैं सीखण लग्यो छो, और जरा जरा दुनिया की नज़र में बिगण लग्यो
1: बिगड़ लगे
0: छो।
1: छो
0: और
1: बहुत
0: अंतिम
1: सुंदर।
0: ये पंक्ति छन, कि कद के रूड़ी ओनो पर शुद्धि मुद्दी निगलणो, कि कद के रूड़ी ओनो पर शुद्धि मुद्दी निगलणो, हिमालय से सीख मिन चम यूं सी चमकणो,
1: बहुत
0: कथ
1: बढ़िया
0: के रूड़ी
1: बहुत अच्छा
0: ओनो
1: बहुत
0: पर
1: अच्छा।
0: शुद्धि शुद्धि निगलणो, हिमालय से सीख मिन चम यूं सी चमकणो, और फिफंडा खे की जीबाल से की फिर उठन लग्यू छो, जरा जरा सी मी उम्र से भी सिकन लग्यू छो, जरा जरा दुनिया की नजर में बिंगण लग्यू छो, जरा जरा उम्र से भी मी सिकन लग्यू छो।
1: बहुत बढ़िया,
0: तो यह छे मेरी कविता। अब मैं ई कवि गोष्ठी का अगले चरण में आमंत्रित करनो छो, न्योतनो छो श्रीमती आशा पैनुली जी ते कि वो अपनी एक रचना सुनावन। स्वागत छे श्रीमती आशा पैनुली जी।
2: कवित कैरी देखा वो एक पेल जो तुमने भिगे छो दुख मा, कवित सोची देखा कि वो दुख कर दूर हो लो, क्षण प्रति क्षण रो रोम पुलकित हुए चालू। कवित कैरी देखा एक पल तुम ते भिगे की दुख से दूर ले जालू। बसर दिन इन कर दू कोई, दिन इन कर दू कोई कि जन एहसान चुकानू हो जिंदगी को। दिन इन कर दू कोई एहसास चुकानु च कोई, दिल मा कुछ इन संभली दुख, दिल मा कुछ इन संभाली दुख, जनु जनु गैनी पाती र संभली होली।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
2: दिल मा कुछ इन संभलियों दुख, जन गैनी पाती संभली होली, पर जब देखी शीशा जब देखी शीशा तब मिते आस हुई कि ये घर मा पछाण दू तू कुछ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। ये घर में मैंने जब शीशा देखी थी तब मैं तो लगी कि कोई मैं पछाण दू चे। कवि गोष्ठ बहुत शानदार कविता आपकी। और ये कवि गोष्ठी का दूसरा चरण में मैं आमंत्रित करना चाहूँ श्री धनेश कोठारी जी तक। स्वागत छ धनेश जी।
1: धन्यवाद भाई जी। और मेरी ये रचना को शीर्षक शीर्षक छो हिकमत न छोड़।
0: बहुत बढ़िया, हिकमत न छोड़।
1: थो बिसोणो थो बिसोणो कुचा उंदारी उंदौड़, थो बिसोणो कुचा उंदारी उंदौड़, उकाल उकुल की तब हिकमत न छोड़।
0: बहुत बढ़िया।
1: थो बिसोणो कु चा तू उंदारी उंदौड़, उकाल उकुल की तभी हिकमत न छोड़।
0: बहुत बढ़िया।
1: तीन जाने जा कखी उंड फंड चल जा,
0: तीन
1: जाने
0: चाय उंड
1: जा चल जा कखी उंड फंड चल जा, पर होरियो ते अफ दगड़ न लसोड़।
0: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया।
1: थो बिसोणो कुचा उंदारी उंदौड़, उका उकल की तभी हिकमत न छोड़।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: ओण जानत रीत भी और जीवन बीच, ओण जानत रीत भी और जीवन बीच, ओंदरों को बाटो जंदरों की तरफ न मोड़।
0: बहुत बढ़िया।
1: अंदरों को बाटू जंदरों की तरफ न मोड़, थो बिसोणो को चातू उंदरी उंदौड़, उकाल उकुल की तभी हिकमत न छोड़। रोज गौली ह्यूं और रोज बौगी पानी, रोज गौली ह्यूं और रोज बौगी पानी, को जमण थमणो यूं को कौर जंक जोड़, थो बिसोणो को चातू उंदरी उंदौड़, उकाल उकुल की तभी हिकमत न छोड़। कि आखिर मा के हैका गुएर हुए की तेरु के फैद हुए सकद, तभी हिकमत न छोड़।
0: बहुत बढ़िया, उकाल चरण की हिकमत न छोड़। बहुत बढ़िया, एक सकारात्मक कवि की रचना। मैं अभी कड़ी में एथर बुलाना चाहूँ श्री कलम सिंह लिंगवाल जी थे। आवा लिंगवाल जी अपनी
3: धन्यवाद। आज की मैं अपनी तीसरी कविता बजनु छूँ जे सच भक्त की पुकार च लेवा प्रस्तुत च मेरी यह रचना। भक्त की पुकार च एकता बनावा, भेद भाव मिटा सब एक हुए जावा, दिल से दिल मिले ते तुम कदम बढ़ावा, बंदिश की जिंदगी से तुम आजाद हुए जावा। भक्त की पुकार च एकता बनाओ, अपना सिया सुपनों ते तुम नींद बिटी जगावा, दुख और जुल्म की दीवारों ते अपनी एकता की ताकत से गिरावा, जिंदगी का सुपनों ते तुम खुशहाली का फूलों से सजावा, भक्त की पुकार च एकता बनावा।
0: बहुत बढ़िया।
3: अपना हक की आवाज ते तुम बुलंद बनावा, और अपना जिंदगी का अरमानों ते निजलन दयावा, जुर्म पर आधारित मनहूस समाजी ढांचा तें गिरावा, और भ्रष्टाचार मुक्त स्वराज को सुपनों साकार करावा, भक्त की पुकार च एकता बनावा। मन की छा तुम अपनी मनख्यात जगावा, लोकशाही की ताकत छा तुम जागृत हुए जावा, हर जोर जुल्म और अत्याचार का खिलाफ खड़ा हुए जावा, हर बदलता वक्त की बुलंद आवाज बन जावा, भक्त की पुकार च एक किताब बनाओ।
1: और एक बार फिर मैं आमंत्रित करूँ छो बड़ा भैजी वीरेंद्र पवार जी ते एक रचना का दगड़।
0: हाँ धन्यवाद दिनेश जी। और एक छोटी कविता सुनो दफ्ते कोरी सैणी करी की करी रे जंदन कि कोरी सैणी करी की करी रे जंदन अर झूठी सिक की धरी की धरी
1: रह जंदन। बहुत
3: बढ़िया बहुत बढ़िया।
0: तो हो जो किसी भरी सब अपने हुंदन।
1: हाँ
0: हो जो किसी भरी सब अपने हुंदन अर रीति गाणी मोरी की मोरी रे जंदन।
3: बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
0: झूठी से की धरी रह जंदन अर जौन तीसों का काम नी औन क्यकन।
3: बहुत बढ़िया।
0: जौन तीसों का काम नी औन क्यकन गागरी जू भोरी की भोरी रह जंदन।
3: बहुत बढ़िया।
0: कोरी स्याणी करी की करी रह जंदन अर कह का दिल नी दुखाणो अंकुए बुन बचाण। कह का दिल नी दुखाणो अंकुए बुन बचाणो भोली बात हरी की हरी रह जंदन। कोरी शानी करी की करी रह जंदन अर अंतिम द्वी लैन आपते और सुनो छो कि मनमा निराखणो जो भी बुन्नो सामणी बुन्नो। कि मनमा निराखणो जो भी बुन्नो सामणी अर बात वी ही खरी की खरी रह जंदन झूठी सिक की धरी की धरी रह जंदन।
3: बहुत बढ़िया।
0: कोरी शानी करी की करी रह जंदन।
3: बहुत अच्छा पूरी।
0: और यो छे आज की कविता और आज का कवि। आज की ई कवि गोष्ठी में जो कवि शामिल छा उनका नौ चंद श्रीमती आशा पैनुली जी श्री कलम सिंह लिंगवाल जी श्री धनेश कोठारी जी और मी वीरेंद्र पंवार। आप सभी सुनदरों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
4: बहनों अभी आपन सुनी या लोक कवि गोष्ठी उम्मीद से आपते हैं या पसंद आई होली तो हम ते चिट्ठी लिखी बताइन। हमारो ईमेल को पता छे चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com और हमारो डाक को पता छे चिट्ठी पत्री कार्यक्रम ग्राम जगत अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून निकट रिश्वना पुल और पिन कोड छे 248001।

दगड़ियों, अभी आपन सुनी प्रकाश रावत का स्वरमा यू कुमाऊनी गीत, और अब आप ते ली चल दो जौनसर का छोड़, तो सुना नीलम वर्मा का स्वरमा यू जौनसरी गीत।

0: श्रोताओं, अभी आपन सुनी नीलम वर्मा का स्वरमा सुंदर सी जौनसरी गीत। और अब भगत होने वालो छे हिंदी में प्रादेशिक समाचारों को, तो थोड़ी देर बाद आप सुन ला उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।
1: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ। स्वामी विवेकानंद। हिंदी का प्रयोग करें, इससे कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में वृद्धि होती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भाषा है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का निधन। कल पुलिस सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के निर्देशों के बाद देहरादून के आपदा प्रभावित कालेगाड़ क्षेत्र में मलबे के चैनलाइजेशन का कार्य शुरू। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जल संस्थान कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। कई स्तरों पर लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी। और राजकीय पौधालय बागेश्वर में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना और रखरखाव पर कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का आज देहरादून में निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ थे। स्वर्गीय खंडूड़ी 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री रहते हुए उन्होंने देश में सड़क विकास की नई दिशा तय की। उनका राजनीतिक जीवन सादगी, पारदर्शिता और सुशासन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई नेताओं ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। वहीं प्रदेश में आज से 21 मई तक 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान समस्त सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। साथ ही कोई शासकीय मनोरंजन के कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी की अंत्येष्टि कल पुलिस सम्मान के साथ की जाएगी। राज्य सरकार ने कल सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के निर्देशों के बाद देहरादून के आपदा प्रभावित कालीगाड़ क्षेत्र में मलबे के चैनलाइजेशन का कार्य शुरू हो गया है। जिला खान विभाग द्वारा मशीनों के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों श्री जोशी ने इस क्षेत्र का निरीक्षण कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आपदा के मलबे को शीघ्र हटाने और प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा इस संबंध में निविदाएं जारी कर दी गई हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों को लेकर पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। टेरी जिले के फकोट में आज नरेंद्र नगर की ब्लॉक प्रमुख दीक्षा राणा की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत की बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल, टेरी की जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल और विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सदस्यों ने क्षेत्र में सड़क, पेयजल आदि से जुड़े मुद्दों को उठाया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनप्रतिनिधियों और आम लोगों के फोन अनिवार्य रूप से उठाएं तथा उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनें। ब्लॉक प्रमुख दीक्षा राणा ने कहा कि बैठक में सदस्यों द्वारा उठाई गई समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा।
3: आज की इस बैठक में हम सभी की सुनवाई कर रहे हैं, जिसका भी जल से संबंधित हो, पेयजल निगम हो गया या पीडब्ल्यूडी हो गया, पीएमजीएसवाई हो गया या युवा कल्याण हो गया, इस तरह के तमाम जितने भी हमारे सभी बहुत जरूरी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पे आज मीटिंग की गई है। और माननीय मंत्री हमारे सुबोध उनियाल जी भी हमारे बीच हमेशा उपस्थित रहते हैं और आज भी वो हमारे बीच उपस्थित हैं और डीएम साहिबा भी हमारे बीच आई हैं।
2: वहीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन बचत को लेकर की गई अपील का असर भी देखने को मिला। अधिकांश अधिकारी पैदल, बसों और अन्य वैकल्पिक साधनों से बैठक में पहुंचे। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने कहा कि इससे जहां पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, वहीं ईंधन की खपत में भी कमी आएगी।
4: जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है और प्रधानमंत्री जी ने अपील करी है, तो जो स्टेप्स हैं वो भले ही एक क्राइसिस में ही ओरिजिनेट होते हैं, बट अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में इनका एक प्रभावी असर भी रहता है हमारे एनवायरमेंट के ऊपर भी और सब चीजों के ऊपर भी। तो मुझे लगता है कि इसको हम आगे भी चलाएंगे। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोगों ने जनपद में भी एक नो व्हीकल्स डे कर दिया था, और नॉट फ्रॉम टुडे, हमने ये अगस्त 2025 से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। बिकॉज ये सारे प्रयास जो होते हैं आज ना केवल हमारे फूड क्राइसिस के लिए बेटर होते हैं कि उसको हम लोग फेस कर ले, साथ ही साथ एनवायरमेंट के लिए भी काफी फ्रेंडली होते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे
2: हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आज ऋषिकुल मैदान में बनाए गए चार धाम यात्रा के ऑफलाइन पंजीकरण केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। इस

0: दौरान उन्होंने पंजीकरण कराने पहुंचे श्रद्धालुओं से बातचीत कर उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने कहा कि पंजीकरण केंद्र में तीर्थ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। वहीं जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल ने बताया कि ऑफलाइन पंजीकरण केंद्र में अब तक 1,94,000 से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: पौड़ी जिले में बढ़ती गर्मी के बीच पेयजल समस्याओं को लेकर आमजन से लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आज जल संस्थान कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कार्यालय व्यवस्थाओं, शिकायत निस्तारण प्रणाली, अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति तथा फील्ड में चल रहे कार्यों की वास्तविक स्थिति का गहन जायजा लिया। इस दौरान कई स्तरों पर लापरवाही सामने आने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी। एक रिपोर्ट।
2: निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत एक कनिष्ठ अभियंता से वीडियो कॉल से संपर्क किया तो वे ड्यूटी के समय में अपने घर पर मौजूद मिले। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए संबंधित के खिलाफ तत्काल प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए। वहीं अधीक्षण अभियंता कार्यालय से अनुपस्थित पाए गए, जिसके संबंध में उनका एक दिन का वेतन बाधित करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि पेयजल जैसी अत्यंत संवेदनशील और जनहित से जुड़ी व्यवस्था में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कंट्रोल रूम व्यवस्था की भी समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि आमजन को त्वरित और प्रभावी पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से संतोष थपलियाल।
0: कृषि और बागवानी को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के उद्देश्य से राजकीय पौधालय बागेश्वर में आज सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना और रखरखाव पर कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के लगभग 100 किसानों ने भाग लिया। वहीं राजकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं को भी भ्रमण कार्यक्रम के माध्यम से बागवानी तकनीकों की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के महत्व, उपयोगिता और रखरखाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला उद्यान अधिकारी हरीश चंद्र आर्य ने कहा कि विभाग लगातार किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने और योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहा है।
3: काश्तकारों को यहाँ पर जो है निश्चित रूप से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की सिंचाई की योजना है। इस पर अगर इसका उपयोग अगर काश्तकार करते हैं तो इसमें पानी की बचत होती है, साथ साथ श्रम की भी बचत होती है, क्योंकि हमें जो है प्रत्येक पौधे में या प्रत्येक खेत में हमें जाने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने यहाँ पर अपनी सिंचाई की प्रणाली स्थापित कर दी तो एक बार वहाँ से वो करने पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंचाई अपने आप हो जाती है और काश्तकार के समय की काफी बचत होगी।
0: भ्रमण कार्यक्रम में शामिल छात्र ऋतिक लुमियाल ने कहा कि खेती और बागवानी के आधुनिक तरीकों को समझना काफी रोचक अनुभव रहा।
4: सबसे पहले तो हमें पॉली हाउस के बारे में बताया गया, जो कि झाड़ियों की फसलों के लिए हमारे लिए लाभदायक होती है। फिर हम ऊपर गए, वहाँ पे हमने लीची घूटी का पेड़ देखा, जिसमें दिखाया जा रहा था कि उसमें कांच बांध के और उसमें से पॉलिथीन से उसमें से नए बीज कैसे उगाए जाते हैं। फिर हम गए आम के पेड़ों के वहाँ पे, जहाँ पे हमने कलमी आम और अन्य प्रकार के आम देखे, जिनमें आमों के टहनियों को काट कर उसको नीचे लगाया जाता।
0: उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की इस साल हुई हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चंपावत जिले के होनहार छात्र छात्राओं को आज सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने छात्रों से उनके भविष्य के लक्ष्यों पर संवाद किया और उन्हें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का निधन, कल पुलिस सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के निर्देशों के बाद देहरादून के आपदा प्रभावित कालीगढ़ क्षेत्र में मलबे के चैनलाइजेशन का कार्य शुरू। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जल संस्थान कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। कई स्तरों पर लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी और राजकीय पौधालय बागेश्वर में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना और रखरखाव पर कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। इसके साथ ही

0: प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों का बाद एक बार फिर से स्वागत छे आपको अपनी बोली भाषा का कार्यक्रम ग्राम जगत मा। मीछो वीरेंद्र दत्त गैरोला। भाई बंधुओं, गर्मी का ये सीजन मा वनाग्नि की घटना सामने आउंदिन। राज्य का विभिन्न हिस्सों मा वनों मा कुछ दिनों पहले आग लगी छे, जो कि बीच में बरखा होने से बुझ गई थे, लेकिन तेज गर्मी पड़ने से एक बार फिर वनाग्नि की घटना सामने आनी छन। वनों में आग लगन से वन संपदा तहत भारी मात्रा में नुकसान पहुँच दुई छे। कई वन्य जीव वनाग्नि की भेंट चढ़ जानन। तो वनाग्नि का प्रति हम सब तें जागरूक होने की जरूरत छे। वनों तें आग से बचाणु केवल वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं छे, बल्कि हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी छे। हमारी छोटी छोटी असावधानी और लापरवाही से ही वनाग्नि की घटना घटित होनी, तो सबूत जागरूक रहना की जरूरत छ, ताकि वनाग्नि की घटना नहीं हो सको। तो दगड़ियों, अब आप तें सुनो ना राजीव नयन बहुगुणा का स्वरमा एक सुंदर सी गढ़वाली गीत।

0: भाई बंधु अभी आपन सुनी राजीव नयन बहुगुणा का स्वर मा यू गढ़वाली गीत अरे भगत होनु च गढ़वाली मा प्रादेशिक समाचारों को तो सुना गढ़वाली प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार आकाशवाणी देहरादून बुलेटिन गढ़वाली मा प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मी प्रियंका। पहली मुख्य समाचार। उत्तराखंड का पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी को आज देहरादून में निधन। राष्ट्रपति राज्यपाल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त करी। चार धाम यात्रा से लेके श्रद्धालुओं में खास उत्साह। एक महीना की तीर्थ यात्रा में अब तक लगभग 16 लाख श्रद्धालुओं दर्शन करीनी। बागेश्वर में उद्यान विभागन कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजन करी। किसानों ते सूक्ष्म सिंचाई और आधुनिक बागवानी तकनीकों की जानकारी दिए गए। और राज्य में रूढ़ी को असर बढ़ी। मौसम विभागन हरिद्वार देहरादून और उत्तरकाशी का आसपास का क्षेत्रों में 21 मई तक लू चलन की संभावना जते। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड का पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी को आज देहरादून में निधन हुए गए। वो 92 वर्ष का छा और पिछला कुछ समय बटीन अस्वस्थ चलना छा। उनको उपचार देहरादून का एक निजी अस्पताल में चलनु छो। मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी भारतीय सेना में लंबा समय तक सेवाएं द्योण का बाद राजनीति में ऐनी और अपनी साफ सुथरी छवि ईमानदार प्रशासन और सुशासन कुणी पछड़ी गैनी। उन उत्तराखंड का मुख्यमंत्री का रूप में द्वि कार्यकाल संभालीनी और केंद्र सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री का रूप में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित विभिन्न लोगों का निधन पर दुख व्यक्त करी। प्रधानमंत्री बोली कि सशस्त्र बलों से लेकर राजनीतिक जीवन तक मेजर जनरल खंडूड़ी को योगदान सदनी ही स्मरणीय रौलू। देश भर में बेहतर कनेक्टिविटी कुणी उनका प्रयास प्रेरणादायी छा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन बोली कि मेजर जनरल खंडूड़ी को जीवन राष्ट्र सेवा अनुशासन और जनहित का प्रति समर्पण को उदाहरण छो। उन बोली कि उत्तराखंड का विकास सुशासन और पारदर्शी कार्यशैली कुणी उनको योगदान सदनी ही याद किए जालू। पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी को अंतिम संस्कार भोज राजकीय सम्मान का दगड़ा संपन्न होलू। ये अवसर पर राज्य सरकार बुधवार ते सार्वजनिक अवकाश घोषित करी। शासन द्वारा जारी आदेश का अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री खंडूड़ी का निधन पर प्रदेश में आज बटीन 21 मई तक 3 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किए गए। ये दौरान सभी सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज अदु झुक्यू रौलू और कई भी प्रकार का शासकीय मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाला। राज्य मां चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी च। आस्था की ये पवित्र यात्रा ते शुरू हुआ आज एक महीना हुई गे और तीर्थ यात्रा का प्रति श्रद्धालुओं मां खास उत्साह देखने ते मिलनु चु। पिछला महीना उत्तरकाशी जिला मां यमुनोत्री और गंगोत्री धाम का कपाट खुलन का दगड़ा में ही चारधाम यात्रा को शुभारंभ हुई गे छो। खराब मौसम का जल्दी शुरुआती दौर मां यात्रा की रफ्तार थोड़ी धीमी रहे पर अब यात्रा रफ्तार पर च। अब तक लगभग 16 लाख श्रद्धालुओं चार धाम मां दर्शन और पूजा अर्चना कैरियाली। सबसे ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंचना छिन जख दर्शन कन वाला शिव भक्तों की संख्या 6,50,000 से ज्यादा वेगे। ये बीच पर्यटन मंत्री सतपाल महाराजन श्रद्धालुओं से तीर्थ यात्रा का दौरान यात्रा मार्ग और धाम परिसर ते स्वच्छ बने रखने की अपील करी।
2: श्रद्धालु भक्तगण चार धाम यात्रा में देवभूमि में पधारे हुए हैं और यह हमारा कर्तव्य है और सबसे बड़ी पूजा यह है कि हम देवभूमि को स्वच्छ रखें। इसलिए जो भी कूड़ा है वो कूड़ा दान में डालें और सारी धरती को पवित्र रखें। मेरा आपसे बहुत अनुरोध है कि कूड़ा कूड़े की जगह पड़े तो हमारी देवभूमि साफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी और आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श चार धाम के रूप में स्थापित हो।
1: उन्हें चार धाम यात्रा का दगड़ा अब सिख श्रद्धालुओं की आस्था को प्रमुख केंद्र हेमकुंड साहिब यात्रा भी 23 मई बटी शुरू होने वाल छ। समुद्र तल बटी करीब 15,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब का कपाट श्रद्धालुओं को खुले जान वाल छिन। यात्रा ते लेके जिला प्रशासन सेना और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ट्रस्ट तैयारियों ते अंतिम रूप देण में जुटिया छिन। घांगरिया बटीन हेमकुंड साहिब तक करीब 4 किलोमीटर का पैदल मार्ग पर सेना का जवानों प्रतिकूल मौसम और भारी हिमपात का चलती हिंते

0: की बाटू तैयार कैरियाली वकी प्रशासन पेयजल विद्युत दूरसंचार और अन्य मूलभूत सुविधाओं ते दुरुस्त कनमा जुट्यू च। जिलाधिकारी गौरव कुमारन बते की यात्रा मार्ग पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जानी छिन और कपाट खुन से पहली सभी तैयारी बहाल कर दिए जाली।
1: 23 तारीख को हेमकुंड साहिब के कपाट खुल रहे हैं, इसके लिए प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। आर्मी के द्वारा पहले उसमें बर्फ काट के रास्ता बनाया गया है। जो वहाँ पर अप्रोच रोड है जो PMGSY की है, उनके द्वारा उसका सुधारीकरण कार्य लगातार किया जा रहा है। ट्रैक मार्ग पे PDOD के द्वारा कार्य किया जा रहा है। साथ ही घोड़ा खच्चर की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए इस वर्ष वहाँ पर ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था भी प्रारंभ की गई है।
2: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो जे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: बागेश्वर में उद्यान विभाग द्वारा राजकीय पौधालय में एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये में करीब 100 किसानों ने भाग लेनी जबकि छात्र छात्राओं ते भ्रमण का माध्यम से आधुनिक बागवानी तकनीकों की जानकारी दिए गए। कृषि विज्ञान केंद्र काफली गैर का प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर राजकुमारन किसानों ते सूक्ष्म सिंचाई ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक को लाभ और रख रखाव की जानकारी दे। विशेषज्ञों मौसमी सब्जियों में रोग नियंत्रण जैविक उपाय और संतुलित पोषण पर भी जानकारी दे। विद्यार्थियों ते पॉली हाउस कटिंग ग्राफ्टिंग बंडिंग और पौध संवर्धन की विधियों से अवगत करेंगे। जिला उद्यान अधिकारी हरीश चंद्र आर्यन बते कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का तहत किसानों ते सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगाउन पर अनुदान दिए जाणु च। उन बोली कि विभाग किसानों ते आधुनिक तकनीकों से जुड़नु कुनी लगातार प्रयास कनु च।
3: काश्तकारों को यहाँ पर जो है निश्चित रूप से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, न कि जैसे प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना है, इसका उपयोग अगर काश्तकार करते हैं तो इसमें पानी की बचत होती है, साथ साथ श्रम की भी बचत होती है, क्योंकि हमें जो है प्रत्येक पौधे में या प्रत्येक खेत में हमें जाने की जरूरत नहीं है, इतनी सिंचाई मुनाफ हो जाती है और काश्तकार के समय की काफी बचत।
0: प्रदेश में रूढ़ी को असर लगातार बढ़ती जानू च। मौसम विभागन हरिद्वार देहरादून और उत्तरकाशी के आसपास का क्षेत्रों में 21 मई तक कखी कखी लो चलन की संभावना जते। ये बीच सोमवार को दिन रूड़की प्रदेश को सबसे ज्यादा गर्म स्थान रहे जख अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए गए। राजधानी देहरादून में भी आज अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस का आसपास दर्ज किए गए। मौसम विभाग के अनुसार अगला 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी वे सकती। मैदानी जिलों में मौसम मुख्य रूप से रुखू बण्यू रालू वकी उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग चमोली बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कखी कखी हल्की बरखा का दगड़ा में गरज चमक की संभावना च। यूं क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज बथों चलन और आगासी बिजली चमकण का भी अनुमान लगाए जाना छिन। मौसम विभागन लखोते दोपहर का बगत तड़तड़ा घाम से बचन और पर्वतीय क्षेत्रों में खराब मौसम का दौरान सतर्क रहन की सलाह दीनी। देहरादून का सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन की कमी से परेशान मरीजों को राहत भुनी खबर च। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मन बते कि पिछला कुछ बगत बटीन बनी वैक्सीन की समस्या अब दूर होन बैठी गए। श्री शर्मा का अनुसार विभाग स्थानीय खरीद का माध्यम से CHC और PSC में लगातार वैक्सीन की उपलब्धता बने के रखनु छो जबकि राजकीय और जिला अस्पतालों में महानिदेशालय स्तर बटीन सप्लाई प्रभावित होने का कारण आनी छे और निजी विक्रेताओं में भी स्टॉक की कमी छे जैसे समस्या और बढ़ी गई। उन बते कि पिछला सप्ताह महानिदेशालय बटीन करीब 1000 एंटी रेबीज वैक्सीन प्राप्त हुईनी। दगड़ा ही पुराना वेंडरन भी अब नियमित सप्लाई शुरू करने कुनी हामी भरेली।
4: जहां तक हम अपनी CHC PSC की बात करें तो हमारे स्तर से लगातार सप्लाई वहां पे की जाती रही और ऐसी कहीं कोई क्राइसिस ऐसी नहीं आ पाई कि किसी को इंजेक्शन ना मिला हो। जहाँ तक SGH और DH की बात है तो वहाँ से सीधी जो है वो क्योंकि DG स्तर से वहाँ पे सप्लाई होती है तो वहाँ पे थोड़ा समस्या थी। कुछ लोगों ने अपने स्तर से खरीदने की कोशिश भी, ये समस्या जो थी इसमें प्राइवेट अगर हम किसी से खरीदना चाह रहे थे तो वहाँ भी सप्लाई नियमित रूप से नहीं मिल पा रही थी और जो हमारे DG स्तर से वो सप्लाई भी जो है हमें वहाँ से नियमित रूप से नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अभी लास्ट वीक ही DG स्तर से सप्लाई शुरू हो गई है और अभी लगभग हमें 1000 के आसपास जो है वहाँ DG स्तर से भी हमें जो ARV मिल गए हैं और जो हमारे जो वेंडर जो पहले सप्लाई नहीं कर पा रहे थे वो भी अब रेगुलर हमें सप्लाई वो कर रहे हैं।
0: पिथौरागढ़ में नंदा देवी ईस्ट ट्रैकिंग मिलम ग्लेशियर अभियान कुणी चयनित 26 सदस्यीय छात्र छात्राओं का दल ते जिलाधिकारी आशीष कुमार भट्ट गायन हरी झंडी दिखे की रवाना कैरी। ये अवसर पर जिलाधिकारी ने बोली कि पिथौरागढ़ जिला साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाओं से भरियो च। उन बोली कि ये प्रकार का ट्रैकिंग अभियान युवाओं में साहस अनुशासन आत्मविश्वास और टीम भावना को विकास कर दिन। जिलाधिकारी ने प्रतिभागियों से ट्रैकिंग का दौरान सुरक्षा मानकों को पालन कर और पर्यावरण संरक्षण को देश द्योण की अपील कह रही। उन बोली कि राज्य सरकार साहसिक पर्यटन ते बढ़ावा द्योण का वास्ता लगातार कार्य करनी च। पर्यटन विभाग का अधिकारियों ने बताए कि अभियान से पहली सभी प्रतिभागियों ते जरूरी प्रशिक्षण दिए गए और ट्रैकिंग का दौरान भी अनुभवी गाइड और प्रशिक्षकों की टीम भी दगड़ा राली। अंत में मुख्य समाचार एक दौ फिर से। उत्तराखंड का पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी को देहरादून में निधन। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त करी। चार धाम यात्रा ते लेके श्रद्धालुओं में खास उत्साह। एक महीना की तीर्थ यात्रा में अब तक लगभग 16 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन करी। बागेश्वर में उद्यान विभाग ने कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजन करी। किसानों ते सूक्ष्म सिंचाई और आधुनिक बागवानी तकनीकों की दिए गए जानकारी। और राज्य में रूढ़ी को असर बड़ी। मौसम विभाग ने हरिद्वार, देहरादून और उत्तरकाशी के आसपास का क्षेत्रों में 21 मई तक लू चलन की संभावना जताई। ये कई दगड़ी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हुए। नमस्कार।
5: गढ़वाली प्रादेशिक समाचारों का दगड़ा ही ग्राम जगत कार्यक्रम इकमा संपन्न होंदु। मैं वीरेंद्र दत्त गेरु लेते हैं दयावा आज्ञा। नमस्कार।
6: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से ग्राम जगत के बाद अब प्रस्तुत है कृषि जगत।

किसान साथियों नमस्कार। 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी देहरादून से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कृषि जगत और आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं महेंद्र कौर। तो बताइए किसान साथियों कैसे हैं आप और आपकी खेती बाड़ी कैसी चल रही है। आजकल तो धान की फसल को बोने की तैयारी में हमारे किसान भाई बहन लगे हुए हैं और खेतों की तैयारी कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हमारे किसान साथी हैं जो कि इस समय सोच रहे होंगे कि हम धान की कौन सी प्रजाति की बुआई इस साल करें। तो किसान भाइयों आप तो जानते ही हैं कि अगर हम बासमती धान की खेती करें तो बासमती की खेती से हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं और वैसे भी देहरादून की बासमती पहले से ही बहुत प्रसिद्ध है तो बासमती धान की खेती कर सकते हैं। जहाँ तक बासमती धान की प्रजाति की बात है तो बासमती की तो बहुत सारी प्रजातियाँ हैं जो आप लगा सकते हैं, जिसमें PB 1509, PB 1692, PB 1847, PB 1121 और PB 1 आदि प्रजातियों की बुआई किसान भाई कर सकते हैं। किसान साथियों बासमती धान की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। अच्छा रहेगा कि यदि आप अपनी बासमती धान की फसल में रासायनिक उर्वरकों का कम से कम इस्तेमाल करें तो आप एक गुणवत्ता युक्त बासमती तैयार कर सकते हैं। आप अपने खेतों में जैविक खाद इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल का दाम भी अच्छा मिलेगा। इसलिए किसान साथियों रासायनिक मुक्त बासमती की खेती आप कीजिए। बासमती की अच्छी प्रजातियों का चयन करके आप बासमती की खेती करेंगे तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और भाई देखो आज के कार्यक्रम में आपसे और भी बहुत सारी बातें करेंगे, आपका मनोरंजन भी होगा और जानकारी भी दिलाएंगे, पर पहले सुनते हैं ये जरूरी संदेश।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: किसान साथियों, अभी आपने सुने संदेश और देखिए आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी लेकर आए हैं। आज जानकारी का विषय रहेगा पर्यावरण संरक्षण सांझी जिम्मेदारी। इस संबंध में जानकारी हम आपको दिलवाएंगे, पर भाई आप भी सोच रहे होंगे कि आप की बातें तो हो ही रही हैं, जानकारी भी सुनेंगे, पर उससे पहले अगर गीत संगीत सुना लिया जाए तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है भाई, पहले सुनते हैं गीत संगीत और सुनते हैं ये रागनी।

0: किसान साथियों, अभी आपने सुनी रागनी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और देखो, पर्यावरण संरक्षण की बात हम कर रहे थे भाई। देखो, पर्यावरण अगर हमारा साफ सुथरा रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने घरों में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें। पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए अपने घरों के आसपास पेड़ पौधे अवश्य लगाएं, और जो पेड़ हम लगा रहे हैं उसकी देखभाल भी नियमित रूप से करते रहें, तभी हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। और पर्यावरण को सुरक्षित रखना या इसका संरक्षण करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आज इसी संबंध में जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। विषय है पर्यावरण संरक्षण, सांझी जिम्मेदारी। और जानकारी दे रहे हैं श्री नरेश सिंह रावत। तो आओ सुनते हैं ये वार्ता।
1: प्रकृति हमारी जरूरतों को तो पूरा कर सकती है, लेकिन हमारे लालच को नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये कथन आज के समय में बिल्कुल सटीक बैठता है। आधुनिकता की इस दौड़ में हमने विकास तो कर लिया, लेकिन उसकी कीमत हमें पर्यावरण को दांव पर लगाकर चुकानी पड़ रही है। आज मानव सभ्यता जिस तेजी से विकास की ओर बढ़ रही है, उसी गति से पर्यावरण संकट भी गहराता जा रहा है। बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, जल संकट और जैव विविधता का पूरी तरह नष्ट होना पूरी मानव जाति के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। ऐसे समय में केवल सरकार या किसी एक संस्था के प्रयास पर्याप्त नहीं है। पर्यावरण संरक्षण के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति, संस्था, उद्योग, विद्यालय, सरकार और सामाजिक संगठनों की साझी भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, उपजाऊ भूमि और हरियाली के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि पर्यावरण संतुलित रहेगा, तभी मानव जीवन सुरक्षित और स्वस्थ रह सकेगा। इसलिए पर्यावरण संरक्षण केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। पर्यावरण संकट के कुछ मुख्य कारण मैं बताना चाहूंगा। पर्यावरण के लगातार बिगड़ते संतुलन के पीछे कई प्रमुख कारण हैं, जैसे अंधाधुंध वनों की कटाई। आजकल उद्योगों और आवासों के लिए जंगलों को लगातार साफ किया जा रहा है, जिससे वन्य जीवों के घर छिन रहे हैं और ऑक्सीजन का स्तर घट रहा है। बढ़ता प्रदूषण, कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा को जहरीला बना रहा है, जबकि रासायनिक कचरा हमारी नदियों और जमीनी पानी को दूषित कर रहा है। प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग, सिंगल यूज प्लास्टिक सदियों तक नष्ट नहीं होता। आजकल अधिकतर चीजों की पैकिंग प्लास्टिक में ही हो रही है। ये हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को खत्म कर रहा है, समुद्री जीवों की जान ले रहा है। और संसाधनों का अत्यधिक दोहन, पानी, कोयला और खनिज पदार्थों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भविष्य के लिए संकट पैदा कर रहा है। साझी भागीदारी का अर्थ है सभी लोगों का मिलकर किसी कार्य में योगदान देना। जब समाज का प्रत्येक वर्ग पर्यावरण की रक्षा के लिए अपनी भूमिका निभाता है, तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। एक व्यक्ति अकेले पूरे पर्यावरण को नहीं बचा सकता, लेकिन यदि करोड़ों लोग छोटे छोटे प्रयास करें तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण में सबसे पहली भूमिका आम नागरिकों की होती है। प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने दैनिक जीवन में कुछ आदतों को अपनाए, जैसे कि पानी की बचत करना, बिजली का कम उपयोग करना, प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना, पेड़ लगाना और कचरे को सही तरीके से निपटाना, तो पर्यावरण को काफी हद तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आज कम उपयोग

0: इसमें सरकार की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाएं, उद्योगों द्वारा फैलाए जाने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना, जंगलों की रक्षा करना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना सरकार की जिम्मेदारी है। उद्योगों और कंपनियों की भी सामाजिक जिम्मेदारी होती है। उन्हें ऐसे उत्पादन तरीकों को अपनाना चाहिए जिससे प्रदूषण कम से कम हो और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग हो। आज कई कंपनियां ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में काम कर रही हैं, जो कि एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन भी पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ये संगठन वृक्षारोपण, नदी सफाई अभियान, प्लास्टिक मुक्त अभियान और जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जोड़ते हैं। समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य जितना अधिक होगा, पर्यावरण संरक्षण उतना ही प्रभावी होगा। आज तकनीक का सही उपयोग पर्यावरण संरक्षण में सहायक बन सकता है। सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन, इलेक्ट्रिक वाहन और जैविक खेती जैसी तकनीकों को अपनाकर हम प्रकृति को होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। अतः यह समझना आवश्यक है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या किसी संस्था का कार्य नहीं, बल्कि ये हम सभी की साझा जिम्मेदारी है, जिसमें कि हम सभी को सम्मिलित रूप से भागीदारी निभानी होगी। यदि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य को समझे और मिलकर प्रयास करे, तो हम आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुंदर पर्यावरण दे सकते हैं। हमें आज से ही ये संकल्प लेना होगा कि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, पेड़ लगाएंगे, प्रदूषण कम करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। इसलिए हम आज से ही यह संकल्प लेते हैं कि हम अपने घर, शहर एवं देश में प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों से दूर रहते हुए अपने समाज को एक स्वस्थ एवं सुरक्षित पर्यावरण प्रदान करने के लिए तत्पर रहेंगे, क्योंकि जब पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।
1: पर्यावरण संरक्षण साझी जिम्मेदारी। किसान भाइयों, इस संबंध में अभी आपने श्री नरेश सिंह रावत से ये जानकारी सुनी और जाना कि स्वच्छ पर्यावरण हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हम किस प्रकार से पर्यावरण को साफ सुथरा रख सकते हैं। और किसान साथियों, जिस प्रकार मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रहने के लिए विटामिन्स और खनिजों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार फसलों को भी अच्छे विकास और अधिक उत्पादन के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। भले ही इन तत्वों की आवश्यकता कम मात्रा में हो, लेकिन इनके बिना पौधों का विकास प्रभावित हो जाता है। मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्वों में जिंक, आयरन, बोरान, मैग्नीज, तांबा और मोलिब्डेनम शामिल हैं। जिंक की कमी से पौधों की बढ़वार रुक जाती है और पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। आयरन की कमी से नई पत्तियों में पीलापन दिखाई देता है। वहीं बोरान की कमी से फूल और फल सही ढंग से विकसित नहीं हो पाते। किसान भाइयों, लगातार एक ही प्रकार की खेती करने और रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग के कारण मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी बढ़ती जा रही है। इसलिए समय समय पर मिट्टी की जाँच कराना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही उचित मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। इन तत्वों का उपयोग मिट्टी में मिलाकर या पत्तियों पर घोल का छिड़काव करके किया जा सकता है। संतुलित पोषण से फसलें रोगों की गुणवत्ता में भी बेहतर होती हैं। संतुलित पोषण से फसलों रोगों के प्रति अधिक सहनशील बनती हैं, उत्पादन बढ़ता है और गुणवत्ता भी बेहतर होती है। तो किसान साथियों, यदि आप अधिक उपज और बेहतर गुणवत्ता चाहते हैं, तो मुख्य उर्वरकों के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों पर भी विशेष ध्यान दें। और भाई, देखिए, आपसे बातें करते करते अब समय हो चला है एक बार फिर से गीत संगीत का, तो आप सुनते हैं ये लोकगीत।

किसान साथियों, अभी आपने सुना देशभक्ति लोकगीत। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और देखिए, हमारे कार्यक्रम का समय भी लगभग पूरा होने को है। चलने से पहले आपको कार्यक्रम का पता बता देते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, पिन कोड 248001। पता एक बार फिर नोट कीजिए, कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, पिन कोड 248001। इस पते पर हमें आपके पत्रों का इंतज़ार रहेगा। और इसी के साथ मुझे यानी महेंद्र कौर को दीजिए आज का कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। किसान साथियों, नमस्कार।

0: FM 106.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में साय के 7:30 होने को हैं। अब प्रस्तुत हैं कुमाऊनी प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बठे कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार नौदगढ़ में ममता पांडे। पहली मुख्य समाचार। उत्तराखंड मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी देहरादून में निधन। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दगड़ कई नेताओं शोक व्यक्त करो। चार धाम यात्रा के लिए भी श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। एक महणक तीर्थ यात्रा में एल जाने लगभग 16 लाख श्रद्धालुओं करें दर्शन। बक्सर में उद्यान विभागल कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

0: आयोजन करो, किसानों के सूक्ष्म सिंचाई और आधुनिक बागवानी तकनीकों की दी गई जानकारी, और राज्य में गर्मी का असर बढ़ो। मौसम विभाग हरिद्वार व देहरादून अग्दगढ़ उत्तरकाशी आसपास तक जगन में 21 मई जाने लू चलनक संभावना जताई। और अब समाचार विस्तारल। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का आज देहरादून में निधन है गयो। वो 92 साल छी और पछिल कुछ वक्त बठे बीमार ले रुची। उनर इलाज देहरादून के एक निजी अस्पताल में चलण छी। मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी भारतीय सेना में लंब वक्त जाने सेवा देने के बाद राजनीति में आईन और अपन साफ सुथरी छवि, ईमानदार प्रशासन और सुशासनक लिजी पछाणी गईन। उनल उत्तराखंड मुख्यमंत्री के रूप में द्वि कार्यकाल संभालीन और केंद्र सरकार में सड़क परिवहन व राज्य मंत्री रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दगड़ अनेक जानेनल उनर निधन पर शोक जताए। प्रधानमंत्री को कि सशस्त्र बलों बठे लीबे राजनीतिक जीवन जाने मेजर जनरल खंडूरी की योगदान हमेशा याद रोल और देश में जुड़ावक लीजी उनर प्रयास प्रेरणादायी ले छी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को मेजर जनरल खंडूरी जीवन राष्ट्र सेवा, अनुशासन और जनहितक प्रति समर्पणक उदाहरण छी। उनल को कि उत्तराखंडक विकास, सुशासन और पारदर्शी कार्यशैली के लिए उनर योगदान सदा याद करी जाल। पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी अंतिम संस्कार भोल राजकीय सम्मानक दगार संपन्न हुल। यो मौके पर राज्य सरकारल बुधवार के सार्वजनिक अवकाश घोषित करो। शासन द्वारा जारी आदेशक अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी के निधन पर प्रदेश में आज बैठे 21 मई जाने 3 दिवसक राजकीय शोक घोषित करी गयो। यो बीच सपे सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय झंडा आड्डू झुकी रोल और क्वेले प्रकारक राजकीय मनोरंजन कार्य नी करी जाल। राज्य में चारधाम यात्रा सुचारू रूप जारी छू। आस्था यो पावन यात्रा के शुरू भई आज एक महीन है गयो और तीर्थ यात्रा के प्रति श्रद्धालु में जबरदस्त उत्साह देखने निजी मिलनो। पछिल साल उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री और गंगोत्री धामक कपाट खुलनक दगाड़ ही चारधाम यात्रा का शुभारंभ भ्यूज। खराब मौसम होने के शुरुआती दौर में यात्रा की रफ्तार थोड़ी धीमी रहे, लेकिन अब यात्रा रफ्तार पकड़ हाली। एल जाने लगभग 16 लाख श्रद्धालुओं चारों धामों के दर्शन और पूज पाठ करी। सपन है ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ पूजीन और जहाँ दर्शन करने वाले शिव भक्तों की संख्या 6,50,000 है ज्यादा हैगी। यो बीच पर्यटन मंत्री सतपाल महाराजल श्रद्धालुओं थे तीर्थ यात्रा के दौरान बाटके और धाम के साफ सफाई बनाई रखना अपील करी।
1: श्रद्धालु भक्तगण चार धाम यात्रा में देवभूमि में पधारे हुए हैं और यह हमारा कर्तव्य है और सबसे बड़ी पूजा यह है कि हम देवभूमि को स्वच्छ रखें। इसलिए जो भी कूड़ा है वो कूड़ा दान में डालें और सारी धरती को पवित्र रखें। मेरा आपसे बहुत अनुरोध है कि कूड़ा कूड़े की जगह पड़े तो हमारी देवभूमि साफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी और आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श चार धाम के रूप में स्थापित हो।
0: वहीं चारधाम यात्रा दगाड़ अब सिख श्रद्धालुओं की आस्था प्रमुख केंद्र हेमकुंड साहिब यात्रा ले 23 मई बठे शुरू होने वाले। समुद्र तल बठे करीब 15,500 फीटक ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोली जाल। यात्रा के लिए जिला प्रशासन, सेना और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ट्रस्ट तैयारियों के अंतिम रूप दिन में जुटी छू। घांगरिया बठे हेमकुंड साहिब जाने करीब 4 किलोमीटर पैदल बाट में सेना जवानों खराब हालात तक बावजूद मस्त ह्यू पड़नक बाद ले ह्यू हटाबेर बाट के तैयार करा लो। वहीं प्रशासन पानी, बिजली, दूर संचार और दूसर मूलभूत सुविधाएं के दुरुस्त करण में जुटी छू। जिलाधिकारी गौरव कुमारल बताए कि यात्रा बाट में सफे जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी जाने और कपाट खुलना है पहली सफे सुविधाएं शुरू कर दी जाली।
2: 23 तारीख को हेमकुंड साहिब के कपाट खुल रहे हैं, इसके लिए प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। आर्मी के द्वारा पहले उसमें बर्फ काट के रास्ता बनाया गया है। जो वहाँ पर अप्रोच रोड है जो PMGSY की है, उनके द्वारा उसका सुधारीकरण कार्य लगातार किया जा रहा है। ट्रैक मार्ग पे PWD के द्वारा कार्य किया जा रहा है। साथ ही घोड़ा खच्चर की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए इस वर्ष वहाँ पर ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था भी प्रारंभ की गई है।
3: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रहो। ताज़ा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल

0: आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
1: बाक्सर में उद्यान विभाग द्वारा राजकीय पौधालय में एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करी गयो। यह में करीब 100 किसानों भाग ले, जबकि छात्र छात्राओं के घुमड़क माध्यम आधुनिक बागवानी तकनीकों की जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र काफली गैरक प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर राजकुमारल किसानों के सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप और स्प्रिंकलर जस तकनीकों का फैद रख रखाव की जानकारी ले दे। विशेषज्ञों मौसमी सागों में रोग नियंत्रक, जैविक उपाय और संतुलित पोषण पर ले जानकारी दे। विद्यार्थियों के पॉलीहाउस, कटिंग, ड्राफ्टिंग, बर्डिंग और पौध संवर्धनों की विधियों अवगत कराई गयो। और जिला उद्यान अधिकारी हरीश आर्याल बताए कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के भीतर किसानों के सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगून पर अनुदान ले दी जानो और उनलको की विभाग किसानों के आधुनिक तकनीकियों थे जोड़ने के लिए लगातार प्रयास करना।
2: काश्तकारों को यहाँ पर जो है निश्चित रूप से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, न कि जैसे प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना है, इसका उपयोग अगर काश्तकार करते हैं तो इसमें पानी की बचत होती है, साथ साथ श्रम की भी बचत होती है, क्योंकि हमें जो है प्रत्येक पौधे में या प्रत्येक खेत में हमें जाने की जरूरत नहीं है, इतनी सिंचाई अपनाप हो जाती है और काश्तकार के समय की काफी बचत।
1: प्रदेश में गर्म का असर लगातार बढ़ते जाणो। मौसम विभाग हरिद्वार, देहरादून और उत्तरकाशी के आसपास के जगहों में 21 मई जाने कह लू चढ़क अंदाज जताई। यो बीच सोमवार के रुड़की प्रदेशक सपन है गर्म जागरियो, जहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज करी गयो। राजधानी देहरादून में ले आजक अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस आसपास दर्ज करी गयो। मौसम विभाग के अनुसार अघिन द्वी है तीन दिन में अधिकतम तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस जाने बढ़ोतरी है सकम। मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रोल और मौसम में कुछ गर्म दिखने के लिए मिलोल। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागसर, पिथौरागढ़ जिलों में कह द्योपरण घोड़ाट मोड़ा तक डगर बर्फ पड़ने की संभावना ले जताई छू और कह गर्म हौ चलन और चाल चमकण की संभावना ले छू। देहरादून सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन की कमी होने परेशानी होने तैक लीजिए राहत खबर छू कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा बताए कि पछिल कुछ लंब वक्त बैठे वैक्सीनक समस्या अब दूर होने लग रहे। श्री शर्मा के अनुसार विभाग स्थानीय खरीदक माध्यमल CHC और PHC में लगातार वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाई छू, जबकि राजकीय और जिला अस्पतालों में महानिदेशालय स्तर पर सप्लाई प्रभावित होने कारण परेशानी होने छी। निजी विक्रेताओं पास ले स्टॉक कम होने कारण समस्या बढ़ गई छी। उनल बताए कि पछिल महानिदेशालय बैठे करीब 1000 एंटी रेबीज वैक्सीन मिलीन, दगड़े पुराण बेचण वालन ले नियमित वितरण शुरू कर हालो।
3: जहां तक हम अपनी CHC PHC की बात करें तो हमारे स्तर से लगातार सप्लाई वहां पे की जाती रही और ऐसी कहीं कोई क्राइसिस ऐसी नहीं आ पाई कि किसी को इंजेक्शन ना मिला हो। जहां तक SGH और DH की बात है तो वहां से सीधे जो है वो क्योंकि DG स्तर से वहां पे सप्लाई होती है तो वहां पे थोड़ा समस्या थी, कुछ लोगों ने अपने स्तर से खरीदने की कोशिश भी, ये समस्या जो थी इसमें प्राइवेट अगर हम किसी से खरीदना चाह रहे थे तो वहां भी सप्लाई नियमित रूप से नहीं मिल पा रही थी और जो हमारे DG स्तर से वो सप्लाई भी जो है हमें वहां से नियमित रूप से नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अभी लास्ट वीक ही DG स्तर से सप्लाई शुरू हो गई है और अभी लगभग हमें 1000 के आसपास जो है वहां DG स्तर से भी हमें जो ARV मिल गए हैं और जो हमारे जो वेंडर जो पहले सप्लाई नहीं कर पा रहे थे वो भी अब रेगुलर हमें सप्लाई वो कर रहे हैं।
1: पिथौरगढ़ में नंदा देवी ईस्ट ट्रैकिंग और मिलम ग्लेशियर अभियानक लीजिए चयनित 26 सदस्यीय छात्र छात्राओं को दल जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगईल हरी झंडी दिखावे रवाना करो। यो मौके पर जिलाधिकारी को कि पिथौरगढ़ जिले साहसिक पर्यटन की अपार संभावना भरी छू। उनल को कि यस प्रकारक ट्रैकिंग अभियान युवाओं में साहस, अनुशासन, आत्मविश्वास और सामूहिक भावना को विकास करनन। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार आज। उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी को देहरादून में निधन। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दगड़ अनेक नेताओं शोक व्यक्त करो। चार धाम यात्रा के लिए भी श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। एक महीनक यात्रा में एल जाने लगभग 16 लाख श्रद्धालुओं करीन दर्शन। बाक्सर में उद्यान विभागल कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करो। किसानों के सूक्ष्म सिंचाई और आधुनिक बागवानी की तकनीकों की दी गई जानकारी। और राज्य में गर्मी का असर बढ़ो। मौसम विभागल हरिद्वार और देहरादून दगड़ उत्तरकाशी आसपास तक जगन में 21 मई जाने लू चलन की संभावना जताई। यह दगड़ ही कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों को यो अंक समाप्त हूँ। नमस्कार।

0: नमस्कार।
1: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म प्रेम कहानी से लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला और अंतिम।

0: क्या कहेगा।
1: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से फिल्म संगीत के बाद श्रोताओं प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम RNU देहरादून की प्रस्तुति सप्ताह सार।
2: नमस्कार, क्षेत्रीय समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम सप्ताह सार में मैं नीता कांडपाल आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लेकर आते हैं सप्ताह भर की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो श्रोताओं, शुरू करते हैं कार्यक्रम सप्ताह सार। श्रोताओं, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय का एक दल 13 मई से उत्तराखंड में प्राकृतिक रूप से उगाए जाने वाले उत्पादों का अध्ययन करेगा। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार

तक पहुंचाने की योजना तैयार करना है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर वाणिज्य मंत्रालय की टीम को गढ़वाल क्षेत्र के दौरे के लिए आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि ये दल पहाड़ में उगाए जाने वाले मिलेट्स, हल्दी, जड़ी बूटियों और अन्य प्राकृतिक उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की संभावनाओं पर काम करेगा। इसके तहत किसानों से सीधे संपर्क करने के साथ उत्पादों की जियो टैगिंग और ब्रांडिंग की योजना भी तैयार की जाएगी। अनिल बलूनी ने कहा कि इस पहल से किसानों को लाभ मिलेगा और पहाड़ की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। केंद्र सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो 13 मई से प्रभावित हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लेटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी करने से बचने की अपील की थी। श्रोताओं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अपवंचित व कमजोर वर्ग के बच्चों के दाखिले में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस सप्ताह उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने भटवाड़ी विकास खंड के अपवंचित व कमजोर वर्ग के बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ सीधा संवाद कर शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का लाभ हर पात्र बच्चे तक पहुंचना सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी बच्चा आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने 23 आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कूल बैग, ट्रैक सूट और जूते सहित अन्य आवश्यक शिक्षण सामग्री वितरित की। श्रोताओं, प्रदेश सरकार की ओर से ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न स्वरोजगार एवं आजीविका संवर्धन योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष सहायतित ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता एवं स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसी क्रम में चमोली जिले के ग्राम खेती निवासी सुनीता देवी ग्रामोत्थान परियोजना का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बनी है। वे आदि बद्री CLF से जुड़ी हुई है तथा जय माँ भगवती ग्राम संगठन के अंतर्गत उमा समूह की सक्रिय सदस्य है। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 में परियोजना के सहयोग से एक छोटी दुकान की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें 75,000 रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वर्तमान में श्रीमती सुनीता प्रतिमाह लगभग 12,000 रूपए तक की आय अर्जित कर रही हैं। इस आय से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है तथा वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। श्रोताओ, सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई है। ये प्रतिबंध अमेरिका, यूरोप संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। श्रोताओं, देहरादून जिले के विकासखंड विकास नगर के ग्राम सोरना डोभरी की रहने वाली महिला उद्यमी कल्पना बिष्ट आज ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की नई पहचान बनकर उभरी हैं। राज्य सरकार की ग्रामोत्थान परियोजना और स्वयं सहायता समूह के सहयोग से उन्होंने स्वाभिमान महिला बेकरी यूनिट स्थापित कर न केवल अपना व्यवसाय खड़ा किया, बल्कि स्थानीय महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया अवसर भी प्रदान किया। वर्ष 2024-25 में स्थापित बेकरी में मंडवे के बिस्किट, गुड़ मक्खन बिस्किट, हनी ओट्स बिस्किट और मिल्क रस और गोलगप्पे जैसे उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इन उत्पादों की खासियत स्थानीय स्वाद, पौष्टिकता और पारंपरिक विधि है। श्रोताओं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। इस सप्ताह 15 मई को नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली NEET UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CVT माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा। श्रोताओं, अब बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की तरफ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा

0: बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। श्रोताओं, पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी आशीष भटगई की पहल हेलो हेल्प पिथौरागढ़ को लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। पिछले सप्ताह शुरू की गई इस शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म पर पहले ही दिन 57 शिकायतें दर्ज की गई। प्रशासन के अनुसार प्राप्त शिकायतों को रियल टाइम में संबंधित विभागों को भेजा जा रहा है ताकि समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर दिनेश वर्मा ने बताया कि लोग लगातार कॉल कर अपनी समस्याएं दर्ज करा रहे हैं और नई व्यवस्था को लेकर उत्साह दिखा रहे हैं। हेलो हेल्प पिथौरागढ़ कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित रहेगा। इसके अलावा नागरिक व्हाट्सएप और SMS के माध्यम से भी अपनी शिकायतें भेज सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि ये पहल जन सुनवाई व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। श्रोताओं, हरिद्वार में आगामी कुंभ मेला 2027 को सुव्यवस्थित व समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए मेला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुगमता और सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता देते हुए इससे जुड़ी योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है। श्रोताओ, इसी क्रम में मेलाधिकारी सोनिका सभी तैयारियों पर लगातार नजर बनाए रखने के साथ ही रोजाना अधिकारियों की टीम के साथ विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर योजनाओं की प्रगति का जायजा ले रही है। साथ ही जिन क्षेत्रों में अतिरिक्त कार्य किए जाने आवश्यक हैं, उनकी भी समीक्षा कर नई योजनाओं को तैयार कराने और उन्हें समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित कराने में जुटी हैं। श्रोता, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आत्मनिर्भर उत्तराखंड एवं स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के संकल्प को पौड़ी गढ़वाल में नई दिशा मिल रही है। इसी कड़ी में ग्राम्य विकास विभाग की ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत विकासखंड पौड़ी में संकेत स्वायत्त सहकारिता द्वारा स्थापित हिलांस मशरूम इकाई में बेमौसमी बटन मशरूम के सफल उत्पादन की शुरुआत हो गई है। ये पहल ग्रामीण आजीविका संवर्धन, महिला सशक्तिकरण एवं स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। ग्रामोत्थान परियोजना प्रबंधक कुलदीप बिष्ट ने बताया कि प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों तथा ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करने पर जोर दे रही है। ग्रामोत्थान परियोजना के सहयोग से स्थापित ये यूनिट स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग का सफल उदाहरण बनकर सामने आई है। उन्होंने बताया कि परियोजना के अंतर्गत ग्राम्य विकास विभाग के एक अनुपयोगी भवन का पुनर्विकास कर उसे आधुनिक मशरूम उत्पादन इकाई के रूप में विकसित किया गया है। यूनिट में कुल 2 उत्पादन इकाइयां स्थापित की गई हैं। प्रथम यूनिट में 500 बटन मशरूम बैग लगाए गए थे, जिनसे अब सफलतापूर्वक उत्पादन शुरू हो चुका है। श्रोता, अब बढ़ते हैं अगली और अंतिम खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने कहा कि CBSE की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं के परिणामों पर नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताई है। सचिव ने बताया कि CBSE ने इस वर्ष ऐसी प्रणाली लागू की है जिससे मूल्यांकन में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। सचिव ने कहा कि CBSE ने पुनर्मूल्यांकन शुल्क कम कर दिया है। श्रोताओ, इसके साथ ही सप्ताह सार का ये अंक आज यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
1: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजे हैं। अब आप सुनेंगे सुमित्रा नंदन पंत जयंती की पूर्व संध्या पर संस्कृत वार्ता। महाकवि सुमित्रा नंदन पंतस्य व्यक्तित्वं कृतित्वं च, ये वार्ता प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर राम विनय सिंह।
2: महाकवेः सुमित्रानन्दन पन्तस्य व्यक्तित्वं कृतित्वं च। हिंदी साहित्यस्य छायावाद युगस्य कवि चतुष्टये महाकवेः सुमित्रानन्दन पन्तस्य नाम समादरपूर्वकं गृह्यते समीक्षकैः आचार्यैः कविभिश्च। धवल तुषार संभार भरि

अनुस्मृतिम वर्णयति भाव सरस शैल्या। कवि जीवन से पहले भी मुझे याद है, मैं घंटों एकांत में बैठा प्राकृतिक दृश्यों को एक टक देखा करता था और कोई अज्ञात आकर्षण मेरे भीतर एक अव्यक्त सौंदर्य का जाल बुनकर मेरी चेतना को तन्मय कर देता था। जब कभी मैं आंखें मूंद कर लेटता था तो वह दृश्य पट चुपचाप मेरी आंखों के सामने घूमा करता था। अब मैं सोचता हूं कि क्षितिज में सुदूर तक फैली एक के ऊपर एक उठी ये हरित नील धूमिल कूर्मांचल की छायांकित पर्वत श्रेणियां, जो अपने शिखरों पर रजत मुकुट हिमाचल को धारण की हुई है और अपनी ऊंचाई से आकाश की अवाक नीलिमा को और भी ऊपर उठाई हुई है, किसी भी मनुष्य को अपने महान नीरव सम्मोहन के आश्चर्य में डुबाकर कुछ काल के लिए भुला सकती है। और यह शायद पर्वत प्रांत के वातावरण ही का प्रभाव है कि मेरे भीतर विश्व और जीवन के प्रति एक गंभीर आश्चर्य की भावना पर्वत ही की तरह निश्चल रूप से अवस्थित है। एवं विज्ञायते यदस्मिन् कवि व्यक्तित्वे गांभीर्यम् शीतलत्वं स्थैर्यं धवलत्वं वा यत् किमपि वैशिष्ट्यं लक्ष्यते तत् सर्वं हिमालयस्य एव हेतुत्वात्। वास्तव रूपेण पंत कवेः मौलिकी चेतना सौंदर्यात्मिका एव। एषैव चेतना गुंजन काव्ये आत्ममंगलं प्रत्यभिमुखी भवति ज्योत्स्नायाञ्च लोकमंगलं प्रति। कविरेव कौति स्वयं। वही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप हृदय में बनता प्रणय अपार लोचनों में लावण्य अनूप लोक सेवा में शिव अविकार। कविवर सुमित्रानंदन पंतस्य काव्येषु भावानां संगुम्फनम् शब्दानां अनुरणनं च सहृदय हृदयेषु विलक्षणमेव काव्य जागरां जनयति। दृष्टांत रूपे कानिचित पद्यानि अवलोकनीयानि सन्ति। कनक छाया में जबकि सकाल खोलती कलिका उर के द्वार सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृगन मौन। भावलोके स्वर सरिति एतत् शब्द संतरणम निश्चयमेव माधुर्यस्य नूतनं वितानं तनोति। कल्पना में है कसक्ति वेदना अश्रु में जीता सिसकता गान है शून्य आहों में सुरीले छंद हैं मधुर लय का क्या कहीं अवसान है। एवमेव विविध प्रतिमानैः बिंब प्रतीकैर्वा कविवरेण्यः पंत महाभागः सर्वथा नवीनं व्यंजनं कुरुते येनास्य कल्पना केवलं व्योम विरुधिव न प्रतिभाति प्रत्युत अवनीरुहेव सौंदर्य सोदरत्वं पुष्णाति। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेश अटल कुछ चिंता पर। अचल के जब वे विमल विचार अवन से उठ उठ कर ऊपर विपुल व्यापकता में अविकार लीन हो जाते थे सत्वर। विहंगम सा बैठा गिरि पर सुहाता था विशाल अंबर धीरे धीरे संशय से उठ बढ़ अपयश से शीघ्र अछोर नभ के उर में उमड़ मोह से फैल लालसा से निशिभोर फैल लालसा से निशिभोर। सुमित्रानंदन पंत कवेः काव्यस्य माधुरीं पायम पायम सहृदयानां मनांसि मत्तायन्ते भृशमेव। अस्य कवेः कल्पना चंद्रिकायाः रंध्र नेपथ्यात् नभस्नेह श्रवणे दिग्गोपसंभाषणं संकेतयन्तीव विभाति। नव पल्लवेषु प्रत्यग्र वासंतिकरसं संचारयन्तीव जीर्ण पर्णपातेऽपि च विस्तीर्ण वसन्तं रचयन्तीव चकास्ति। केचन प्रतिपक्षिणो वदन्ति कविवरस्य पंतस्य दर्शन विभ्रांति विषये यत् पंत काव्ये विचार दौर्बल्यम जीवन दर्शनस्य च अस्थिरा परिवर्तनशीलता बाधते। यद्यपि तयेव प्रकृति परकत्वं मानववादं गांधीवादं युग धर्मस्य इंद्रात्मिक द्वंद्वात्मिकां प्रवृत्तिं भौतिकवादं अरविंद दर्शनं च मुक्त कंठेनैव प्रशंसन्ति तथापि दिशा वैविध्यवशात् ते इतस्ततः अटन्तः प्रतीयन्ते। मन्मतेन तु महाकविः सुमित्रानंदन पंतः प्रकृतेः साक्षात् प्रतिरूप

0: एव वर्तते। अस्य कवेः काव्यानि निपीय भावुकाः प्रकृतिपरायणाः समाधिस्थाः जायन्ते। जीवनदर्शनस्य प्रतिपादिका एताः पङ्क्तयः विलोकयन्तु तावत्। यः साँझ उषाका आंगन आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनन रे इस मानव जीवन का, चिरहास अश्रुमय आनन रे इस मानव जीवन का। नित्य जग इत्याख्यायाम रचनायाम यथार्थाद्वैतवादम प्रथयन कवि कथयति भावभर शैल्याम। एक ही तो असीम उल्लास विश्व में पाता विविधा भास, वही उर उर में प्रेम उच्छ्वास काव्य में रस कुसुमों में वास। वही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप हृदय में बनता प्रणय अपार, लोचनों में लावण्य अनूप लोक सेवा में शिव अविकार, लोक सेवा में शिव अविकार। कवि वरेण्यस्य सुमित्रानंदन पंत महोदयस्य विचारावगाहिनी प्रबुद्ध बौद्धिकता पूर्वापरम संयोजयति सर्वत्र। कोकिलं प्रति संबोध्य कवि प्रतिपलं नवाब बोधम कामयते। गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। ध्वंस भ्रंश जग के जड़ बंधन, पावक पग धर आवे नूतन। हो पल्लवित नवल मानवपन, हो पल्लवित नवल मानवपन। संस्कृत साहित्य से महाकवि माघा कथयति, क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः। नवाभिव्यञ्जने यदस्ति काव्यत्वं तदेव सर्वदा अन्वेषणीयमिति धिया पन्तोऽपि महाकविः सर्वत्रैव प्रकृतिव्याजेनापि युगचेतसि एव प्रविशति। समयवक्षसि निर्भयलेखन्या लिखति सुकुमारः कविः लाक्षणिकवृत्त्या। तुम नृशंस नृप से जगति पर चढ़ अनियंत्रित, करते हो संस्कृति को उत्पीड़ित पद मर्दित। नग्न नगर कर भग्न भवन प्रतिमाएं खंडित, हर लेते हो विभव कला कौशल चिर संचित। आधि व्याधि बहुवृष्टि वात उत्पात अमंगल, आधि व्याधि बहुवृष्टि वात उत्पात अमंगल। वहनी बाढ़ भूकंप तुम्हारे विपुल सैन्य दल, वहनी बाढ़ भूकंप तुम्हारे विपुल सैन्य दल। सुमित्रानंदन पंत कवेः काव्य वैशिष्ट्यम् प्रतिपादयन हिंदी साहित्य से महाकविना महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महोदय नालेखी स्वकीय मतवाला नाम के हिंदी मुखपत्रे 3 मई 1924 तमे वर्षे यत खड़ी बोली की जिस कविता का प्रचार किया गया था, जिसके प्रचारकों और कवियों को कितनी ही गालियां खानी पड़ी थीं, उसका स्वाभाविक कवि अब इतने दिनों बाद आया है और हिंदी का वह गौरव कुसुम सुमित्रानंदन पंत है। अन्ते विरमामि महाकवेः सुमित्रानंदन पंतस्येव वाण्या प्रणमन्नहं हिमालय कविमिदानीं बद्धांजलिः। शिखर शिखर ऊपर उठ तुमने, मानव आत्मा कर दी ज्योतित। शिखर शिखर ऊपर उठ तुमने, मानव आत्मा कर दी ज्योतित। हे असीम आत्मानुभूति में लीन, ज्योत श्रृंगों के भूभृत। हे असीम आत्मानुभूति में लीन, ज्योत श्रृंगों के भूभृत। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे थे सुमित्रानंदन पंत जयंती की पूर्व संध्या पर संस्कृत वार्ता। विषय था महाकवि सुमित्रानंदन पंतस्य व्यक्तित्वम कृतित्वम च। वार्ताकार थे डॉक्टर राम विनय सिंह। FM 100.5 मेगाहर्ज पर ये आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:14 और 52 सेकंड हुए हैं। अब आप सुनेंगे गजलें विविध कलाकारों से, कार्यक्रम सुगम संगीत में।

FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

ये गीत आप सुन रहे थे पत्थर के सनम फिल्म से, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म आंधी फिल्म से, जिसे लिखा है गुलजार ने, संगीत आर डी बर्मन का और आवाज़ है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी देहरादून से फिल्म संगीत के बाद श्रोताओ अब प्रस्तुत है आकाशवाणी से दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
2: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आंग्यो बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक $350 अरब का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें $100 अरब का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की यह दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade, attends 3rd India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark,

FM 100.5 MHz पर, ये आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 और 10 सेकंड हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम साहित्य की

0: नमस्कार, अभिवादन आप सभी का साहित्यिकी के आज के अंक में। आज के इस अंक में हिंदी कहानी, हिंदी वार्ता और हिंदी काव्य पाठ हमने शामिल किया है। वार्ता लेकर शामिल होंगे डॉक्टर अमरीश चमोली, तो कहानी होगी श्री जितेंद्र ठाकुर की और काव्य पाठ डॉक्टर नगमा इरफान का। आइए शुरुआत करते हैं काव्य पाठ से। प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर नगमा इरफान।
1: मेरी गजल का उन्वान है बीते दौर की शायराना रूह, पुराने नफीस लोग लफ्जों का खजाना रखते थे, लफ्जों का खजाना रखते थे, किताबों वाला इश्क रखते थे, लफ्जों का खजाना रखते थे, किताबों वाला इश्क रखते थे, नजरें तिरछी शराफत की हदों में भी, नजरें तिरछी शराफत की हदों में भी महबूब हम ख्याल नजरिया रखते थे। वो लोग अब नहीं रहे जो तलखियों के बाद भी, वो लोग अब नहीं रहे जो तलखियों के बाद भी दुश्मनों से भी अदब और दुआ सलाम रखते थे। वो लोग अब नहीं रहे जो तलखियों के बाद भी दुश्मनों से भी अदब और दुआ सलाम रखते थे। रिश्तों में अखलाक मोहब्बत में एहतराम का फन था उनका, हम फसलों से भी वो सदियों की तहजीब का एहतराम रखते थे, हम फसलों से भी वो सदियों की तहजीब का एहतराम रखते थे। वो पुराने नफीस लोग अब नहीं रहे। पुरानी रिवायतों में बसी सादगी इश्क का वो नूर ए हयात रखते थे। अपने जुनू में रूह की महक और कलम का वकार रखते थे। वो पुराने नफीस लोग अब नहीं रहे। तहजीब की महक जिनमें सदियों से बसती थी वो बज़्म-ए-ज़िंदगी में रूह का जुगनू धियां रखते थे। वो पुराने नफीस लोग अब नहीं रहे। मेरी अगली गजल का उन्वान है जमीर। ये जमीर है साहब कांपता जरूर है कभी गुनाहों से पहले कभी गुनाहों के बाद। अपने अमालों पे निगाहें रखिए जनाब। इसका अजर मिलता जरूर है कभी जिंदगी के बाद। ये जमीर है साहब कांपता जरूर है कभी गुनाहों से पहले कभी गुनाहों के बाद। मेरी नेक्स्ट गजल का उन्वान है आवाज़-ए-दिल की आवाज़। वो वर्क वर्क वो पत्ता पत्ता चलता रहा उसकी जिंदगी बेजार थी वो हर रात जलता रहा बुझता रहा। वो वर्क वर्क वो पत्ता पत्ता चलता रहा। उसके दामन में थी खुशबू किसी और के ख्वाब की। वो अपने आप से लड़ता रहा खोता रहा। वो वर्क वर्क वो पत्ता पत्ता चलता रहा। नजरों से तलाशता रहा उस शख्स के चेहरे को जो कभी उसकी आंखों में धुंध बनकर बसता रहा मिटता रहा। ये दास्तां है उस बेकरार दिल की मोहब्बत की जो हर शाम तड़पता रहा हर सुबह संभलता रहा, वो वर्क वर्क वो पत्ता पत्ता चलता रहा। कभी महफिलों में हंसकर, कभी महफिलों में हंसकर, तो कभी तन्हाई में रोकर, कभी महफिलों में हंसकर, तो कभी तन्हाई में रोकर, वो घुटता रहा और खामोशी के पर्दों में छिपता रहा। वो घुटता रहा और खामोशी के पर्दों में छिपता रहा। वो वर्क वर्क वो पत्ता पत्ता चलता रहा। हर आहट पे दिल मचलता रहा, हर आहट पे दिल मचलता रहा, किसी पुरानी याद सा। हर आहट पे दिल मचलता रहा, किसी पुरानी याद सा। वो खामोश सा सिमटता रहा, मगर ख्वाबों को बुनता रहा। वो खामोश सा सिमटता रहा, मगर ख्वाबों को बुनता रहा। वो वर्क वर्क वो पत्ता पत्ता चलता रहा। जिंदगी ने दी थी जो चोट उसे ही सहलाता रहा। वो अपने घावों को छिपाता रहा और मुस्कुराता रहा। वो अपने घावों को छिपाता रहा और मुस्कुराता रहा। वो वर्क वर्क वो पत्ता पत्ता चलता रहा। वक्त की रेत पर लिखे थे उसने जो किस्से मोहब्बत के। वक्त की रेत पर लिखे थे उसने जो किस्से मोहब्बत के। लहरों का जोर आया तो हर लफ्ज बिखरता रहा बिखरता रहा। लहरों का जोर आया तो हर लफ्ज बिखरता रहा। वो वर्क वर्क वो पत्ता पत्ता चलता रहा। उसके दामन में थी खुशबुए इलाही की तलाश। उसके दामन में थी खुशबुए इलाही की तलाश। मस्जिद दिल में नमाज पढ़ता रहा, दुआ करता रहा। उसके दामन में थी खुशबुए इलाही की तलाश। वो मस्जिद दिल में नमाज पढ़ता रहा, दुआ करता रहा। वो वर्क वर्क पत्ता पत्ता चलता रहा। नजारों में तलाशता रहा जिस चेहरे को। वो तो खुद का नूर था। पाए बिना ही खोता रहा बिखरता रहा। वो वर्क वर्क पत्ता पत्ता चलता रहा। मेरी अगली गजल का उनवान है लुत्फ जिंदगी। ये जिंदगी गुलजार है, इसका लुत्फ उठाइए। ये जिंदगी गुलजार है, इसका लुत्फ उठाइए। इस पतंग के मालिक हैं आप, इसको खुले आसमान में उड़ाइए। ये जिंदगी गुलजार है, इसका लुत्फ उठाइए। क्यों कुरेदते रहते हैं इन माजी के जख्मों को। जख्मों की मरम्मत कीजिए इन पे मरहम लगाइए। ये जिंदगी गुलजार है, इसका लुत्फ उठाइए। कुदरत ने दिए हैं हमको कितने खजाने। पिंजरों को खोलिए, इन पंखों से खुले आसमान में उड़ान लगाइए। पिंजरों को खोलिए, इन पंखों से खुले आसमान में उड़ान लगाइए। ये जिंदगी गुलजार है, इसका लुत्फ उठाइए। ये जिंदगी गुलजार है, इसका लुत्फ उठाइए।
0: अभी आपने डॉक्टर नगमा इरफान से उनका काव्य पाठ सुना। साहित्यिकी के इस अंक का अगला अध्याय वार्ता का प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर अमरीश चमोली। आइए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में मानवता का संगम विषय पर वार्ता सुनते हैं।
2: हिंदी साहित्य को अपनी साधना, प्रतिभा और वैदुष्य से समृद्ध करने वाले मनीषियों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम चिर स्मरणीय है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त सन 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक स्थान में हुआ था। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्कृत साहित्य में शास्त्री एवं ज्योतिष विषय में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। आचार्य जी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा के विद्वान थे। आप शांति निकेतन में हिंदी के अध्यापक रहे। कविंद्र रविंद्र के साहचर्य से उन्हें यह एहसास हुआ कि मनुष्य को केवल जाति, संप्रदाय, देश व काल जैसी संकुचित सीमाओं से ऊपर उठाना ही पर्याप्त नहीं है, उसे उदात्त गुणों से जोड़ना भी आवश्यक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का चिंतन और लेखन अनवरत चलता रहा। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने आपको डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। सन 1950 में आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए आपको सन 1957 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1960 से 67 के बीच में आप पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में भारतीय सांस्कृतिक चेतना के अग्रदूत, महान साहित्य सेवी, प्रख्यात निबंधकार और आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आचार्य द्विवेदी के साहित्य के मुख्य विषय भारत की संस्कृति, साहित्य और इतिहास तथा दर्शन रहे हैं। उनके निबंधों में विचारों की गहराई, नूतनता और विश्लेषण की सूक्ष्मता है। आपकी भाषा प्रांजल, संस्कृत निष्ठ और व्यावहारिक खड़ी बोली है। आचार्य द्विवेदी के साहित्य का मूल आधार मानवता है। उनके अनुसार मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। उनके साहित्य में भारतीय जीवन मूल्यों का संगम दिखाई देता है, जो संकीर्णता से ऊपर उठकर प्रेम और करुणा की प्रतिष्ठा करता है। हिंदी साहित्य की भूमिका और नाथ संप्रदाय के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय संस्कृति की समाहार शक्ति और साझी विरासत इसे वैभव प्रदान करते हैं। आलोचना के क्षेत्र में कबीर पर लिखकर उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दृष्टि दी। कबीर स्वयं में मानवता के प्रकाश स्तंभ हैं, जिन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया और मनुष्य मात्र की समानता और एकता का संदेश दिया। कबीर का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने बताया कि कबीर का महत्व सबसे अधिक इस बात से है कि उन्होंने मनुष्य मनुष्य के बीच रागात्मक संबंध का उद्घाटन किया। कबीर के भाषागत वैशिष्ट्य पर वे कहते हैं, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में कहलवा दिया। आचार्य द्विवेदी स्पष्टतः कहते हैं, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गति, दीनता और परमुखापेक्षता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। आचार्य द्विवेदी भक्ति आंदोलन को बाहरी आक्रमणों और निराशा की उपज के रूप में नहीं, वरन भारतीय चिंतन धारा के स्वाभाविक विकास के रूप में देखते हैं। विचार और वितर्क पुस्तक के एक निबंध में उन्होंने स्वीकार किया कि हमारा परम लक्ष्य मनुष्य ही है। उनका मानना था कि वस्तु जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु उसके साथ मानसिक उदारता, बौद्धिक निर्मलता और चित्त की आह्लादकता भी आवश्यक है। विभिन्न युगों के साहित्यिक साधनों के मूल में कोई न कोई व्यापक मानवीय विश्वास होता है। आधुनिक युग का यह विश्वास मानवतावाद है। वे कहते हैं, मनुष्य थका है पर रुका नहीं है, वह बढ़ता जा रहा है। इतिहास के अवशेष उसकी विजय यात्रा के पदचिन्ह हैं। आचार्य द्विवेदी ने अपने साहित्य में अतीत से सामग्री लेकर मनुष्य की समसामयिक और अनागत समस्याओं को उभार कर व्यापक समाधान देने का प्रयत्न किया है। उनके उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा में नारी के प्रति सम्मान और प्रेम की पवित्रता को दिखाया गया है। इस उपन्यास में उन्होंने संस्कृत कवि बाणभट्ट के जीवन को आधार बनाकर कादंबरी और हर्षचरित के संदर्भों के साथ एक काल्पनिक कथा बुनी है। उपन्यास में बाणभट्ट, भट्टिनी और निपुणिका के बीच अनोखे प्रेम त्रिकोण को दिखाया गया है। यह प्रेम शारीरिक नहीं, बल्कि मित्रता, आत्मसमर्पण और त्याग पर आधारित है। जहाँ निपुणिका बाणभट्ट के लिए अपने प्रेम का उत्सर्ग कर देती है। आचार्य द्विवेदी अपने उपन्यास पुनर्नवा के सूत्र मृच्छकटिकम से अवश्य लेते हैं, किंतु बाकी सब उनके उर्वर मस्तिष्क की कल्पना है। पुनर्नवा में प्रेम, नैतिकता और समाज द्वारा झूठे लांछनों के बीच जूझते मनुष्यों की मार्मिक कहानी है। द्विवेदी जी साहित्य को मनुष्य का हित साधन मानते हैं। वे कला कला के लिए के सिद्धांत का समर्थन नहीं करते, बल्कि प्राचीन रूढ़ियों एवं विगलित परंपराओं का परित्याग करते हुए नूतन और मानवीय संदर्भ में अतीत का पुनर्चित्रण करते हैं। लोक चिंता की गहरी समझ ने द्विवेदी जी के इतिहास बोध को मानवतावादी आधार प्रदान किया है, जिसकी सहायता से वे साहित्यिक कृतियों में अभिव्यक्त मनुष्य और उसकी चेतना के विकास को सही संदर्भ में देख पाए हैं। श्री रामदास मिश्र ने द्विवेदी जी के बारे में कहा है, हिंदी आलोचना के इतिहास में मिश्र बंधु आरंभिक विकास के प्रतीक हैं, शुक्ल जी मौलिकता और गंभीरता के वाहक हैं, नंद दुलारे वाजपेयी आधुनिकता के अग्रदूत हैं, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानवता के संपादक हैं। साहित्य के विविध वादों पर उन्होंने मानवतावादी दृष्टि से विचार किया है। उनके विचार से आदर्श की ओर झुकाव ही मनुष्य की अपनी विशेषता है। मनुष्य स्वभाव से ऊर्ध्वगामी होता है। मनुष्य ने अपनी तपस्या के बल पर ही परिस्थितियों पर विजय पाई है, यही उसका आदर्श है। द्विवेदी जी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, साहित्य से उत्कर्ष या अपकर्ष के लिए

0: निर्णय की एकमात्र कसौटी यही हो सकती है कि वह मनुष्य का हित साधन करता है या नहीं। साहित्य की रचना में कलात्मक साधना का बहुत महत्व है। उनका साहित्य ललित योजना के कारण भी महत्वपूर्ण बना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बड़ी से बड़ी बात और गहरी से गहरी अनुभूति को सहज आकार देने में निपुण हैं। उनके समकालीन लेखकों में प्रेमचंद को छोड़कर मनुष्य के इतने समीप कोई भी नहीं पहुंच सका है। मानव की साहित्य में जैसी प्रतिष्ठा वे कर सके वैसी कोई अन्य न कर सका। प्रेमचंद जी ने वंचित वर्ग की वेदना को करुणा कलित स्वर दिया तो द्विवेदी जी ने मनुष्य मात्र के महत्व, उसके दीर्घकालीन संघर्ष और विजय यात्रा की उमंग और उल्लास को वाणी दी। महामनीषी आचार्य जी भारतीय संस्कृति के प्रतीक और सांस्कृतिक गौरव के व्याख्याता थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचक तथा उपन्यासकार के रूप में तो अद्वितीय हैं ही, निबंधकार के रूप में भी उनका सृजन उतना ही महत्वपूर्ण है। अपने निबंधों, खासकर ललित निबंधों में द्विवेदी जी आद्यंत कवि हैं। द्विवेदी जी के निबंधों के मूल तत्व हैं अकुंठित भावोद्रेक, अप्रस्तुतों के भावोचित व्यंजक प्रयोग, सजीव बिंब और सहज भाषा शैली। यही कारण है कि उनके निबंधों से सहृदय पाठक उनकी कल्पनाशील भाव प्रवणता से एकात्म होते हुए एक सारस्वत यात्रा का आनंद प्राप्त करता है। पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ने कहा है कि उनके निबंधों में उनका बहुश्रुत और कथा कौतुकी व्यक्तित्व बराबर अंतर्ग्रथित रहता है, जो बालकों की तरह मात्र कौतुकी ही नहीं महाकाल की लीला से उन्मथित भी है। उन्हीं के शब्दों में द्विवेदी जी के निबंधों का संयोजन तंत्र उनके इसी व्यक्तित्व का सहज परिणाम है। इसीलिए वह सायास ढला नहीं लगता और इसी के सहारे साधारण सा बिंब भी जाने कितनी वस्तुओं को, कितनी विचारधाराओं को जोड़ने का माध्यम बन जाता है। उनके निबंध प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के जीवन संघर्ष, सहनशीलता और अजेय शक्ति का संदेश देते हैं। मानव की जिजीविषा और मानवता ही उसे पशु से अलग और श्रेष्ठ बनाती है। उनके निबंध कुटज में उनकी भाषा एवं भावों का वैभव दृष्टव्य है। जीना चाहते हो, कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो। वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल लो। आकाश को चूम कर, अवकाश की लहरी में झूम कर उल्लास खींच लो। कुटज का यही उपदेश है। भित्त्वा पाषाण पिठरम, छित्त्वा प्राभंजनिम व्यथाम, पीत्वा पाताल पानीयम, कुटजस चुंबते नभा। कुटज मनुष्य की धीरता, वीरता का और जीवनी शक्ति का प्रतीक है। द्विवेदी जी का भाषा पर असाधारण अधिकार है। उनके वाक्यों में कसाव है और शैली में पर्याप्त मौलिकता है। उनके ललित निबंध गद्य गीत का आनंद देते हैं। उनमें भारतीय दर्शन, धर्मशास्त्र, ज्योतिष एवं पुराणों का सार भी भरा रहता है। उनके निबंधों में तार्किकता के साथ आधुनिकता, वैज्ञानिकता एवं भारतीयता का सफल निर्वाह हुआ है। निष्कर्षतः आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में मानवता का संगम सर्वत्र दिखाई देता है। हिंदी साहित्य में उनका अप्रतिम स्थान है। पुण्यतिथि पर उनको सत सत नमन।
1: अभी आपने डॉक्टर अमरीश चमोली से उनकी ये वार्ता सुनी। आइए अब सुनते हैं श्री जितेंद्र ठाकुर की कहानी अंतराल।
2: नन्ना रो रहा है। मिस्टर शर्मा नहीं चाहते कि नन्ने पर हाथ उठाएं। नन्ने की टपटपाती आंखें उनमें अपराध बोध भर देती हैं, पर जब स्वयं को जज नहीं कर पाते तो हाथ उठ ही जाता। हाथ उठने के कारणों का विश्लेषण करते हुए मिस्टर शर्मा शर्मिंदा हो गए। स्वयं ही स्वयं से छिपाने की चेष्टा में नजरें घुमा ली और टिक टिक करती घड़ी को बेवजह घूरने लगे। नन्ना हर बात में दादा की नकल करने लगा है। नकल ना भी करता हो पर उसकी आदतें दादा की आदतों से मिलने लगी हैं। उन्हीं की तरह ऊंची आवाज में बोलना और बाहें लहराकर चलना, हद तो यह कि खाने पीने की रुचियां भी दादा पर ही गई हैं। दादा की आयु गांव में बीती है, खान पान भी उसी के अनुसार ढल गया है। पर नन्ना उन्हीं आदतों के कारण कई कई बार मिस्टर शर्मा को उनके आला हाकिम मित्रों के सामने कठिनाई में डाल चुका है। चॉकलेट और पेस्ट्री दिलाओ तो भुट्टे और गंडेरी की मांग करता है। कोल्ड ड्रिंक की बात करो तो लस्सी का जनून सवार हो जाता है। चने की ठेली दिखी नहीं

की मांग शुरू हो गई समझो। शाम को नाश्ते में जलेबी चाहिए और वह भी नुक्कड़ वाले चिकट हलवाई की। बिल्कुल गांव वाली फूड हैबिट्स हैं आपके बेटे की। मिस्टर जायसवाल ने बात भले ही साधारण लहजे में कही थी पर मिस्टर शर्मा को नश्तर से चुभ गई। दादा तो गांव में रहते हैं, निभ रही है, पर शहर की सोसाइटी में ये आदतें कैसे निभेंगी। गांव में भले ही आज भी उन्हें कोई पंडित रतनलाल कह दे पर शहर में वह मिस्टर शर्मा हैं, असिस्टेंट कमिश्नर मिस्टर शर्मा। पर नन्ना तो शहर में ही जन्मा, शहर में ही पला बड़ा हुआ और अब एक अंग्रेजी दाँ स्कूल में पढ़ रहा है। पर आदतें पूरी दादा पर ही गई हैं। जहन में उभरते गंवारू शब्द को उन्होंने यत्न करके अपनी सोच से निकाल दिया। अपने पिता के लिए ऐसा सोचते हुए उन्हें शर्म अनुभव हुई थी। कहीं अलग बंगला मिला तो शायद मिस्टर शर्मा को नन्हे की ये आदतें अधिक तकलीफ न दें। पर ऑफिसर्स फ्लैट में बच्चों की हरकतों को उनके माँ बाप के सुसंस्कृत या अपसंस्कृत होने का पैमाना माना जाता है। नन्हे पर हंसती आँखों के व्यंग्य कभी कभी मिस्टर शर्मा को छील देते हैं। इधर आओ, मिस्टर शर्मा ने नन्हे को पुचकारा। नन्हा रूठा रहा पर सहमा हुआ चला आया। वह पिता की प्रकृति को जानता है। पुचकारने के लिए बुलाएंगे, ना गया तो फिर डांट सहनी पड़ेगी। बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, धीमे बोला करो, पर तुम कितनी जोर से बोलते हो। मिस्टर शर्मा ने नन्ना के गालों पर टपक आए आंसू पहुंच दिए। नन्ना चुप रहा। जानते हो इतनी जोर से कौन बोलता है? कौन? गंवार लोग। गंवार कौन होते हैं? नन्ने को पिता की पुचकार ने साहसी बना दिया था। वे लोग जिन्हें बोलने की तमीज नहीं होती। पिता गांव में ही रहते हैं, साल दो साल में कभी एक दो महीने के लिए शहर चले आते हैं। परिवार में वह एक दो महीने वर्षों की तरह बीतते हैं। भय लगा रहता है कहीं किसी पड़ोसी से ऊंचा नीचा ना कह बैठे। कुछ ना हुआ तो सड़क के जमादार पर बिगड़ जाएंगे। एक बार बिगड़े तो फिर संभालना कठिन। बोलेंगे तो इतना तेज कि चार घर के फासले पर सुनाई दे। अड़ोस पड़ोस का कोई ना कोई बहुत सज्जन हंसी के साथ कह देता है, मिस्टर शर्मा लगता है पिताजी आए हैं गांव से, और वह मन महसूस कर रह जाते हैं। मिस्टर शर्मा कभी टोक देते तो पिता बुरा मान जाते, बच्चों की तरह रूठ जाते और कहते, तुम बहुत बड़े हो गए हो ना, हमें तो कोई समझ ही नहीं रही ना, चड्डी तक संभाले नहीं संभलती थी, अब हमारी बातों में मीन मेख निकालते हो। मिस्टर शर्मा द्वारा सोची समझी सभी दलीलें बेकार हो जाती। पिता को समझाने के लिए मिस्टर शर्मा कई कई वाक्य गढ़ते, कितने कितने मंसूबे बांधते, पर सब बेकार। पिता की खरखराती आवाज़ और कुछ भी स्वीकार न करने वाली मुद्रा उन्हें खिजा देती। नन्ना तो दादा के आते ही जैसे सभी नियंत्रणों से मुक्त हो जाता। हर शाम फरमाइश होती, ये ला दो, वह ला दो, हाव भाव बोल चाल सब पर दादा की छाप दिखलाई देने लगती। मिस्टर शर्मा चाहकर भी रोक टोक नहीं पाते। बहुत हुआ तो कभी पढ़ाई का बहाना करके अलग बैठा देते, पर कितनी देर। नन्ना फिर दादा से ही लिपटा हुआ मिलता। मिस्टर शर्मा मन महसूस कर रह जाते। अब जोर से नहीं बोलूंगा पापा, सॉरी, नन्ने ने सहमे हुए स्वर में कहा। मिस्टर शर्मा का मन हुलस गया। नन्ने के आंसुओं से उपजा अपराध बोध कुछ कम हुआ। नन्ने को पेस्ट्री लेकर देने के लिए मिस्टर शर्मा स्वयं पास की दुकान तक जाने के लिए उठे तो नन्ना भी साथ हो गया। पापा, अब दादा कब आएंगे? नन्ना दादा के संदर्भों से स्वयं को अलग नहीं कर पाया था। पता नहीं बेटा, आप उन्हें बुलवा क्यों नहीं लेते? वो गांव में रहना पसंद करते हैं, शहर में नहीं। मिस्टर शर्मा ने बात को टालना चाहा पर नन्ना चुप नहीं हुआ। तो हम भी गांव में क्यों नहीं रहते? मेरी नौकरी यहाँ है, तुम्हारी पढ़ाई यहाँ है, हम गांव में कैसे रह सकते हैं? गांव में नौकरी नहीं होती क्या? नन्ने का जिज्ञासु मन गांव और शहर के अंतर को जानना चाहता था। वहाँ तो खेती होती है। दादा क्या करते हैं? दादा भी खेती करते हैं, उन्होंने स्वयं को संयत रखते हुए उत्तर दिया। छी छी, दादा मिट्टी कीचड़ का काम करते हैं, इसीलिए उनके हाथ इतने काले और सख्त हैं। नन्ने की स्मृतियों में पानी लगे खेत उभर आए। एक बार मेड़ से फिसलकर वह इनमें गिर गया था और गीली मिट्टी से लस लस हो गया था। नहीं बेटे, दादाजी तो दुनिया का सबसे अच्छा काम करते हैं। गेहूं चावल उगाते हैं जिसे लोग खाते हैं। अगर वे अनाज नहीं उगाएंगे तो हम लोग क्या खाएंगे? मिस्टर शर्मा को नन्हे के विचारों में दादा के प्रति उपजती तिक्तता पसंद नहीं आई। तो फिर दादाजी दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हुए ना? नन्हे ने खुशी से अपनी नन्ही मुठियां हवा में उछाली।

0: मिस्टर शर्मा संतोष से मुस्कुराए। बेकरी आ गई थी। शर्मा ने 4 पेस्ट्री डलवाई और वापिस चल पड़े। नन्ना जिद कर रहा था पेस्ट्री उसे दी जाए और वह खाता हुआ चलेगा। मिस्टर शर्मा समझाने लगे कि सड़क पर खाते हुए चलना बैड मैनर्स होते हैं। पर दादा तो हमेशा सड़क पर चलते हुए खाते हैं। नन्ने के हृदय से अब पिता का भय उतर चुका था। दादा को ऐसा नहीं करना चाहिए, मिस्टर शर्मा ने धीमे स्वर में कहा। दादा बैड मैनर्स हैं क्या? बड़ों को ऐसा नहीं कहते, मिस्टर शर्मा ने बात समाप्त करने की गरज से निगाहें दूसरी ओर फेर ली। नन्ना समझ गया कि पिता अब बात करना नहीं चाहते, इसलिए चुप होकर साथ साथ चलने लगा। घर पहुंचकर मिस्टर शर्मा ने पेस्ट्री का डिब्बा नन्ने को पकड़ाया तो जैसे नन्ने को भूली हुई कोई बात याद आ गई। पापा, हमने दुकान वाले से रूंगा तो लिया ही नहीं। रूंगा? वो क्या होता है? मिस्टर शर्मा अचानक उपजे इस शब्द के संदर्भ से स्वयं को नहीं जोड़ पाए थे। आप रूंगा नहीं जानते पापा? नन्ना ओठ टेढ़ा करके पिता की अज्ञानता पर हंसा। मिस्टर शर्मा नन्ने के अंदाज पर खिलखिला उठे। अरे तुम ही बतला दो। मिस्टर शर्मा को बचपन में लिए रूंगे याद आ गए थे, पर उन्हें नन्ने की मुद्राओं में रस आने लगा था। रूंगा मतलब फ्री का माल। दादा जब भी अपने लिए चने या गंडेरी खरीदते मुझे रूंगा दिलवाते थे। आपने पेस्ट्री के साथ कुछ भी नहीं दिलवाया, नन्ने ने शिकायत दर्ज की। बेटा हमने तो सारी पेस्ट्री ही तुम्हारे लिए खरीदी है, जाओ और खा लो। उन्होंने प्यार से नन्ने के गाल थपथपाए। नन्ना चलने लगा तो किचन से मम्मी की आवाज सुनाई दी जो उसे दूध के लिए बुला रही थी। आता हूँ बाबा, आता हूँ। नन्ने का बाल मन पिता की मार भूल चुका था और अब अपनी मस्ती में था। मिस्टर शर्मा के चेहरे से इस प्रायश्चित के बाद पश्चाताप के लक्षण धुल चुके थे। वह आंतरिक स्फूर्ति से महके हुए बालकोनी की रेलिंग पर हाथ टिकाकर नीचे सड़क पर दौड़ रही गाड़ियों को देखने लगे। तभी किचन से आती नन्ने के रोने की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। वे तेज तेज चलते हुए किचन में पहुंचे। पत्नी किसी बात पर नन्ने को डांट रही थी। देखिए जिद कर रहा है कि पेस्ट्री को ठंडे दूध के गिलास में घोल कर खाऊंगा, बताइए खाया जाएगा क्या? पत्नी ने कहा। नन्ने ऐसा कौन करता है बेटा, सारा स्वाद खराब हो जाएगा, मिस्टर शर्मा ने समझाने के लिए नन्ने को पुकारा। नन्ने को हौसला हुआ तो गुस्से भरे स्वर में बोला, क्यों दादाजी लस्सी में बर्फी डालकर नहीं खाते क्या? मिस्टर शर्मा के अंदर गुस्सा उबल आया पर स्वयं को रोक लिया। चुपचाप वापिस आकर रेलिंग के सहारे खड़े हो गए। सड़क के बीचों बीच एक टांगा मस्ती भरी चाल से चलाता हुआ चला जा रहा था, जिसके पीछे गाड़ियों की एक लंबी कतार थी। रास्ता न मिलने से हैरान और परेशान।
1: अभी आपने जितेंद्र ठाकुर की कहानी सुनी अंतराल। इसी के साथ साहित्यिकी का आज का ये अंक समाप्त करने की रमेश चंद्रा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
3: एक और अंक के साथ मैं चंदन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता, जिसका विषय होगा ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं। इस विषय पर नन्हे सिंह से बातचीत करेंगे अशोक पांडे। साथ ही हम आपको सुनवाएंगे एथलेटिक्स कोच जगदीश द्विवेदी और संजीव श्रीवास्तव से आकांक्षा सिंह की बातचीत। सबसे पहले लीजिए सुनिए भेंट वार्ता, जिसका विषय है ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं। इस विषय पर नन्हे सिंह से भेंट वार्ता कर रहे हैं अशोक पांडे।
4: श्रोताओं नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे खेलों में ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं उनके बारे में, कि किस तरह से ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवा आगे बढ़कर के खेलों में

0: अपना और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एथलेटिक्स प्रशिक्षक नन्हे सिंह जी को। नन्हे सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो और इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर।
0: नन्हे सिंह जी, जैसे कि बातचीत का जो विषय है वो ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं के ऊपर है
1: जी,
0: तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो भी खेल के बड़े आयोजन हैं या छोटे आयोजन हैं उनमें ग्रामीण क्षेत्र से जो युवा आ रहे हैं, जो लड़के आ रहे हैं,
1: जी,
0: जो लड़कियां आ रही हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने का जो प्रतिशत है वो क्या है, उनके प्रतिनिधित्व का दर क्या है, किस अनुपात में वो आ रहे हैं
1: प्रतियोगिताओं में? ग्रामीण क्षेत्रों से जो हमारे खिलाड़ी विभिन्न खेलों में आते हैं वो ट्रेन तो नहीं रहते हैं, रॉ मटेरियल रहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो प्रतिभाएं रहती हैं वो अपने जौहर का जहूर आकर के दिखाते हैं। बिना किसी टेक्निक के वो इतने बढ़िया प्रदर्शन करते हैं अपने दमखम से, जो देख करके लोगों को ये लगता है कि ये लड़का या खिलाड़ी किसी कोच द्वारा, प्रशिक्षक द्वारा, किसी गुरु द्वारा ट्रेंड नहीं है, इसके अंदर ईश्वरीय देन है, ईश्वरीय शक्ति ऐसी है, इसके अंदर ऐसी प्रतिभा छिपी हुई है जिस प्रतिभा के बल पर खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को, ग्रामीण अंचल का खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को, जैसे हम लोग गांव में ग्रामीण अंचल की प्रतियोगिताएं कराते हैं, जैसे ब्लॉक लेवल पर DOPRD इस तरह की प्रतियोगिताएं गांव में जब होती हैं, जैसे सुदूर अंचलों में नवगढ़ वनप्रांतर की तरफ से अगर उधर जाते हैं उस एरिए में, जैसे मूसाखाण बंदा है, वहां भी लड़के अपना जो है ट्रैक नहीं है लेकिन उस ट्रैक में देखते हैं हम बाल्टी का पानी फेंक करके दौड़ते रहते हैं, कूदते रहते हैं, अखाड़ा खोद कर उसमें कूदते हैं, जैसे पोल वाल्ट है, बड़ा ही यह रिस्की गेम है, लेकिन पोल वाल्ट को क्या करते हैं, अखाड़ा खोद के एक बांस का पोल लेकर उसी पर गड्ढा बना के कूद के चढ़ते हैं। और इस प्रकार के लड़के जो ग्रामीण अंचलों से आते हैं उनकी प्रतिभा में निखार लाने के लिए जब वो शहर में आते हैं किसी गुणी के पास, किसी प्रशिक्षक के पास, तो उनकी प्रतिभाओं में निखार आता है। जैसे आप देख सकते हैं लकड़ाकड़ा ये आदिवासी लड़का था, मैराथन में कुछ इस प्रकार के खिलाड़ी रहे हैं, जैसे हमारे पास ही हीरालाल लड़का था भदोही का, बिल्कुल रॉ मटेरियल था। इससे पहले जगदीश विश्नोई जेवलिन थ्रो का लड़का था, मेरी पोस्टिंग उस समय राजस्थान में थी, गाँव का रहने वाला था, गंगानगर का रहने वाला था, और बोला कि गुरु जी किसी को सिलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट तो हम ही आई, तो ये बड़ा ही हमको अच्छा लगा। और उस बच्चे को हमने बुलाया कि नहीं बेटा तुम आओ, आकर के उसको मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया, और वही लड़का सिडनी ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में भारतवर्ष की तरफ से प्रतिभाग किया और अपना प्रदर्शन वहां पर अच्छा किया।
0: कहने का मतलब यह है कि ऐसे क्षेत्र से जो युवा आ रहे हैं कहीं ना कहीं इसके पीछे एक सोच और काम करती है कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है जिसे वो खोएंगे। अगर वो एक कदम भी आगे बढ़े तो उन्हें कुछ ना कुछ हासिल ही होगा, तो ऐसे में उनका जो जोश होता है काफी मजबूती से निखर करके आगे आता है कि हाँ मैं इस प्रतियोगिता में अपना पूरा दमखम का परिचय दूंगा और मैं ही जीतूंगा। जैसे आपने उदाहरण दिया उस जेवलिन थ्रोअर का कि उसने कहा कि प्रैक्टिस तो कितनी भी कर ले लेकिन जीतूंगा मैं ही। तो जो ऐसे क्षेत्र हैं खास करके जहां पर इससे संबंधित जानकारी भी नहीं लोगों तक पहुंच पाती है कि नए नए कौन से ऐसे खेल आयोजन हैं या खेल की ऐसी कौन सी विधाएं हैं जिनमें हमें हाथ आजमाना चाहिए, जिसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, उन्हें तो कायदे से इसका भी ज्ञान नहीं होता है कि अगर हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ भी कितने तरह की होती है, एथलेटिक्स में तमाम सारी विधाएं हैं, ट्रैक कितना होना चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, कितनी देर में हमको पहुंचना है, नेशनल रिकॉर्ड क्या है, ऐसी तमाम चीजें हैं जिसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है
1: जी।
0: उसके बावजूद वो अपना पूरा दमखम लगा करके पूरी मेहनत करते हैं, तो ऐसे में आप लोग तो जाते हैं उन क्षेत्रों में, वो ग्रामीण क्षेत्र खास करके जो सुदूर इलाके हैं जहां बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, खास करके खेलों को लेकर के जागरूकता नहीं है
1: जी।
0: तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती है ऐसे क्षेत्र से जो खिलाड़ी है उनको लाने में और वापस उनको ट्रेन करने में?
1: हम लोग सुदूर ग्रामीण अंचलों में जब जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले उनके गार्जियन से मिलते हैं, बुजुर्गों से मिलते हैं। यहाँ तक कि एक बुजुर्ग ने कहा था कि उठा लो लंगोटा और दिखाने चलो कुछ मनुज हो तो पौर उस अखाड़े की हो। ये बड़ी हमको अच्छी बात लगी। और सुदूर जंगलों में, नौगढ़ के जंगलों में भेड़ा फार्म के पास में, वहां पर एक स्पोर्ट्स हो रहा था, पुलिस खेल करा रहे थे लोग, पुलिस वाले वहां हमको बुलाए थे लोग, और उस नेक्स्ट लाइट बेल्ट से छोटी छोटी बच्ची आके एक दिन की इस माहौल को देख के दौड़ रहे हैं, कोई धोती पहने दौड़ रहा है, कोई नंगे पैर दौड़ रहा है, बिना किसी इक्विपमेंट्स के, बिना किसी साधन के, और इस प्रकार की दौड़ लड़के दौड़ रहे थे, हमें इतना अच्छा लगा। जैसे परंपरागत खेल ग्रामीण अंचलों में वॉलीबॉल है, कबड्डी है, दौड़ है, एथलेटिक्स में से दौड़, आपने कहा कि उनको मालूम नहीं है, रेस है, जंप है, थ्रोज है, इन तमाम प्रकार की विधाएं हैं जिसमें वो ग्रामीण बच्चे जो जागरूक हैं उनमें से जो कुछ पढ़ लिख के ऊपर आ गए हैं वो

0: से हम लोगों से संपर्क करके उन बच्चों को जानकारी देते हैं। डायरेक्ट जो लड़का हम लोगों के टच में है उन बच्चों को हम लोग डायरेक्ट बताते हैं, और यह भी प्रयास करते हैं कि अगर इस बच्चे को कितना हम मदद कर सकते हैं, शहर में रख करके किसी से स्पॉन्सर भी कराते हैं। एक दो साल ट्रेनिंग के बाद यह प्रयास करते हैं कि यह लड़का खेल छात्रावास में आ जाए। यहाँ पर खेल छात्रावास जैसे भारतीय खेल प्राधिकरण का है और उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय का है। इन हॉस्टलों में हम लोग दाखिला दिलाते हैं उन गरीब बच्चों को, उन प्रतिभावान बच्चों को, कि आकर के अपने दमखम का, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन वो बच्चे दिखा सके, जो भविष्य के आने वाले दिनों में दूरगामी परिणाम अच्छा दें और अपने जिला ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भारत के झंडे को फहराएं। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे हमारा लड़का एक यहां पर खिलाड़ी था राम सिंह, ये चोलापुर में बभियाओं गांव का रहने वाला था और लंदन ओलंपिक में 42 किलोमीटर 195 मीटर की दौड़ होती है, उस रेस में भारतीय चुनौती को उसने पेश किया और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। इसी तरह से गुलाबचंद चिरेगांव का रहने वाला लड़का है, संतोष कुमार भी चिरेगांव का ही है। ये सब बच्चे अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भी अपने प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाए हैं। जैसे गुलाब हमारे यहाँ यूपी कॉलेज में रह करके वो ट्रेनिंग करते थे, और वही खिलाड़ी हमारा गांव का रहने वाला, यहाँ रहते हुए उन्होंने नेशनल में फर्स्ट किया। और अर्जुन पुरस्कार, जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, वह अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुआ। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं गांव के जो अर्जुन पुरस्कार, बहुत से ऐसे खिलाड़ी खेलने के बाद कोच बने हैं और कोच में भी इतना अच्छा प्रदर्शन किए हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं। जैसे हम लोग गांव के हैं रहने वाले, बेसिकली मैं गांव का निवासी हूँ। चंदौली जिले में धानापुर एक जगह है, धानापुर में एक गाँव है डबरिया, उस गाँव का मैं मूल रूप से निवासी हूँ। हम लोग भी जब गाँव में स्पोर्ट्स करते थे तो ग्राउंड नहीं था, सड़क पर पगडंडी पर ऐसे छर्री हुआ करती थी, स्पाइक भी नहीं थी, नंगे पैर दौड़ते थे, पैर छिल जाते थे, लेकिन मन में एक प्रबल इच्छा शक्ति थी कि नहीं, हमें खेल करना है, हमें जीतना है, हम खेल के माध्यम से अपने करियर को बनाना है और अपने साथ साथ और लोगों को जोड़ना है कि भविष्य के आने वाले दिनों में हम भी एक दिन भारत के तिरंगे को फहराएंगे और भारतीय धुन को बजाएंगे, भारत के गौरव को बढ़ाएंगे। ये ऐसी अंदर से एक भावना थी कि नहीं, मैं करूं। और मैं खिलाड़ियों को, बच्चों को गाँव में जा करके यह बताता रहता हूँ कि नहीं, ये करो। जैसे एक लड़की आरती है, यही बगल पचराव गांव की रहने वाली है, और वर्ल्ड स्कूल गेम में उसने भारत के लिए रजत पदक जीता। बहुत लंबी चौड़ी टीम गई थी, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्कूली गेम में मेडल जीतने वाली मात्र यही एक लड़की हुई। एक दूसरी लड़की गांव की ही सुमन यादव, हरहुआ ब्लॉक की है, और इसने जो है विश्व रैंकिंग में ये 6वां स्थान प्राप्त किया। जो गांव की रहने वाली थी, जेवलिन थ्रो में भाला फेंक में उसके गार्जियन जब लेकर के आए तो उस समय कभी लॉन्ग जंप करती थी, कभी वॉलीबॉल खेलती थी, कभी कुछ करती थी। बाद में वॉलीबॉल एक दिन खेला रहे तो देखे वॉलीबॉल में सर्विस कर रही थी, तो सर्विस में देखी इसका पावर बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा तो जेवलिन बढ़िया फेंक सकती है, इसको मैंने जेवलिन में डाला, और वही लड़की जेवलिन में आज एशिया में मेडल, सारे जगह मेडल, और वर्ल्ड की 6 रैंकिंग प्राप्त करना बहुत बड़ी बात।
1: कहने का मतलब ये है कि सरकारें जो प्रयास कर रही हैं अपने स्तर से ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का, लाने का, उसमें खेल निदेशालय और भारतीय खेल प्राधिकरण का एक बड़ा योगदान है।
0: जी जी,
1: खास करके महिलाओं की जो प्रतिशतता है, लड़कियां भी ग्रामीण क्षेत्रों से निकल करके आगे आए, 2-4-5 उदाहरण आपने दिए, इसको और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है आज के समय में।
0: जी बिल्कुल, तो
1: बढ़ाने की आवश्यकता है। वो जो बढ़ाने की आवश्यकता है उसे कैसे पूरा किया जा सकता है ताकि जो आने वाला भविष्य है हमारे देश का खास करके खेलों में वो उज्ज्वल हो।
0: इसको बढ़ाने के लिए पहले तो बच्चे का ब्रेन वॉशिंग करना है कि बच्चा उसके अंदर ये हो जाए कि हम खेल के बल से अपने करियर को बना सकते हैं। जैसे लोग पहले कहते थे, जब भी हम लोग छोटे थे, गांव जाते दौड़ने वाले आवारा हो जाएगा, तो गार्जियन को यह बताना है। पहले लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, आप पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, यह कहावत चलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो खेलों के माध्यम से, जैसे कहते हैं कि जिस प्रकार गाड़ी की पहिया तेज चलती है तेल से, उसी प्रकार बच्चों का दिमाग तेज होता है खेल से। तो इस खेलों को हमें गांव में ले जाकर के सुदूर अंचलों में, ग्राम भारत की 80% जनता गांव में रहती। अब तो लोग शहर में आना शुरू कर दिए, लेकिन जो गांव में रहता है उसको गांव ही अच्छा लगता है, और गांव में जो चीजें मिलती हैं, शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध दूध, तो शहर की अपेक्षाकृत गांव में ये सब चीजें तो अच्छी हैं, लेकिन ऑपरेटर्स उपकरण नहीं है। जैसे इसको लीजिए, पोल वाल्ट है, इतना महंगा है, खरीद नहीं पाएगा खिलाड़ी। जेवलिन है, 75-80 हजार की जेवलिन एक आती है, कहां से खिलाड़ी कितना गेहूं चावल बेचेगा तो एक तो सामान खरीदेगा। तो इन सब चीजों के लिए सरकार ध्यान दे रही है, प्रशिक्षक गांव में जाकर के बच्चों को मोटिवेट करें।

0: मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज होती है।
1: निश्चित तौर पर। और ये मोटिवेशन सरकार तो अपनी तरफ से दे ही रही है, अभिभावकों के अंदर भी होना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को जागरूक करें, और खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के युवा खिलाड़ी, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, निकल करके आएं और उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है, ऐसा सरकार के संस्थान का जो प्रयास है इसको देख करके लगता है। निश्चित तौर पर वो जब इस तरह की प्रतियोगिताएं धीरे धीरे करके जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अपने राज्य का, अपने देश का नाम तमाम सारे अंतर्राष्ट्रीय फलकों पर निश्चित तौर पर वो मशहूर करेंगे। नन्हे सिंह जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को इतनी आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे नन्हे सिंह से अशोक पांडे की भेंटवार्ता। विषय था ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं। अब सुनिए एथलेटिक्स कोच जगदीश द्विवेदी और संजीव श्रीवास्तव से आकांक्षा सिंह की बातचीत।
3: श्रोताओं नमस्कार। खेल और खिलाड़ियों की बात करते करते हम आ पहुंचे हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के BHU कैंपस में, और आज हमारे साथ हैं भारतीय खेल प्राधिकरण में एथलेटिक्स के कोच संजीव श्रीवास्तव जी, और साथ में हैं एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करने वाली ढेरों बालिकाएं। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चूंकि खिलाड़ी को बनाने में सबसे अहम भूमिका एक कोच की होती है, संजीव जी आप इन बच्चों के कोच हैं और स्पेशली आप एथलेटिक्स देख रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न आपसे ही पूछा जाएगा, आपने एथलेटिक्स कोच बनने की प्रेरणा कहाँ से ली?
4: सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम खिलाड़ियों के लिए और हमारे भारतीय खेल प्राधिकरण के कैंपस में आई हैं, आपका स्वागत है। और आप हमारे बारे में जानना चाहती हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कोच बनने की प्रेरणा मैंने अपने फादर से ली, वो खिलाड़ी रहे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट रहे, जेनेटिक था, खेले पढ़ते रहे, वो जानते थे कि इसका खेल, वो सारे स्कोप, चूंकि मेरे फादर थे तो उनको मेरे स्कोप के बारे में पता था, तो उन्होंने मुझको BPA MPED डिप्लोमा कराया। छोटी उम्र में ही मैंने कंटिन्यू कर लिया। उन्होंने कहा कि कोच बनने के लिए पटियाला जाना पड़ता है, डिप्लोमा लेना पड़ता है एथलेटिक्स में, तो मैंने कहा पापा अभी कोच तो नहीं बनना है, अभी तो मैं खिलाड़ी बन रहा हूँ। बोले वहाँ जाओ, वहाँ सारे कैंपर रहते हैं, उनको देखना और करना, वो तो मक्का मदीना है खेल का। मैंने गया वहाँ खेला, चूंकि वैसे पढ़ने में ठीक ठाक, अच्छे विद्यालय से एजुकेशन रहा हमारा, खेल खेलते खेलते हम कोच बन गए, और जो हमारा पैशन है वही हमारा प्रोफेशन हो गया।
3: खेलते खेलते आप कोच बन गए और आपको लगा कि दूसरों को भी मुझे ट्रेनिंग देनी चाहिए। अच्छा संजीव जी, ये जो बच्चे सीख रहे हैं अभी तो इनकी शुरुआत है, आपको क्या लगता है कि एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए?
4: अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए एक व्यक्ति में ना ईमानदार हो, अनुशासन हो, और उसका आत्मबल बहुत मजबूत हो, उसमें विश्वास हो। जिस प्रकार एक बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी, ये जरूरी नहीं है कि वो खिलाड़ी बन सकता है, लेकिन एक सामान्य सा बालक अगर वो मेहनत करेगा तो कंटिन्यू अनुशासन से, ईमानदारी से, तो एक ना एक दिन वो अच्छा खिलाड़ी बनेगा।
3: तो आपको लगता है कि एथलेटिक्स में, हम यहाँ पे विशेष तौर पे एथलेटिक्स खेलों की बात करेंगे, इसमें अनुशासन और मेहनत की विशेष भूमिका है?
4: हाँ मैम, बहुत ज्यादा। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे ना, एथलेटिक्स ऐसा गेम है ना, टीम गेम में क्या होता है कि अगर एक खिलाड़ी ने खराब खेला तो 9 खिलाड़ी अच्छा कर जाते हैं या 10 खिलाड़ी अच्छा करते हैं, तो उसकी जो कमियां होती छिप जाती हैं। लेकिन एथलेटिक्स ये है ना, आप जितना करेंगे उतना पाएंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो अच्छा रिजल्ट पाएंगे, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आपकी उपलब्धियां रहेंगी। ये आप पे ही निर्भर है और आपके कोच पे, आपको खुद करना है और खुद ही पाना है।
3: बिल्कुल, कोच के साथ साथ खिलाड़ी की स्वयं की मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। तो संजीव जी, खिलाड़ियों की मानसिक तैयारी यानी मेंटल प्रिपरेशन जो है वो भी बेहद जरूरी होती है, आप उनको मानसिक रूप से तैयार करने में किस तरह मदद करते हैं?
4: एक दूसरे खिलाड़ी को दिखाकर, जो आपस में प्रैक्टिस करते हैं ना, जो इनसे बाद में शुरू करते हैं और इनसे आगे चले जाते हैं, या जो इनसे आगे रहते हैं और उनसे कहते हैं देखो उसने प्रैक्टिस नहीं की तो देखो ये पीछे होगी, आपने प्रैक्टिस की आप आगे गई। मोटिवेशन से वो दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ और एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल। और आजकल तो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ढेर सारे स्पीच देने वाले हैं, इस इनकी बीच बीच में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा साइकोलॉजी क्लासेस भी चलती रहती हैं, वो प्रोफेसर लेक्चर इनको साइकोलॉजी रूप से ट्रीट करते रहते हैं और इनको मोटिवेट करते रहते हैं। कोच का काम तो है ही करना मोटिवेट कि बेटा ये ऐसे करोगे तो ये होगा, वैसे करोगे तो ये होगा, तो साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है स्पोर्ट्स के लिए और इनके परफॉर्मेंस के लिए।
3: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। संजीव जी, आपको क्या लगता है कि सिर्फ बताना और उनको तैयार करना, इसके अलावा एक कोच और खिलाड़ी के बीच में कहते हैं एक विश्वास का बंधन होना भी उतना ही जरूरी है?
4: बहुत जरूरी होता है। एक कोच होता है जो वो ना, वो एक प्रकार से पिता होता है, और एक पिता सोचता है समझता है कि बच्चे को कब क्या किस चीज की जरूरत है। एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जैसे हम घुड़सवारी में या घुड़दौड़ में ना, राइडर और घोड़े के बीच का संबंध जो होता है ना, वो उसकी हार्ट बीट से जो थपकी देता है तो घोड़ा बहुत तेज भागता है। उसी प्रकार बच्चे की फीलिंग्स और कोच की फीलिंग्स, उसकी आई टू आई कॉन्टैक्ट, इमोशन टू इमोशन

0: लाओ बच्चे को बहुत आगे ले जाता है। कोच कुछ कहना चाहे बच्चा उसे पहले समझ जाए, ऐसी बाउंडिंग होनी चाहिए कोचेज और ट्रेनिंग में।
1: कुछ इवेंट्स की बात करेंगे, एथलेटिक्स में अलग अलग तरह के खेल होते हैं, थोड़ा उनके बारे में बताएं।
0: बोलता है एथलेटिक्स तीन चीज पे आधारित होता है, रनिंग, थ्रोइंग और जंपिंग। रनिंग में ढेर सारे इवेंट्स होते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 110 मीटर बाधा दौड़, 400 मीटर बाधा दौड़, लड़कियों की 100 मीटर रेस, 3000 मीटर रेस, 5000 मीटर रेस, मैराथन, इससे ऊपर वॉक रेस होती है ढेर सारी, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ये हमारे रनिंग इवेंट्स हैं। इसी प्रकार हम जंप इवेंट्स की बात करते हैं तो उसमें चार जंप्स होते हैं, लॉन्ग जंप होता है, ट्रिपल जंप होता है, हाई जंप होता है, पोल वॉट होता है। फिर हम थ्रो में आते हैं तो चार प्रकार के थ्रो होते हैं, शॉर्ट पुट, डिस्कस, हैमर, जेवलिंग थ्रो। समानता 26 होते हैं, ये हर बार बढ़ते घटते रहते हैं ओलंपिक के अनुसार। अब चूंकि देश विकसित कर रहा है, समाज विकसित कर रहा है, तो आवश्यकता के अनुसार से इवेंट्स बढ़ाए जाते हैं या कम किए जाते हैं।
1: कोच सर, हम आपके पास प्रश्नों की बौछार लेके फिर आएंगे, लेकिन जो बच्चे हैं हमारे साथ, थोड़ी उनसे भी बात कर ली जाए, चूंकि इवेंट्स की बात हो ही रही है। तो बच्चों जय हिंद।
2: जय मैम।
1: सबसे पहले तो जल्दी जल्दी आप लोगों का नाम जान लेते हैं, है ना? तो अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं वो बताइए।
3: मैं अंकिता देवरिया।
4: मैं अदिति राय गाजीपुर से।
5: मैं आरती सोनभद्र से।
6: मैं सेजल सेवापुरी से।
7: मैं मीनाक्षी टिकरी से।
8: मैं शिवानी यादव जो की जौनपुर की रहने वाली।
9: मैं आर्य सिंह बाबतपुर से।
10: मैं रिचा यादव बाबतपुर की।
11: मैं खुशी पटेल आयर से।
12: प्रशिष्टि मैं उन्नाव से।
13: गुंजन यादव जौनपुर से।
14: पलक यादव चंदौली।
15: अपूर्वा गुजर फिरोज आवाज।
1: तो बच्चों, जब आप लोग ट्रेनिंग करती हैं, थोड़ा सा आप लोगों के रूटीन के बारे में जानना चाहेंगे, सवेरे से शुरुआत करें।
16: सुबह 5 बजे उठते हैं, तैयार होते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, फिर आते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद थोड़ा नहाते हैं, रेस्ट करते हैं, उसके बाद खाना खाने के लिए आएंगे दोपहर का,
10: लंच के बाद फिर थोड़ा पढ़ना रहते तो पढ़ लेते, फिर उसके बाद 4 बजे फिर ग्राउंड जाते, फिर वर्कआउट करते, फिर 6 बजे आते हैं वर्कआउट के बाद, 8 बजे फिर नाश्ता करते,
8: 6 बजे के बाद आते हैं, फिर उसके बाद जो भी वहाँ पे नींबू पानी वगैरह पीना होता है वो पीते हैं, फिर सर के साथ असेंबली होती है, फिर रात का खाना होता है, उसके बाद फिर मैम असेंबली कराती हैं, फिर हम लोग ऊपर जाते हैं, जो भी पढ़ना होता है वो पढ़ते लिखते हैं, फिर सो जाते हैं।
1: तो जनरली आपका दिन कितने बजे तक खत्म होता है, लास्ट कॉल?
16: 10 बजे तक।
1: तो बच्चों, मतलब क्या सोचा आपने कि हमें स्पोर्ट्स में ही करियर बनाना है, ऐसा क्यों?
16: मेरा नाम खुशी पटेल है। मैं गेम खेलना मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर वालों ने भी बहुत फोर्स किया है मुझे गेम खेलने के लिए, फिर स्कूल में ऐसा गेम होता था तो मैं गेम खेलती थी, तो मेरे सर भी बोलते थे कि तुम प्रैक्टिस किया करो, गेम खेला करो हमेशा। हमने बोला ठीक है सर, हम करेंगे। फिर मेरे घर वाले सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट किए गेम के लिए, फिर मैं धीरे धीरे करती गई, 1-2 साल घर पे प्रैक्टिस किए, गेम खेले, स्टेट तक घर पे मेडल दिया है, फिर उसके बाद साई हॉस्टल का ट्रायल दिए बेच चुका, फिर यहाँ पे आ गए हैं, हॉस्टल में हो गया, 2 साल से हॉस्टल में रहते हैं।
1: तो खुशी, आप क्या खेलती हैं?
16: मैं 100 मीटर हर्डल करती हूँ और लॉन्ग जंप करती हूँ।
1: अच्छा। प्रशिष्टि, आप क्या खेलती हैं?
17: मैं ट्रायथलॉन और हर्डल करती हूँ।
1: आप कब से खेल रही हैं?
17: मैं अभी यहाँ पे 5-6 महीने से आई हूँ, और सर के अंडर हमने बहुत ज्यादा हमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, और सर हमारे लिए एज अ पेरेंट्स होते हैं, उसी हिसाब से हमारी वैसे ही केयर करते हैं और हमें वैसे ही समझाते हैं, हम इसके लिए सर के बहुत ज्यादा थैंकफुल है।
1: तो सर के पास वापस चलते हैं। कोच सर, ये अगला प्रश्न आपके लिए, इतने बच्चों को संभालना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, कैसे मैनेज करते हैं?
0: मुश्किल से नहीं होता, ये हमको समझते हैं, हम इनको समझते हैं, और भी कोचेज रहते हैं जो ट्रेनिंग कराते हैं। हमने वो पहले ही बता दिया था कि ये मेरा पैशन है जो प्रोफेशन में बदल गया है, तो जितनी ज्यादा ट्रेनिंग कराने का मौका मिलता है, ये करते हैं बहुत हार्ड वर्क, जब ये हार्ड वर्क करते हैं तो हमको कराने भी मजा आता है।
1: संजय जी, जब हम खेलों की बात करते हैं तो खेल, खिलाड़ी और चोट बहुत आम बात है, तो जब बच्चों को किसी चोट का सामना करना पड़ता है तो उनको किस तरह मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आप किस तरह सपोर्ट करते हैं?
0: बिना सपोर्ट कुछ हो नहीं सकता मैम, अगर खिलाड़ी बनना है तो बहुत ढेर सारी चोटों का सामना करना पड़ता है, रोज चोट लगनी ही है, क्योंकि हम ऐसे मूवमेंट्स करते हैं जो सामान्य से बहुत ऊपर रहते हैं, जिसमें ढेर सारी इंजरी, एंकल ट्विस्ट, नी इंजरी, स्टमक पेन, कुछ भी, मतलब बाहरी और आंतरिक ढेर सारी चोटें लगती हैं। इनके लिए बीएचयू में अगर ज्यादा चोट लगती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वार्डन मैम होती हैं, इनको डॉक्टर के पास ले जाती हैं, या फिर उनसे नहीं ठीक होता है तो बड़े बड़े डॉक्टरों को कंसल्ट करते हैं। इनके लिए साई ने व्यवस्था की है इनकी चोटे के लिए, और उनका उपचार होता है।
1: कुछ सावधानियां भी बरतनी होती हैं?
0: बिल्कुल, सावधानियां तो बरतनी
1: खेल के दौरान।
0: हाँ, खेल के दौरान सावधानियां, ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें चोट कम हो। अब ट्रेनिंग बहुत साइंटिफिक हो गई है तो हम कुछ भी कभी भी नहीं कर सकते, कब क्या करना ये एक सुनिश्चित होता है, सुनिश्चित होता है। अब ऐसे इक्विपमेंट्स भी आ गए हैं जिससे आपको चोटें कम लगती हैं, और कोच को ये सारी बातें बताई जाती हैं कि कैसे ट्रेनिंग करानी कि चोट कम से कम लगे, और चोट लगे तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या उपचार देना है? जैसे अगर चोट लग गई है, थोड़ी सूजन है, तो सबसे पहले आइस देना है, थोड़ा सा उसको 10-12 घंटे देखना है, अगर सामान चोट है तो। उसके बाद अगर वो आप नहीं, तो फिर अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाना उसको।
1: अच्छा, श्रोताओं, बातचीत के इस सिलसिले में अब हमसे जुड़ गए हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया BHU कैंपस के वरिष्ठ कोच श्री जगदीश द्विवेदी जी।
2: थैंक यू मैडम।
1: सर, साई की जो बच्चों के लिए जो सुविधाएं हैं और आगे जो उज्जवल भविष्य है बच्चों का, उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि किस तरह की सुविधाएं साई इन बच्चों को उपलब्ध करा रहा है ट्रेनिंग से जुड़ी।
2: मैडम, ये बता दें कि एक जो BHU सेंटर है, वो गर्ल्स हॉस्टल छात्रावास जो है, वो पूर्वांचल का पहला साई छात्रावास है, और ये इसलिए यहाँ ओपन किया गया था कि हमारे जो पूर्वांचल के बच्चे हैं, बच्चियां हैं,

0: के आधार पे उनको एडमिशन मिलता है।
1: सर सुविधाओं की थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए।
0: सुविधाएं की देखिए, आपको एक नेशनल आपके इंटरनेशनल कोच, टेक्निकल कोच मिलते हैं जो साइंटिफिक तरह से कोचिंग देते हैं, जिसका कि कोई एक तो बहुत बड़ी सुविधाएं आपको ये मिलती हैं। और इक्विपमेंट वगैरह हमारे सब नेशनल ओलंपिक लेवल के यहाँ पे रहते हैं, जो भी सुविधाएं हैं, जिम इक्विपमेंट वगैरह है, जिम्स है या जो भी सुविधाएं हैं वो काफी काफी अच्छा तरह से यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, बाकी हॉस्टल की, हाँ हॉस्टल की जो सुविधाएं हैं यहाँ पे वो काफी अच्छी हैं। इस पे जो भी बैलेंस डाइट वगैरह काफी अच्छी मिलती है यहाँ पे, और जो इस बैलेंस डाइट जो बनाया गया है एक नेशनल लेवल चार्ट पे बनाया गया है, ताकि बच्चों को भरपूर जो पोषक तत्व मिल सके।
1: हमारे इस बीएचयू कैंपस से क्या बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं खेलने?
0: जी हाँ बच्चे, मैडम यह है कि यहाँ से बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं और नेशनल मेडल भी इन्होंने लिया है। नॉर्थ जोन चैंपियनशिप हुआ था जिसमें हमारे करीब 10 मेडल आसपास, 10 गोल्ड मिले हुए हैं, कुछ ब्राउन्स हैं, कुछ सिल्वर्स हैं। तो ये काफी अच्छा अचीवमेंट है और आगे आने वाले जो भी हमारे टूर्नामेंट है नेशनल में श्योर मेडल मिलेंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच।
1: कोच सर के लिए खास प्रश्न है कि खिलाड़ियों का पोषण बेहद जरूरी होता है फिटनेस के साथ साथ, तो पोषण और फिटनेस पर खिलाड़ियों को आप क्या विशेष तौर पर सलाह देंगे?
2: मैम पोषण बहुत जरूरी है और हमारे ये भारतीय खेल प्राधिकरण संस्था है, तो जैसे हम कोचेज नियुक्त हैं वैसे हमारे न्यूट्रिशियन भी नियुक्त हैं, साइकोलॉजिस्ट भी नियुक्त हैं। तो बड़े बड़े न्यूट्रिशियन से मिलकर इनके लिए एक चाइल्ड डाइट बनाई जाती है, क्या खाना है, कब खाना है, ब्रेकफास्ट में क्या होगा, लंच में क्या होगा, डिनर में क्या होगा, इनका एक मेन्यू तैयार है, वही इनको दिया जाता है। उस हिसाब से सोमवार को क्या खाना है, मंगलवार को क्या खाना है, क्या मेन्यू है, वो उसको दिया जाता है। फिटनेस की बात पे, अगर खिलाड़ी फिट नहीं रहेगा तो वो इंजर्ड ज्यादा होगा और उसकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, और परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो आजकल सब लोग परफॉर्मेंस को ही मानते हैं। खिलाड़ी नहीं रहेगा वो बाहर हो जाएगा, इसलिए फिटनेस बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा फिट इंसान रहेगा उतनी कम इंजरी और उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस आएगी। तो फिटनेस कराने के लिए तो हम कोचेज इसलिए नियुक्त हैं ताकि फिट रहें और इनकी परफॉर्मेंस आ सके और ये आगे देश का नाम रोशन कर सके।
1: जी बिल्कुल सही बात है। तो इवेंट के हिसाब से सबके, हर खिलाड़ी की न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग रहती है, तो सबका डाइट चार्ट अलग रहता है?
2: जी मैम, जैसे जो थ्रोअर हैं उनको प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता है, जो हाई जम्पर हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं उनको कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी कम आवश्यकता होती है, लेकिन जो थ्रोअर है तो उनको, हर खिलाड़ी का अपना अलग अलग होता है क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पे होता है, तो यहाँ पे उस हिसाब से इंडिया कैंप के हिसाब से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जब इससे बड़े हॉस्टल में जाते हैं तो इससे ज्यादा इनका वो होता है। हर एक खिलाड़ी के लिए अलग कोच, इवेंट वाइज अलग न्यूट्रिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मसाजर, सब कुछ रहता है।
1: संजीव जी, भारत में एथलेटिक्स के भविष्य को आप कहाँ देख रहे हैं?
2: अब तो मैम भविष्य फ्यूचर ही दिख रहा है, लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, आईएएस, पीएएस कम बनाना चाह रहे हैं, खिलाड़ी ज्यादा बनाना चाह रहे हैं।
1: मैंने ये प्रश्न विशेष तौर पे इसलिए पूछा क्योंकि जब भारत में विशेष तौर पे जब खेलों की बात होती है तो सबसे ऊपर क्रिकेट रहता है, उसके बाद फिर हम हॉकी देख लेते हैं, एथलेटिक्स इस मामले में अभी बहुत नीचे है, चाहे वो हमारे रनर्स हों चाहे हाई जम्पर्स हों, लेकिन अब धीरे धीरे धीरे इन इवेंट्स में भी बच्चे आगे आ रहे हैं। ये प्रश्न मैंने इसीलिए पूछा कि आगे एथलेटिक्स का भविष्य भारत में कहाँ है?
2: मैम बहुत अच्छा है आगे, क्रिकेट खेलने के लिए 11 खिलाड़ी चाहिए, लेकिन रनिंग के लिए ना
1: एक अकेला ही काफी
2: है, और शुरुआत हो गई है। अभी नीरज चोपड़ा जी ने हमारे मेडल लेके आए हैं ढेर सारे, अभी क्रिकेट हॉकी तो हमको लग रहा है थोड़े कम हो गए हैं, अब बॉक्सिंग, आर्चरी, रेसलिंग, एथलेटिक्स तो बहुत तेज विकास हो रहा है, और हर एक गांव में अब साई की ढेर सारी स्कीम है, तो ग्रास रूट पे काम हो रहा है। कोचेज अगर जो बच्चे हॉस्टल में नहीं है वहीं पे कोच की नियुक्ति कर दे रहे हैं हर एक जिले में, जो वहाँ का इंटरनेशनल खिलाड़ी है या नेशनल मेडलिस्ट है उसको भी व्यवसाय मिल जा रहा है, रोजगार मिल जा रहा है, और आधारभूत सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध करा दे रहे हैं ताकि खिलाड़ी ग्राउंड पे जाए और प्रैक्टिस करके वहाँ से अगली नेक्स्ट स्कीम में ऊपर जाए साई में। तो बहुत तेज से काम हो रहा है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। मैम मैंने बोला ना कि अब पहले लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, अब लोग कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे होगे तो लाजवाब, तो खेल का फ्यूचर अच्छा है। मैम अब ये बनारस है, छोटा सेंटर है, लेकिन अभी बच्चों ने इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, प्रदेश में साई हॉस्टल की बालिकाओं ने 19 मेडल लेके आई।
1: श्रोताओं, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीएचयू कैंपस में आज हम थे और हमने बात की एथलेटिक्स के कोच संजीव श्रीवास्तव जी से, साथ में जो बच्चे थे वो एथलेटिक्स के अलग अलग क्षेत्रों में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो बच्चियां थी हमारे साथ। सर आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और स्पेशली इन बच्चियों से बात करके बहुत अच्छा लगा। जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं

0: तो खिलाड़ी के नाम पर हमारे सामने सिर्फ मेल खिलाड़ी आते हैं, लेकिन अब आज हम देख रहे हैं कि स्पेशली एथलेटिक्स में भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वल है।
1: हाँ मैम, बिल्कुल, महिलाएं पुरुषों से कहीं कमजोर नहीं है और अब तो ये आद सकती हैं। तो महिलाएं अब आगे हो गई हैं पुरुषों से, इसमें कोई शक नहीं है। और ये हम कहते थे कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, ये वो महिलाएं तो प्लेन उड़ा रही हैं, सीमा पे जा रही हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, परिवार देख सकती हैं, पढ़ सकती हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन सकती हैं, खिलाड़ी बन सकती हैं, और देश का प्रतिनिधित्व हमारी महिला राष्ट्रपति जी कर रही हैं। तो महिलाओं के बारे में अब जिनको कोई संशय हुआ वो अपने दिमाग से निकाल दें।
0: धन्यवाद संजीव जी, आपसे बात करके हमें अच्छा लगा।
2: अभी आप सुन रहे थे एथलेटिक्स कोच जगदीश द्विवेदी और संजीव श्रीवास्तव से आकांक्षा सिंह की बातचीत। इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम खेल दर्पण का आज का अंक। वाचन, संपादन और प्रस्तुति चंदन कुमार सिंह की।
3: श्रोताओ, अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर तैयार किया गया और लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242
6: FM 100.5 MHz पर आपने ट्यून किया है श्रोताओ आकाशवाणी देहरादून। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:29 और 41 सेकंड हुए हैं। अब समय हो गया है आपके मनपसंद फरमाइशी गीतों को सुनने का और सुनाने का। तो श्रोताओ, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

0: ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म राज से अलका याग्निक के स्वर में। इस गीत को सुनना चाहते थे चिलकाना सहारनपुर से, मोहम्मद जरीफ अंसारी, नईम अंसारी, डॉक्टर आमिर, मुन्ना नाजिम, कस्बा उगहती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता, कार्तिक गुप्ता, निर्भय गुप्ता, गंज डुंडवारा यूपी से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमान आफरीदी और राधा राम, राधा नामदेव ने ये फरमाइश हमें लिख भेजी थी। इसी के साथ चांडिल झारखंड से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनोरमा महतो, मनमोहिनी महतो, दीन बंधु महतो और मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा, निवान शर्मा इस गीत को सुनना चाहते थे। इसी के साथ गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, अस्मा उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी ने इस गीत को सुनना चाहा था। चलते हैं श्रोताओ अब अगले गीत की ओर और सुनते हैं अगला गीत कि उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, आसमां पे चांद पूरा था मगर आधा लगा।
1: ये गुलशन फूल कलियां बहार वादियां, ये मौसम खेत हरियाली पहाड़ बर्फ, ये कायनात कुछ भी नहीं,
2: कुछ भी नहीं,
1: कुछ भी नहीं। गरन में वो नहीं,
2: वो है कौन?
3: कप्तान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा।
1: नाम?

गीत आपने सुना फिल्म दिल जले से कुमार सानू की आवाज में, और इस गीत को सुनना चाहते थे अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद, और पंढरपुर फुल चिंचोली से जाकिर मुलानी, सुबान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज़ मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, चाचा चाची और पूरा मुलानी परिवार। इसी के साथ अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, सुच्चा सिंह पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा भी इस गीत को सुनना चाहते थे, और इस गीत की फरमाइश हमारे पास लिख भेजी थी लाल कुर्ती रुड़की से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, सचिन युवान और आर के राजा ने। और इस गीत को इसी के साथ हमारे श्रोताओं में सुनना चाहते थे गंजुंडवारा यूपी से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर लुबना अंसारी और श्रोताओं आलिया अंसारी। और इस गीत को सुनना चाहते थे नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा, असद अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी। अब श्रोताओं चलते हैं अगले गीत की ओर, और जो इस गीत को सुनना चाहते हैं उन श्रोताओं के बारे में हम गीत के बाद बताएंगे। तो सुनते हैं अगला गीत के जाने वाले से मुलाकात ना होने पाई, जाने वाले से मुलाकात ना होने पाई, दिल की दिल में ही रही बात ना होने पाई।

फिल्म सिर्फ तुमसे आप ये गीत सुन रहे थे, और इस गीत को आवाज़ दी थी अमीन साबरी, फरीद साबरी, जसपिंदर नरुला और साथियों ने, और इस गीत को सुनना चाहते थे परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रतोष संघई और पूरा संघई परिवार, शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, जसपुर उत्तराखंड से इस गीत को सुनने की इच्छा रखते थे रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफा, शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हेना कौसर ने इस गीत को सुनना चाहा था। पंजू सराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, असद अंसारी के साथ, वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा भी इस गीत को सुनना चाहते थे। अब श्रोताओं चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर।

0: कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म हसीना मान जाएगी से, और इस गीत को सुनना चाहते थे गंज डुंडवारा एटा से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन और सायमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख, बेबी मुस्कान। इसी के साथ मथुरा यूपी से सबा अंसारी, शकील अंसारी, बुशरा अंसारी, हिना अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदनी और अंजलि इस गीत को सुनना चाहते थे। इसी के साथ गंज डुंडवारा से हमारे पास इसकी फरमाइश भेजी थी इरफान कुरैशी, रेहान कुरैशी, फैज़ान कुरैशी, शमसुल कमर राही, शाहीन फ़ातिमा, शहादत कुरैशी, सऊद कुरैशी, अदनान खान, फैज़ान खान, अनू खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी ने इसी के साथ हमें इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश लिखी थी। शामली यूपी से राशिद मंसूरी, आयान मंसूरी और जीशान मंसूरी ने, और हमें इस गीत को सुनने के लिए लिखा था ये निमन्नाबाद ज़िला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवलीत लवप्रीत कौर और करमजीत कौर ने। श्रोताओं, आप सब श्रोताओं का ये पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब समाप्त होता है। अब हमें इस कार्यक्रम से आज्ञा दीजिए और सुनते रहिए FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून। FM 100.5 MHz पर आप हमें आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, अभी कार्यक्रम चल रहा था आपकी फरमाइश, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में श्रोताओं अब समय हो गया है रात्रि के 10:59 और 50 सेकंड। अब आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक, और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत

0: अणि सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और उड़ीसा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said, investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements including Trade and Economic Partnership and India-EU Free Trade Deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital Rome later tonight. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today chaired a high-level meeting in New Delhi to assess preparations for the forthcoming NEET UG re-examinations for admission to undergraduate medical education to be held on 21st of next month. Mr. Pradhan directed that all gaps identified in the earlier examination process must be comprehensively addressed and eliminated. The minister emphasized that re-examination must be conducted in a secure, seamless and foolproof manner under stringent security protocols. During the meeting, directions were issued to hold coordination meetings with district magistrates and superintendents of police across state to ensure robust monitoring and effective implementation of examination arrangements. The Supreme Court today for the first time allowed euthanasia for rabid, incurably ill or demonstrably dangerous stray dogs, citing the need to protect human life and public safety. The Apex Court issued a series of directions aimed at addressing the growing stray dog population across the country. The order came in a Suo Motu case initiated on 28th of July last year, following media reports highlighting incidents of stray dog bites and rabies cases, especially among children in the national capital. Meanwhile, the top court dismissed pleas seeking a recall of its earlier order on the relocation and sterilization of stray canines. The Kremlin today confirmed that Russian President Vladimir Putin will attend the BRICS summit scheduled to be held in September this year in New Delhi under India's chairmanship. The Russian embassy in South Africa, in a social media post, cited an aide to President Putin, Yuri Ushakov, as saying that the Russian president will attend the summit on 12th and 13th of September. Defence Minister Rajnath Singh reached Seoul today on a three-day official visit to South Korea after concluding his Vietnam tour. In South Korea, Defence Minister Singh will hold bilateral talks with his counterpart Ahn Kyu-pak. The IMD has warned of severe heatwave conditions in North India over the next few days. The weather agency forecasts heavy rainfall in southern region. The IMD has issued a red alert for warm night conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha till Thursday. The weather agency has forecast heat wave to severe heat wave conditions over Delhi, Punjab, Haryana and Chandigarh for tomorrow. And with that, we end this news bulletin.